0: विद केतन।
1: मुझे पसंद है लड़का।
0: हाँ।
2: अरे मुझे भी पसंद है, लेकिन इस समय काशिका आपका साथ निभा रही है। बाय द वे, कितने लोग ऐसे थे जो कि सिटी रेल लिंक के ऑफिशियल ओपनिंग के टाइम पे वहाँ थे? एक सिंबॉलिक रिबन कटिंग जो थी आज सुबह हुई एट द स्टेशन, शायद मुझे इसका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता, सो माई अपोलॉजीज, टे बाई होरुटियो, ओके आई मे हैव सेड इट रॉन्ग। ये जो है ये चलता है विक्टोरिया स्ट्रीट वेस्ट से लेके वेलेसली स्ट्रीट तक, और ये कहते हैं न्यूजीलैंड का बिजिएस्ट ट्रेन स्टेशन बनने वाला है। अब इस स्टेशन का नाम मुझे याद करना ही पड़ेगा, ते वाई होरुटियो, गॉट इट, ते वाई होरुटियो। ओके, ये स्टेशन जो है आज यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ और इसकी सेरेमनी जो थी, यहाँ ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, ऑकलैंड मेयर वेन ब्राउन और काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे, मिनिस्टर ऑफ रेल विंस्टन पीटर, इन्होंने भी ओपनिंग के बारे में बात की और इन्होंने अपनी सिंगिंग स्किल्स यहाँ पर डेफिनेटली गा दी, कुछ गाया। सिटी रेल लिंक हैज़ टेकन 10 ईयर्स टू कम्प्लीट एंड इट हैज़ कॉस्ट $5.5 billion. सो दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट, यू नो, उस दौरान में बहुत प्रॉब्लम हुई लोगों को, सब लोगों ने बहुत सफ़र किया कि उनको लगता था कि ओ माय गॉड ये होगा क्या, होगा क्या। अब यहाँ से अब दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल, बट यू विल एक्चुअली इन्जॉय प्रॉबेबली द सिटी रेल लिंक जिसका आज ऑफिशियली रिबन कटिंग हो चुका है। सो पब्लिक के लिए ये CRL जो है संडे से खुलने वाला है।
0: आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
3: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं, डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है।
0: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
4: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
5: 2 PM call out, we're on your way. Heading back to the office, we're on your way there too. Commute to site, yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
6: Fresh deals on favourites this week at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And red, green or yellow capsicum, $2.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.

0: ये भाई ऑफिस शाउट आउट में मुझे नहीं पता कि कितने लोग लंच बॉक्स में सुनते हैं, भाई किसी ना किसी ऑफिस से तो आप डेफिनेटली सुन ही रहे हैं मुझे। हाँ मुझे पता है कि आज एक सोच रहे होगे कि क्या हो गया भैया, लंच बॉक्स में काशिका आ गई है, सब सब ठीक है भाई। माय टाइम नहीं चल रहा, ये लंच बॉक्स चल रहा है और ये हम बोर्डिंग कॉल के लिए फाइनल आवर है, आवर कह सकती हूँ मैं, रिमाइंडर है, क्योंकि अभी तो फिलहाल माय टाइम में मैंने अनाउंस किया है बोर्ड करने के लिए। तो अगर आपने सुना है तो BC लिख के भेजिए 5599 पे, ताकि आपको लिंक मिल जाए, जल्दी से बोर्ड कर लीजिए। इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स ये बोर्डिंग का जो दरवाज़ा है बंद होने वाला है और आप शायद ये टिकट, ये फ्लाइट मिस कर जाएं टू वनुआटू, जहाँ पे सोलोमन एयरलाइंस के ज़रिए आपको 2 टिकट मिल रही हैं अलॉन्ग विद $1,000 कैश स्पेंड करने के लिए। तो बस मेरी बोर्डिंग कॉल अगली जब बजेगी तब उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस, जहाँ 4 बार हफ्ते में नॉन स्टॉप ऑकलैंड टू वनुआटू फ्लाई करते हैं। और विजिट कर सकते हैं आप इनकी जो वेबसाइट है उसको, flysolomons.com।
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

अगर मैं बात करती हूँ थर्ड टेस्ट पाकिस्तान इन इंग्लैंड के तीन टेस्ट के दौरान, पाकिस्तान जो है अभी 133 पर फर्स्ट इनिंग में उन्होंने बनाए एंड सेकेंड इनिंग में 52 रन्स फॉर लॉस्ट ऑफ टू विकेट्स. इंग्लैंड इज़ ऑन 453 फर्स्ट इनिंग में उन्होंने कर लिया था. तो ये छोटी सी अपडेट थी, मैंने सोचा आपके साथ डेफिनेटली मैं ये शेयर कर लेती हूँ.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: ओके. अच्छा ये एक जो चीज अभी आने वाली है ना, इसको कहते हैं चटनी शॉट्स. आई डोंट नॉट नो हाउ केथन डज दिस, बट मुझे लगता है मुझे अपना एक इसमें तड़का ऐड करना पड़ेगा. अब इस तड़के के लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार, क्योंकि आ रहा है बहुत जल्द ये आपके लिए. लेकिन इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ, आपको याद दिलाना चाहती हूँ, बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है आपके आसपास और आपको लगता है कि शायद आप उसे मिस आउट कर रहे हैं. तो ब्रेकफास्ट शो जो है, इन्होंने इनका कैचअप मिस मत कीजिएगा. बियॉन्ड द डेट, अब इसमें what does success actually mean, इन दोनों ने इसे मेजर करने की कोशिश की, फ्रॉम होम लोन्स टू मैरिज, किस तरह से लिसनर्स इज रीडिफाइन कर सकते हैं दैट वी आर सेटल्ड. ओके, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट शो का आप PF लिख के भेजें और 5599 पर टेक्स्ट करिए और आपको डिटेल मिल जाएंगे. अब अनफिल्टर्ड जो है इसमें क्या है कि इफ़ यू डाई टुमारो वॉट वुड हु वुड गेट योर मनी, आपका घर, आपका कीवी सेवर, आपकी ज्वेलरी, आपका बिजनेस. मोस्ट ऑफ अस प्रोबेबली हैव अ सिंपल आंसर, माय पेरेंट्स, माय पार्टनर, माय चिल्ड्रन, माय फैमिली. बट व्हाट इफ दैट्स नॉट एक्चुअली हाउ इट वर्क्स. अब न्यूजीलैंड में जो है डाइंग विदाउट अ विल, ये क्या हो सकता है, एक सब्जेक्ट हो सकता है टू द लॉ. इसका आउटकम आपको शायद एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते. अनफिल्टर्ड में सैंडी और रुस्बे ने ये एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन जहाँ विल्स इस्टेट्स के साथ क्या होता है अगर आप कि अनटाइमली डेथ हो गई, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं इनहेरिटेंस एंड एस्टेट प्लानिंग से रिलेटेड. तो इनका साथ दिया है तान्या पिंटू ने, सीनियर ट्रस्टी ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, जिन्होंने ये बताया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं. ऑलराइट, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई थिंक वर्थ लिसनिंग टू. तो आप 5599 पे अगर पूरा ऑडियो सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली सुन सकते हैं. अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुस्बे रुवा स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है. ड्राइव लिख के भेजे 5599 पे इन ऑर्डर टू कैच अप. वेट फॉर माय चटनी शॉट. ओके,
3: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
4: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
5: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा.
4: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
5: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती.
3: बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
4: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
6: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
7: हेलो एवरीबॉडी.
3: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
8: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
3: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम.
9: When you see them on the road, you suddenly remember you have wing mirrors. Suddenly orange doesn't mean speed up. Suddenly you don't need to check your phone at the lights. And you're suddenly checking your blind spots. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.
10: It's spring season at Freedom. Save up to 50% off selected sofas and furniture. Plus, take a further 10% off all sofas. Hurry, sale ends Monday. Only at Freedom.
11: Fuel prices got you feeling? Score 6 cents per litre off every fill with Caltex pumped. Plus more on Super Pump Days. Fill up, scan your Caltex app or Kodu card and save instantly. Discount applies up to 50 litres. Caltex pump T's and C's apply. See caltex.co.nz.
12: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing or buying a business or commercial property. Paramesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
13: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
0: in business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. As a business owner, what do you do when customers won't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that the Indian community values trust, relationships, respect, and keeping their word. With 20 years of debt recovery experience, they use respectful follow-up and mediation to recover your B2B debts. Want your invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution aur payment bhi.
1: Zabardast hits.
14: Shuru ho jaye to rukte nahi.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
15: Hum.
16: Chutney shots.
1: Lunchbox with Ketan.
17: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
1: Iske piche.
16: Hum.
2: ठीक है उसके पीछे लड़कियां जरूर पड़ी होंगी, शायद वो भाग ही रहा हो, बट डजंट मैटर. मुझे मेरी चटनी शॉट बतानी है आपको, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी चटनी शॉट कुछ और ही हो सकती है. ठीक है, अब ये चटनी शॉट क्या हो सकती है? बेसिकली इट्स अ स्मॉल शॉट ऑफ शॉट विच इज इन द ग्लास, इज इट राइट? और फिर वो पार्टीज में खाने के लिए बहुत अच्छा रहता है. लाइक येस्टरडे आई वॉज एट अ ब्यूटिफुल रेस्टोरेंट, इट्स अ मिशेलन रेस्टोरेंट. सिड चोपड़ा जो है एक इंडियन, हमारे उनका नाम आया उसमें तो बहुत बड़ी बात है. और ऐसे में वहाँ पर जब मैंने चाट खाई तो वो बिल्कुल एक चटनी शॉट की तरह से बनकर आया था. अब मुझे आई कैन रिलेट टू इट, बट फॉर मी दैट चटनी शॉट वॉज टोटली डिफरेंट. बट मैं समझती हूँ एक चटनी बेस के साथ एक रेसिपी मेरे पास आ गई है. आई हैड टू पुट इन माई बिट ऑफ वर्क इन टू इट. तो आपने क्या करा, एक कप आपने ले लिया हरा धनिया, हरा धनिया की पत्तियाँ, आधा कप आपने ले लिया पुदीना, और आपने एक या दो हरी मिर्च ले ली, एक लहसुन ले लिया, अदरक आपने आधा ले लिया. साथ में आपको चाहिए फेटा हुआ दही, एक टेबलस्पून आपको चाहिए नींबू का रस, आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा बहुत पानी आपको चाहिए. अब आपको इनको ब्लेंड कर लेना है और इसमें आपने बाद में आपने इसके अंदर दही ऐड कर देना है. और फेटा हुआ दही हो तो अच्छा रहे, और उसके बाद उसमें आपने ज़ीरा, चाट मसाला, जो भी कुछ आपको उसमें डालना है, फ्रिज में रख दीजिए. अपने शॉट्स बनाने के लिए आपके लिए वो काम आ सकते हैं. जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हाँ, मी एंड माई एक्सपर्ट थिंकिंग टॉकिंग समोसा बाइट्स. ओके, एक इतना बड़ा समोसा, यू नो दैट इतने बड़े समोसे को कोई खा ही नहीं सकता. तो उसे समोसा बाइट्स बनाने के लिए आपने छोटे छोटे समोसे लेके उसके ऊपर ये चटनी ऐड की, थोड़ा सा उसमें हरा धनिया ऊपर से आपने गार्निश में ऐड किया, एंड दैट्स अबाउट इट. इट टेस्ट वेरी वेरी नाइस. ट्राई कीजिएगा.
1: दिल से दिल तक. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: कभी कभी जब आप शो एकदम से यू नो सडनली करने लगते हैं तो सोचने लगते हैं कि कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। आई डिड नॉट रियलाइज कि मैं ये शो अच्छी तरह से निभा पाई हूँ। चल आई होप सो मैंने निभा लिया है। बाय द वे लाइंस बंद हो चुकी हैं फॉर बोर्डिंग कॉल, लेकिन ये बोर्डिंग कॉल कभी दोबारा से बच सकती है। तो स्टे ट्यून, कीप हमिंग विद मी कशिका ऑल द वे 3 बजे तक। लंच बॉक्स में आप मेरा साथ निभा रहे हैं इस समय। कीप एंजॉइंग, कीप हमिंग।

0: लंच के मंच पे
1: अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू पीपल, हाउ आर यू। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दोपहर के 1 बज रहे हैं और ऐसे में आपको मुझे याद दिलाना है कि भाई हम बोर्डिंग कॉल, भाई यहाँ 5,000 लोग जो हैं इन लोगों ने रजिस्टर कर लिए। हो सकता है अब वो 5,001 हो चुके थे उस समय, 5,002 भी हो चुके थे। आई थिंक अखिल तिमारू से आपने रजिस्टर भी किया था, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी ये मौका आपके लिए दुरुस्त है। और ये मेरा आखिरी कॉल होगा लंच बॉक्स में, जहाँ पे मैं ये कहीं पे भी कभी भी प्ले करने वाली हूँ। रिमाइंडर आपको डेफिनेटली दूंगी, कुछ कम्युनिटी की बातें करेंगे, कुछ आपके साथ और बातचीत भी करने वाले हैं। लंच बॉक्स में आप सबका, मैं काशिका, स्वागत करना चाहती हूँ। दोपहर 3 बजे तक आपका साथ दूंगी बाबा। सुबह 10 बजे से दे रही हूँ साथ, कॉफ़ी चाय सब कुछ हो गई, लंच रह गया मेरा अभी खाना। ओके, आप क्या खा रहे हैं लंच पे बाय द वे?
0: जाओ क्या

0: विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: अच्छा एक बात बताओ कि आप किसी किसी चीज़ पे फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाते हैं, अब वो क्या ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए आप फ्रस्ट्रेटेड रहे होंगे? हाँ, मुझे आपसे जानकारी हासिल करनी है, मुझे 5599 पे आप ज़रूर टेक्स्ट कर सकते हैं जानने के लिए कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने आप को, अपनी फ्रस्ट्रेशन है आप उसको निकालना चाहते हैं, क्या हुआ ऐसा कुछ खास बताओ, 5599 पे मुझे ज़रूर टेक्स्ट करो। बाय द वे आपको मैं बता देती हूँ कि ये पूजा का माहौल जो है मंडे से देखा जाए तो शुरू हो रहा है। श्री राम मंदिर में हेंडरसन में गणेश उत्सव किया जाने वाला है और ये 15 से होगा लेकिन 20 तारीख तक, और 7:20 से 9 बजे तक ये होगा और इसके बाद गणेश विसर्जन जो है 20 तारीख को किया जाएगा। और 7 दिन का श्रीमद् भगवद गीता का ये जो कथा है 7:30 से 9:30 बजे भारतीय मंदिर में इसका भी आयोजन किया गया है। नॉर्थ शोर भारतीय संगम यहाँ पर आपके लिए गणेश चतुर्थी का आयोजन किया जा रहा है 19 सितंबर के दिन सुबह 11 बजे से। टाकापुना वॉर मेमोरियल हॉल आप पहुंच सकते हैं जहां पे पूरे दिन भर में गणेश पूजा और सत्यनारायण की कथा, महाप्रसाद होगा, कल्चरल इवेंट होगा, ढोल ताशा और क्लोजिंग सेरेमनी भी होने वाली है। डेफिनेटली हमें इंतज़ार रहेगा उस समय अगर आप डेफिनेटली आए। हाँ, चलो रेंट लाइन के लिए मेरे पास टेक्स्ट आ चुका है ऑलरेडी। आप, मैंने रेंट लाइन खोली नहीं लेकिन टेक्स्ट के जरिए मैं ज़रूर सुनना चाहती हूँ आपकी क्या फ्रस्ट्रेशन रही होगी।
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: क्लब डिस्काउंट डेज वापस आ गए हैं माइटन मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन में। इस थर्सडे और फ्राइडे माइटन क्लब मेंबर्स को पूरे स्टोर में मिलेगा 15% ऑफ। जो भी चाहिए स्टॉक करो और सेव करो। टीसीज एंड एक्सक्लूजन अप्लाई। माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।

0: Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bacche seekhenge in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ye hamesha aapke paas hai. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. To jaldi join karo aur enjoy karo special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
1: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट। squirrel.co.nz

0: करें।
1: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: Lunchtime Rant Line.
1: I totally relate to you. In fact, मैंने अभी इसके बारे में पिछले घंटे पर भी बात की थी, और ये बात थी about the CRL. अब ये CRL की वजह से ये जो 10 साल तक एक स्ट्रगल रहा है कुछ लोगों का, जहाँ पे वो रास्ते बंद कर दिए गए थे और काफ़ी पेसिमिस्टिक हो गए थे लोग के ये स्टेशन जो है, ये लिंक कब खुलेगा, और एक बहुत लंबा समय जो निकल गया, कई एक्टिविटीज़ लोग नहीं कर पा रहे थे, और ऐसे में जो सिटी वर्क जो उसकी वजह से चल रहा था, ये लग रहा था कि फ्यूचर कैसा जाने वाला है, हम लोगों का काम चलेगा कि नहीं करेगा. आपका एक बहुत क्यूट सा वहाँ पे कैफ़े था, और आपका कैफ़े जो था उसकी वजह से आई कैन से दैट अफेक्ट हो गया था. बट नाउ आपने ये तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया, बट द थिंग इज़ बिकॉज यू आर फ्रॉम के रोड, एंड तो आपने बताया कि ये एक लोकली आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज पड़ गया था, बट एक दूसरे के आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से हम ये ठीक ठाक इसको इस समय को गुजारे. 10 साल इज क्वाइट अ बिट. क्वाइट अ फ्यू बिजनेस हाउसेस जो हैं वो बंद भी हो गए थे, लेकिन अब ये खुल चुका है और संडे से ऑफिशियली ये ओपन होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू मी, एंड यू डिडंट वांट टू टेक योर नेम, एंड यू डिडंट वांट टू टेक योर बिजनेस नेम एज वेल, बट शाउट आउट टू यू. थैंक यू.
2: लंच बॉक्स विद केतन.
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
3: तो अगर मैं बात करती हूँ कि क्या होने वाला है, आज तो 11 तारीख है, वैसे कल वॉरियर्स वर्सेस डॉल्फिन्स एट द गो मीडिया स्टेडियम पे होने वाला है और ये शाम 6 बजे होगा। और इसके साथ साथ कल ही के दिन रैन फर्ली शील्ड के लिए नॉर्थलैंड वर्सेस वाइकाटो जो है ये भी होगा। सो NRL क्वालिफाइंग फाइनल्स जो हैं कल वॉरियर्स वर्सेज डॉल्फिन्स का जो है वो लाइनअप किया गया है। और इसके साथ साथ ये एक संडे के दिन जो है ब्लैक फर्न्स वर्सेज फ्रांस जो है दे प्लेइंग इन लियोन एंड साथ ये करीब न्यूजीलैंड का 3:45 AM के आसपास होगा। एंड बाल्टीमोर में ही सुबह 9 बजे न्यूजीलैंड टाइम पे ऑल ब्लैक्स वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच है ये भी खेला जाएगा। एंड आई होप वी विल बी गेटिंग सम अपडेट्स ऑन द अदर
4: 80s के रेट्रो गाने

0: Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: Lunchbox with Ketan.
2: Mujhe pasand hai ladka.
1: Hum.
3: तो चलिए फिर जल्दी कीजिए, देखो मैंने घंटी बजा दी है। अब मैंने घंटी बजा दी है इसका मतलब भागो भागो, रोवा ऐप की तरफ भागो, आपके लिए डोर खुल चुका है, आपको बोर्ड करना है। अब ये आखिरी कॉल है इन लंच बॉक्स, और मैं चाहती हूँ जितने भी लकी लोग अपने आप को समझते हैं, आपने फटाफट क्या करना है, आपको बोर्ड कर लेना है हमारी फ्लाइट को जो जा रही है ऑल द वे टू वनुआटू। सोलोमन एयरलाइंस, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना खूबसूरत हमारा साथ दिया इस कैंपेन में, और $1,000 कैश भी आपको मिलने वाला है। तो जल्दी करो, आप एक काम करो, अगर आपको रोवा ऐप के जरिए लिंक नहीं मिल रहा तो आप BC बोर्डिंग कॉल का शॉर्ट फॉर्म BC लिखिए, 5599 पे आप मुझे टेक्स्ट कीजिए। इसके बाद ये कंपटीशन पेज पर आपको ले जाएगा, फटाफट जाओ और अपनी फ्लाइट मिस मत करो। माइट गो टू द पैराडाइज, यहाँ से वानुआटू जाने के लिए एक कितनी खूबसूरत जगह है, वो इतनी सुंदर जगह है जहाँ पे आप जाके अपने आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एक हॉलिडे आपके लिए कमाल का होने वाला है, एक ऐसी जगह आपके लिए होगी जो आप कहेंगे कि ओ माय गॉड, काश मुझे पता होता कि ऐसी खूबसूरत जगह भी एग्जिस्ट करती है। यस, डेफिनेटली वनुआटू एक ऐसी जगह है जो ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ वनुआटू है, और साथ साथ मैं इतना कह सकती हूँ कि ये जनरली इस जगह को कहा जाता है कि एक डेस्टिनेशन रीजनेबली प्राइस्ड है। ऑफन इसके प्राइसिंग को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से कंपेयर किया जाता है, और साथ साथ बजट ट्रैवलर्स के लिए मैं बता देती हूँ $50 से $90 का अमाउंट है जो आपको खाना पीना गेस्ट हाउस वगैरह के साथ आपको हो सकता है। मिड रेंज में 120 to 250 US dollars के करीब हो सकता है। बस खाना पीना जो है वो वहाँ पे मोस्टली इंपोर्ट किया जाता है, ग्रोसरी और रिजॉर्ट्स की प्राइसिंग अकॉर्डिंगली होती हैं। सो डेफिनेटली म्यूनिसिपल मार्केट्स में जाके शॉप कीजिएगा, छोटे छोटे मिनी मार्ट्स हैं एट पोर्ट विला, ज़रूर जाइए। और जो जाने के जो मैंने वैसे वेटर मंथ्स जो है वो फेब्रवरी मार्च में काफ़ी बारिश होती है, उस समय काफ़ी लो प्राइसेस होते हैं, लेकिन अभी जो टिकट्स हम आपको दे रहे हैं उसमें थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी हमारी वेबसाइट पर आकर, और साथ साथ रोवा पे भी आप जा सकते हैं। तो चलो जल्दी करो, आपको BC लिखना है। बाय द वे 5,000 से भी ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है, क्या आप वो 5,000 के बाद वाले टॉपअप्स में हैं या नहीं है? चलिए, ये आज आखिरी दिन है जहाँ पे हम यहाँ बोर्डिंग कॉल आपके लिए अनाउंस कर रहे हैं, जो अनाउंस हो भी चुकी है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच इतने लोगों ने अभी तक एंटर किया है।
1: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI।
4: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: यू बाई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: कुमार सानू और साथ में अनुराधा पौडवाल इन्होंने कितने गाने गाए इनफैक्ट आशिकी जो फिल्म थी जब आई थी तब अनुराधा पौडवाल वाज वन पर्सन हु वो रियली स्पोक वॉल्यूम्स अबाउट कुमार सानू जी और उनकी आवाज़ और फिर उसके बाद उन्हें ये ब्रेक मिला और उसके बाद ही नेवर लुक्ड बैक ही इज़ वन ऑफ द सिंगर्स जिन्हें लोगों ने कहा कि ये शायद इनकी आवाज़ रिप्लेस करेगी लोग किशोर कुमार जी की आवाज़ ढूंढते थे इनकी आवाज़ में और उनको वो सूदिंग सी वॉइस जो उनको सुनाई दी वॉज एब्सोल्यूटली अमेजिंग तो चलो आप लोगों के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैं ये ट्रैक लेकर आ रही हूँ थ्रोबैक में और हाँ याद दिला देती हूँ अगले घंटे में भी मैं कशिका आपका साथ निभाने वाली हूँ सोच रहे लंच बॉक्स में केतन की आवाज़ इतनी पतली कैसे हो गई भाई केतन की आवाज़ नहीं है मेरी आवाज़ है माई टाइम से सुबह 10 बजे से लगी हूँ हाँ मुझे भी लंच करना है लेकिन सोच रही हूँ अब 3 बजे इकट्ठे ही लंच करा जाए तो चलिए प्यारा सा ट्रैक अब आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ सुनिए

0: Gunjagi.
1: So once again a very very good afternoon to you people. How are you? Studio ki khadi mein is samay dopahar ke 2 baj chuke hain. Aapka saath main aaj subah 10 baje se nibha rahi hu. Dekho ye gaadi chalti chali ja rahi hai. Kya kare, energize ho jati hu jab aap log call karte hain, baatein karte hain to maza aa jata hai. To chalo bhai, I would also like to take it easy for this Friday. But before I स्टार्ट ऑफ द शो, ये एक आपने मुझे कॉल जब किया और आपने कहा काशिका क्या एनर्जी के साथ तुम बात कर रही हो, क्या बोल रही हो, लंच बॉक्स में भी बात कर रही हो, तो भाई यू टोल्ड मी मैडम जी गो इजी. अब जैसे ही आपने बोला मैडम जी गो इजी, मुझे तो ये गाना याद आ गया. बजाऊं क्या? चलो बजा देती हूँ. वेलकम ऑन लंच बॉक्स विद मी काशिका, ऑल द वे टिल 3 बजे.
2: बजाओ क्या?

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: मैंने वैसे घरों के ऑक्शंस के बारे में तो डेफिनेटली सुना था, लेकिन एक चीज तो है दैट दिस इज एन अनवॉर्न ड्रेस ऑफ प्रिंसेस डायना. अब उनके वार्डरोब में वो पड़ी हुई थी अंटिल प्रिंस चार्ल्स ने उसे बताया कि ओके ये अभी तक यहाँ पे है. तो इनकी एक फेमस जो एक रिवेंज ड्रेस है, दिस इज गोइंग अंडर द हैमर एंड प्रोबेबली इट कैन गेट न्यूजीलैंड डॉलर्स वर्थ हाफ अ मिलियन. ये ब्लैक कलर की एक कॉकटेल ड्रेस है और ये एक इंस्टेंट पीस था ऑफ रॉयल हिस्ट्री, जहाँ पे प्रिंसेस डायना जो थी इन्होंने शी वॉर इट फॉर अ लंडन पार्टी ऑन 29th of June 1994. द सेम नाइट एक टेलीविजन इंटरव्यू एयर हुआ इन विच उनके जो प्रिंस चार्ल्स हस्बैंड थे उन्होंने उनके बारे में जो भी कुछ डिक्लेयर किया. बट इन्होंने ये एक डेयरिंग ऑफ शोल्डर ड्रेस जो थी वो इन्होंने रखी हुई थी. इट वॉज़ अ डेयरिंग ड्रेस डेफिनेटली. और इन्होंने इसे जब प्लान किया कि इसको वैलेंटिनो के टाइम पे ये पहनने वाली थी, बट इन्होंने लास्ट मिनट चेंज किया इनटू अ लिटिल ब्लैक ड्रेस. सो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे ऑक्शन करने का सोचा है. द एस्टिमेट वैल्यू इसकी है अपेरेंटली US डॉलर्स में 150,000 to 300,000. लुक्स लाइक दैट दिस प्रोबेबली ड्रेस जो एक लास्ट टाइम 1997 में जब ये बात हो रही थी टू रेज फंड्स, एक बार इनकी एक और ड्रेस जो थी वो ऑक्शन हुई थी. शी हैज़ नेवर वॉर्न दिस रिवेंज ड्रेस पब्लिकली अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश वोग, बट लगता है आफ्टर 3 decades दिस पर्टिकुलर ड्रेस कैन एक्चुअली फेच हाफ अ मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स. वैसे ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँच ही जाएगी, बट इट इज रियली इंटरेस्टिंग.
3: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
4: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
5: Let's go.
4: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
6: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
7: The Auckland Home Showers are now at Auckland Showgrounds with inspiration from the front gate to the back fence. Discover hundreds of exhibitors, expert advice and the all-new garden showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Auckland Home Show, New Zealand's number one home show. We'll see you there.
8: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
9: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
8: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
9: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
8: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
10: Farmers Manchester Mania sale is now on with an amazing 50% off duvet covers, sheets, duvet inners, pillows and more. 50% off towels by top brands like Sheridan. Plus 50% off sleepy head beds. Shop Farmers Manchester Mania. Conditions and exclusions apply.
11: Hey Neha, congratulations on your first home. Tune to kaha tha ki do banks ne loan dene se aur ek famous broker ne to case lene se hi mana kar diya tha. ये घर कैसे?
12: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है.
11: एक
0: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया। मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
11: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
1: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु केन डॉलर को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
5: Media Voice Complaints. How can I help?
12: Yeah. Hello.
5: Hi.
12: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
5: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
12: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
5: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
12: Great. Sing it to me.
13: Advertise with
14: Media Works.
13: New Zealand listens to us.

0: Media Replay.
1: I'm sure इस सेगमेंट को यू नो केतन बहुत अलग तरीके से निभाते होंगे, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट इज सो इम्पॉर्टेंट, कभी कभी ऐसे गाने होते हैं जो हम सडनली यू नो स्क्रोल करने लग जाते हैं, और या फिर हम अपने इंस्टा पे स्क्रोल कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गाने ऐसे आते हैं जो आपका मन जो होता है एकदम से कैच कर लेते हैं, और वो पुराने गाने होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 90s के ट्रैक्स होते हैं। ऐसे में कोई एक ऐसा गाना आपको लगता है कि आप उसे स्किप नहीं करते जब आप सुनते हैं, और उसे फिर चाहते हैं कि दोबारा से रिप्ले करें। एक कोई गाना ऐसा हो प्लीज़ मुझे 5599 पे आप बताएं, मैं जाने से पहले उस गाने को डेफिनेटली बजाना चाहती हूँ। सो 5599 पे लिख के बताइए ऐसा कौन सा गाना है जिसको आप ऑन द लूप डेफिनेटली सुनना चाहते हैं।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगी ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: लंच बॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: हम
4: वैसे मैंने सुबह बात तो की थी अबाउट दिस मूवी और मुझे लगता है ये फिल्म अच्छी जाने वाली है क्योंकि 18 साल के बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान एक साथ पड़े पर्दे पे नजर आने वाले हैं दिस टाइम फॉर अ डार्क थ्रिलर और दैट इज बाय प्रियदर्शन। यू नो व्हेन डिड दे लास्ट कम टुगेदर 2020 ना आई थिंक दैट वॉज टशन मूवी इफ आई मे रिमेंबर। यस टशन मूवी में एक साथ ये लोग आए थे और ये जो पर्टिकुलर फिल्म है ये एक फाइनल फिल्म है ऑफ लेट असरानी जी जो जिनकी डेथ हुई थी 2025 अक्टूबर में तो ये इन्हें आप आखिरी बार बड़े पर्दे पर डेफिनेटली देख पाएंगे। रीमेक है अपनी प्रियदर्शन जी की खुद की फिल्म मलयालम थ्रिलर जिसमें मोहनलाल जी ने काम किया था ओपम नाम से। और एक बात तो है खास जो मुझे आपको बतानी है अगर आप पिक्चर देखने जा रहे हैं और मोहनलाल के आप फैन हैं तो एक स्पेशल कैमियो अपीयरेंस जो है ये करने वाले हैं फॉर द मूवी हैवान जिसे शायद आप देखने डेफिनेटली जाना चाहेंगे। मैं तो जाऊंगी मोहनलाल जी को देखने के लिए।

0: US Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, TradeWorks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or Triple A Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें.
1: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
2: Showerdome.co.nz.
3: White separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.
4: Some savey pack and save news coming in 3, 2, 1. It's 3, 2, 1 dollar week on Now at Pack and Save. The end of the savey pack and save message coming in 3, 2, 1.
5: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलोगांव में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविस हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलोगांव हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
6: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
7: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
8: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे
9: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है
8: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ
10: फर्स्ट होम बायर बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु
11: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
12: हाँ। अच्छा
11: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
12: मिसेस सिंह
13: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
14: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 0928130 50 और विजिट focuskitchens.co.nz

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. Tech Talk.
2: मैं कल से एक गिल्ट में आ गई हूँ. अब द गिल्ट इज़ दैट मैंने लास्ट ईयर 17 प्रो ले लिया था, प्रो मैक्स ले लिया था एप्पल का. लेकिन अब एप्पल जो है एक फोल्डिंग डेब्यू करने वाले हैं अपना, और ये फर्स्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन जो है आईफोन डुओ के नाम से, जहाँ पे आईफोन 18 प्रो ये लाइनअप कर चुके हैं. और मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दिया है ना. लेकिन बाय द वे, जितने लोग चैट जीपीटी के बारे में कहते हैं, एक एआई ने अपग्रेडेड इमेज जनरेटर जो है चैट जीपीटी के अंदर ऐड किया है, और कहा जा रहा है कि इसमें जो बाकी की जो नॉइज़ है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने वाले हैं. लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स, हाउ डज दैट एक्चुअली वर्क. आई डोंट नॉट नो बिकॉज आई डोंट हैव चैट जीपीटी. इन केस यू हैव चैट जीपीटी, देन प्रॉब्ली दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर पीपल हु यूज चैट जीपीटी इमेजेस.
3: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
1: टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने पूछा था प्ले रीप्ले, आप कुछ ऐसा गाना है जो आप करना चाहेंगे, तो मेरे पास टेक्स्ट आया, और कैन यू बिलीव इट, देर आर 4 टेक्स्ट विच हैव कम विद द सेम सॉन्ग, एंड दैट सॉन्ग इज अ कपल सॉन्ग. आई कैन से दैट आई नो यू गेस्ट इट राइट. अब इसी गाने को मैं आपके लिए छोड़े जाती हूँ, जब कुमार सानू और साधना सरगम जी ने जुर्म फिल्म से इस गाने को गाया था. सो थैंक यू 22107 एंड आशी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. इसके साथ साथ रश्मि, थैंक यू, एंड 7968 सुनील, आपका भी धन्यवाद. आप लोगों को एक रिप्ले में आपकी कॉल भी आई थी एक्चुअली, एंड थैंक्स अ लॉट. और इसी गाने के साथ साथ मैं कह सकती हूँ कि कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है शुक्रवार. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे एंड थैंक गॉड इट इज़ द आखिरी आवर ऑफ लंच बॉक्स, क्योंकि अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ. खाना वाना भी खाना है भाई, मुझे भी खाना होता है, क्या करें. तो अभी के लिए चलती हूँ, 10 बजे सुबह मंडे के आपसे फिर मैं मुलाकात करती हूँ. डू लुक आफ्टर योरसेल्फ्स, दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज. लुक आफ्टर योरसेल्फ्स एंड सैंडी इज कमिंग अप नेक्स्ट विद सम प्यारी प्यारी बातें, हो सकता है तड़का लगाने के लिए शायद रोज पे भी आपका साथ निभा दें 3 बजे से. सो क्रॉस योर फिंगर्स, व्हाट्स इट्स अ वाइल्ड गेस, अगर वो आ रहे हैं तो अ ग्रेट अ बोनस फॉर कॉफी ब्रेक विद सैंडी.

0: विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
2: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
3: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
4: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
5: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
9: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
10: That is very that is a very acceleration.
9: Very acceleration. That's a very acceleration. Yeah.
10: Amazing acceleration.
9: This is my fancy English. That's a very.
10: अरे होता है यार, सब चलता है। आधी नींद में हूँ मैं।
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
7: Weekdays 6 to 10 a.m.
11: Sona Sansar Papa Toto ke gehno ke saath aap bhi chamak jayenge.
12: Churi, kangan, payal, bali, jhumke aur chokar. ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
11: सोना संसार पापा टोयोटा, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आशा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोयोटा।
13: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोयोटा। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
14: हर हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
15: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
14: हैवान, स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
16: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
15: ये आखिरी
14: हैवान, नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
17: Bunnings has great value nailed for your outdoor spring cleanup with 30 seconds 5 litre outdoor cleaner concentrate only $25.95 or Scott's large reusable garden waste bag just $12.98. Head in store or online for even more great value.
18: MediaWorks complaints. How can I help?
19: Yeah. Hello.
18: Hi.
19: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
18: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
19: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
18: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
19: Great. Sing it to me.
20: Advertise with
21: MediaWorks.
20: New Zealand listens to us.
22: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
23: Shh, there's a spring sale on at Elite Bathroomware. September only, there's serious savings on luxury bathroom fittings for your dream bathroom. There's a massive range of heated towel ladders, freestanding baths in acrylic, stone and concrete, groove timber vanities, earthy concrete basins, lead-free designer tapware in 7 colours, including brushed bronze everything. Elite Bathroomware's massive VIP spring sale is in store only. Or apply for VIP access online. Elite Bathroomware, Kiwi owned and operated. They love bathrooms.
7: Time check.
3: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800 00 00 10.
7: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
24: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. The flow-on effects of global oil uncertainty will likely be felt at the pump soon. The AA's Terry Collins says renewed escalation in the Middle East and Russia has helped power another spike in oil prices.
25: Then we're going to get the higher refining costs, ultimately our dollar's a bit weaker, so in the next coming weeks you'd expect to see prices to go up.
24: A financial crisis has engulfed one of the country's most iconic tourist attractions. Christchurch's Orana Wildlife Park has set up a Give a Little page for donations. Zoo co-chair Professor Ken Hughes says they're in big debt.
1: We're looking at a $4 million hole at the moment, and we're looking at running a different model for our finances. Visitors alone cannot pay the bills.
24: Politicians have been pitching their policies to seniors today. Grey Power North Shore is hosting a range of speakers from parties including New Zealand First, the Greens, ACT and Opportunity. And a classic TV show is about to be given the Hollywood treatment. 6 decades after its debut, Hawaii Five-O is being made into a movie by the producers of Spider-Man, giving ticket buyers an excuse to say, "Book 'em, Dano." To sport, the All Blacks World Cup winning coach Sir Steve Hansen has joined NRL club Manly as the football performance director, rugby league with Machinery House and a league of their own. The second women's semi at the US Tennis Open, it's into the deciding set between second seed Elena Rybakina and American contender Coco Gauff. And at the MCG, the San Francisco 49ers lead the Los Angeles Rams 24-7 in the final quarter of their NFL clash.
7: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
2: वेदर का हाल आज काफी कमाल, विंडी है थोड़ा, बारिश हो सकती है शाम को, लेकिन अभी के लिए मस्त ब्यूटीफुल वेदर. 3 layers of clothing is recommended, feels like 14 degrees. Overnight temperature is going to be as low as 12 degrees. 6:09 पे आज होगा सनसेट.
7: The beat of Bollywood.
4: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
7: Coffee break with Sandy. Drive Show with Sandy and Rizbe.
5: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
2: Well, it's Friday. Welcome to the Drive Show. Starting early today, 3:02. Hi, Sandy. Aaj hai 9/11.
10: Yes, it is 9/11. 3:02 ho chuke hai and Friday aapke liye shuru ho chuka hai. Kaise ho tum, Rizbe?
2: Main badhiya hu, Sandy. How are you doing?
10: I'm good. Weather looks good so far.
2: Thoda windy hai. Matlab humko bahar hum aaj जल्दी आ गए ना यहाँ पे, तो बाहर ऐसे देख रहे थे कि धूप खिली है, मस्त स्काई टावर चमक रहा है,
10: तो बाहर निकलते हैं थोड़ा.
2: बाहर गए और 20 सेकंड में हम फिर अंदर आ गए क्योंकि ठंड लग रही थी.
10: ठंडी हवा थी यार, मतलब अंदर महसूस नहीं हो रही है लेकिन एक्चुअली में बाहर ठंडी हवा है. एंड टुडे इज द डेट सिटी रेल लिंक, ये भी ओपन अप हो चुका है.
2: ओ, आज के दिन खुला हुआ?
10: या इट ओपन्स टू द पैसेंजर्स फॉर द फर्स्ट टाइम.
2: क्या दिन पकड़ा उन लोगों ने यार खोलने के लिए.
10: आई नो. एनीवे, इसके बारे में भी बात करेंगे.
2: मुझे लगा ये मंडे से शुरू होगा. मंडे से नहीं शुरू हो रहा है 14 सितंबर से?
10: नो, इट्स ओपन टू पैसेंजर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. या
2: ओह अच्छा, क्या बात है.
10: सो ये ओपन अप हो चुका है, इसके बारे में भी और बात करेंगे.
2: लिंक में रेडियो बज रहा है क्या, पहले वो बताइए आप हमें.
10: एंड आप क्या ट्रेवल कर रहे हैं तो इसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं. एंड येस, लाइक रुजबे सेड कि आज 9/11 भी है. एक आर्टिकल भी है, शेडो ऑफ 9/11 एंड हाउ इट कंटिन्यूज टू इम्पैक्ट न्यूजीलैंड फॉरेन पॉलिसी. सो या इसके बारे में भी शेयर करेंगे.

0: Streaming on Rover.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, ceiling आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: There's a new sound at Bunnings. That's the sound of Bunnings rewards being earned. You can earn them across the store, from gardens to gumboots, hose reels to heated towel rails. Simply download the Bunnings app, scan your Bunnings card and see your points stack. Join Bunnings Rewards today.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bacche seekhenge in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ye hamesha aapke paas hai. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited space. First come, first served. So, jaldi join karo aur enjoy karo special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
6: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया. घर बेचने को कह रहे थे.
7: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
6: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
5: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800 4NZPMI.
8: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
9: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
10: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
9: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party, table service or buffet for up to 150 guests.
10: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
9: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
11: Non-stop Bollywood.
12: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
11: हम playing Bollywood's biggest hits.
13: Coffee break with Sandy.
14: Andrews Bay, क्योंकि अब मैं भी आ गया हूँ ना कॉफी ब्रेक में.
15: Yes.
14: ड्राइव शो जल्दी शुरू हो रहा है फ्राइडेज को आजकल.
15: एंड आज सिटी रेल लिंक, इसका इनॉग्रेशन हो चुका है. एंड जैसे कि एक लिसनर ने बताया कि इसके लिए पब्लिक के लिए ये एक्चुअली में संडे को शुरू हो रहा है सिटी रेल लिंक. 5.5 बिलियन डॉलर्स की ये इन्वेस्टमेंट है रुजबे, जहाँ पे यू नो ऑकलैंड का ट्रेड नेटवर्क एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है. पैसेंजर्स के लिए यस, 13 सितंबर इज अ डेट. आज जस्ट उन्होंने कुछ पैसेंजर्स के लिए ऐसा टेस्ट
14: आज
15: किया था.
14: वो था इनॉग्रेशन था आज.
15: इनॉग्रेशन था आज. सो ये जो न्यू नेटवर्क है, ईस्ट वेस्ट लाइन में ये चलेगा स्वानसन टू मैनकाउ, एंड साउथ सिटी लाइन में पोकेकोही टू सिटी एंड देन टू न्यू मार्केट.
14: वेस्ट वालों के लिए थोड़ा अच्छा हो गया ना अभी, क्योंकि कनेक्टिविटी हमारी काफी बेटर हो जाएगी अभी इससे.
15: सो ओनिहंगा वेस्ट लाइन रहेगी, ओनिहंगा टू हेंडरसन ऑफ पीक, एंड ड्यूरिंग पीक टाइम्स सर्विसेज टर्मिनेट एट मांगाफाउ ब्रिटोमार्ट. सो या ये 3 मेजर स्टेशंस भी इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उसके ऊपर भी इन्होंने काफी काम किया है. सो बिगेस्ट बेनिफिट
14: इज स्टेशंस भी ऐड हुए हैं,
15: नए स्टेशंस भी ऐड हुए हैं
14: पापाकुरा के आसपास ना कोई.
15: या एंड इट्स नॉट जस्ट अ न्यू टनल, इट्स ऑकलैंड्स होल रेल नेटवर्क व्हिच वर्क्स डिफरेंटली. बेसिकली ये हो चुका है. सो ज्यादा ट्रेन्स रहेंगी थ्रू द सिटी, क्रॉस सिटी जर्नी ईजी हो जाएगी थोड़ी. सो अभी पब्लिक नेटवर्क के ऊपर यू नो थोड़ा बेटर काम हो चुका है, ये हम कह सकते हैं.
14: क्या बात है, चलो वी कांट वेट या बस आई होप कि ट्रेन में सफर करते करते आपका रेडियो ऐप जरूर चले, ताकि आप अनडिस्टर्ब्ड हमारे हमको सुन सके,
15: एकदम फुल ऑन आप यहाँ पे मजे ले सके. अगर आप गए हैं आज इनॉग्रेशन में, यू वाज देयर ना प्री इनॉग्रेशन पार्टी में कहीं पे सिटी रेलिंग की?
14: नहीं, वो जब वो खोला था वो लोग ने बस देखने के लिए
15: कि कैसा है
14: ये, आके देखो स्टेशन.
15: yeah.
14: तो मैं एक स्टेशन के लिए गया था मैं देखने के लिए. इट वाज नाइस,
15: इट वाज नाइस,
14: बहुत मस्त फ्लैश बनाया. अच्छा बनाया.
15: तो आप भी बताइए अगर आप वहाँ पे गए हैं आपको कैसा लगा, अगर आप आज या पिछले हफ्ते गए हैं वहाँ पे, अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं बाय ट्रेन, एंड हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली यूजेस ट्रेन, आप में से कितने हैं जो ट्रेन यूज करते हैं
14: ऑन अ रेगुलर बेसिस,
15: रेगुलर बेसिस पे 5599 इज अ नंबर, बताइए।
13: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: to you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off. On now.
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

326 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं और आज आपको आखिरी मौका मिलने वाला है बोर्डिंग कॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको करना क्या है, आप यहाँ पे सुनते रहेगा एंड 5 बजे के बाद आपके लिए एक बोर्डिंग कॉल प्ले होगा जिसपे आपके लिए बोला जाएगा कि यू नो इट्स टाइम टू बोर्ड नाउ। एंड आपको उस समय पर हमारी वेबसाइट पे जाना है hum.rova.nz या फिर रोवा ऐप पे जाना है। जो कंपटीशन पेज लिंक है बोर्डिंग कॉल का, वहाँ पे जाइए एंड वहाँ पे आपको बोर्ड नाउ लिख के सबमिट करना है। बस इतना सा आपको करना है एंड आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा। 1 or 2 के लिए 2 रिटर्न एयर टिकट्स आपके नाम हो सकती है, प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी ये भी आपके नाम हो सकती है। और आज आखिरी मौका रहेगा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो सुनते रहेगा ध्यान से।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
2: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
3: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
4: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
3: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
5: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
6: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast, free delivery. 12-panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. Trade

0: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इन्ना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
1: हाँ। अच्छा
0: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं?
1: मिसेस सिंह,
2: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
3: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33।

0: sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
1: 3:37 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं और आते हैं आज के सवाल पे. व्हाट एम आई क्वेश्चन. आज का सवाल आपके लिए ये है, आपको बताना ये क्या है. ये कहता है कि इसके पास कीज है लेकिन लॉक्स नहीं है. आई हैव कीज बट नो लॉक्स. आई हैव स्पेस बट देयर इज नो रूम. यू कैन एंटर बट यू कैनॉट गो इनसाइड. ये क्या है, आपको बताना है 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ. सो आई हैव कीज, कीज तो है लेकिन लॉक्स नहीं है. स्पेस है लेकिन रूम नहीं है कोई भी. यू कैन एंटर बट यू कैनॉट गो इनसाइड. व्हाट इज इट, 5599 पर लिख के भेजिए. ड्राइव कीवर्ड के साथ आपको यहाँ पे आंसर लिख के भेजना है.

0: 18 मिनट बाकी है 4 बजने में 4 बजे ड्राइव शो आपके लिए यहाँ पे शुरू हो जाएगा। एंड जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, मेरा सवाल आपसे ये था कि ये क्या है, इसके पास कीज है, लॉक्स नहीं है, स्पेस है लेकिन रूम नहीं है, यू कैन एंटर बट यू कैन नॉट गो इनसाइड। एंड ऑफकोर्स द राइट आंसर इज कीबोर्ड। थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए। नंद कुमार का मैसेज आया, लता का, कैरल आपने आंसर भेजा है, चरण का आंसर भी आया है, एंड जिन्होंने अपना नाम यहाँ पे नहीं लिखा, थैंक यू आपके भी मैसेजेस के लिए। ओवर द वीकेंड वैसे अगर आप ज़्यादा कुछ और नहीं कर रहे, आपको कुछ वॉक करनी है एंड वॉक करते करते आपको कुछ सुनना है, तो हमारा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं। यू नो पॉडकास्ट सुनते सुनते आपकी वॉक कैसे कंप्लीट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड स्पेशली जब पॉडकास्ट में इंफॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल हो। सो अनफिल्टर्ड इस पॉडकास्ट में इस बार जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेके आए हैं, दिस इज़ आई थिंक मस्ट हैव कन्वर्सेशन इन आवर हाउस होल्ड, जो नहीं होती है स्पेशली हमारी कम्युनिटी में ये कन्वर्सेशंस नहीं होती है। एंड ये कन्वर्सेशन है कि मेरे बाद क्या, व्हाट आफ्टर मी। तो कई बार होता है कि यू नो आपकी मनी, आपका घर, आपका कीवी सेवर, ज्वेलरी, आपका बिजनेस है या जो भी, आपकी गाड़ी है, आपके जाने के बाद उसका क्या होता है। एंड ऑब्वियस आंसर आपके पास होगा, यार आपकी फैमिली का होगा और क्या होगा, लेकिन क्या आपने उसके लिए सही स्टेप्स लिए हैं ताकि वो आपकी फैमिली का हो। सो इन न्यूजीलैंड जो लॉज है वो बहुत ही डिफरेंट है। विदाउट विल यू कैन लीव योर एस्टेट सब्जेक्ट टू सम लॉज, जिसका आउटकम वो नहीं हो सकता है मे बी जो आपने अपने मन में सोचा हो कि आपके लव्ड वंस के लिए हो। इसीलिए ये हमने एक पॉडकास्ट किया है जहाँ पे तानिया पिंटो के साथ हमने बात की है, सीनियर ट्रस्टी है ये पब्लिक ट्रस्ट में। इन्होंने बहुत ही अच्छे वे से ब्रेक डाउन किए बहुत सारे टॉपिक्स, जहाँ पे व्हाट हैपेंस व्हेन समवन डाइज विदाउट अ विल, उनके एसेट्स किन को जाते हैं, एंड कई बार होता है कि इंसान जिंदा है बट डिसीशंस लेने के लिए कैपेबल नहीं है, तो उस केस में भी क्या होता है, एंड ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस पॉडकास्ट में हमारे साथ शेयर की है। इनफैक्ट उन्होंने कुछ केस स्टडीज़ हमारे साथ शेयर की है, कुछ कहानी उन्होंने शेयर की है, जिससे यू नो आपको भी पता चलेगा कि क्या होते हैं, क्या सिनेरियोज़ होते हैं, क्या डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं। इसलिए ये पॉडकास्ट सुनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी ट्रूली फील मी एंड रुजबे कि ये डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन है एक घर पर करना, लेकिन ये कन्वर्सेशन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर पे करना, बिकॉज आप उस नज़रिए से इसको सोच के देखो कि अभी राइट नाउ आप अपनी फैमिली को हर सुविधा प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन जब आप नहीं होंगे आसपास, जो चीज़ें उनको नहीं पता है वो चीज़ें कैसे करेंगे, उनको कठिनाइयाँ आ सकती है वो चीज़ें कंप्लीट करने के लिए, वो चीज़ों आप नहीं चाहेंगे कि उनको बहुत सारी चीज़ों के थ्रू जाना पड़े टू हैव समथिंग विच यू ऑलवेज वॉन्टेड कि उन्हीं का हो। तो इसलिए ये पॉडकास्ट सुनना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को ना तानिया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, स्पेशली हमारी कम्युनिटी को लेके। इनफैक्ट नॉट जस्ट रिलेटेड टू न्यूजीलैंड बट रिलेटेड टू होम कंट्रीज एज वेल, कि यहाँ से वहाँ के कनेक्शंस के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन उन्होंने इसमें दी है। सो डू लिसन टू दिस पॉडकास्ट। अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए, जस्ट राइट ड्राइव ऑन 5599, तो आपको लिंक मिल जाएगा। जिन्होंने ड्राइव कीवर्ड के साथ आंसर भेजा है, आपको ऑलरेडी पॉडकास्ट का लिंक मिल चुका होगा। सो जस्ट राइट ड्राइव ऑन 5599, यू विल गेट द होल एपिसोड। अदरवाइज आप रोवा पे जाइए या वेबसाइट पे जाइए, hum.rova.nz, वहाँ पे क्लिक कीजिए अनफिल्टर्ड विद सैनी एंड रुजबे। स्पॉटिफाई पे भी ये हमारा पॉडकास्ट है, तो ये एपिसोड को आप ज़रूर सुनिएगा। आप आज सुन सकते हैं, कल, परसों, जब भी आपको टाइम मिलता है इस एपिसोड को जरूर जाके सुनिएगा।
1: Brought to you by 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, that's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई

0: interest be on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Hum, accurate traffic.
2: Switch to AMI car insurance.
3: Cloudy overnight for Auckland, a low of 12. Town to Silverdale, 52 minutes. On the northwest into Massey, 25. On the southern, it's heavy southbound from Spaghetti Junction to Hill Road. And coming north from Princes Street to Market Road. Town to Drury taking 1 hour 18 at the moment. Southwestern's heavy from Mangere Bridge to the southern. Town to the airport, half an hour.
2: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
4: For 75 years, Fiji Airways has connected Fiji to the world and brought the world closer to home. From the very first flight to the journeys they take today, Fiji Airways has been bringing families together, welcoming loved ones home and carrying dreams across the world. Now, Fiji Airways celebrates 75 incredible years with their special 75th anniversary sale. Only for a limited time, book now at fijiairways.com. Fiji Airways, 75 years connecting Fiji to the world.
5: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
6: Elite Bathroomware Spring Sale is on now. Huge range of LED vanity mirrors. Complete range of kitchenware in any colour theme, including brushed bronze. That's handles, sinks, taps and Wastemaster accessories. Heated towel warmers in all sorts of styles, even floor mounted. All the brands, all the advice, all in one store. Elite Bathroomware, your Kiwi-owned bathroom superstore. Come in, be amazed and touch it firsthand. Spring Sale on now for September only. Visit in-store or apply online for VIP access.
7: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634 234. TCs and lending criteria apply.
8: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
9: Time check. Brought to you by Mann Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tyres on 0800 00 00 10.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
10: Good afternoon, I'm Bridget Hastie with the latest at 4. The AA is reminding motorists that we've seen a surge in oil prices before and not to panic. Brent crude is trading at just under $108 a barrel, which fuel spokesperson Terry Collins says will lead to petrol price increases in the coming weeks. He points out we had this earlier in the year and we got through it.
11: Just to reiterate, we haven't got a supply problem, but we're just getting a price problem.
10: A six-vehicle crash on Auckland's Southern Motorway is continuing to affect southbound traffic. It happened on State Highway 1 at Drury, leaving two people with minor injuries. The first sod has been turned on the new Whangarei Hospital development. Health Minister Simeon Brown says the site will have two structures, a new acute services building and a 158-bed ward tower. The acute building will include an expanded ED and modern intensive care facilities. The AI researcher who quit his job at tech giant Anthropic for gambling with lives has doubled down on his comments. Jacob Coxon's social media posts garnered hundreds of millions of views. He's told CBS News he was serious when he said the technology could destroy humanity.
12: It really is just a super advanced intelligence. It will be smart enough to kill us. It could blackmail or persuade humans. It doesn't look that different from science fiction films.
10: To sport, two veterans are in the AB's reserves for the fourth test with South Africa. Coach Dave Rennie says Beauden Barrett and Rico Ioane have contributed greatly as leaders. Now it's time to do that again.
13: Both really excited about the opportunity to get a crack, and it's a chance for them to make a bit of a statement and put a bit of pressure on us long-term selection-wise.
10: And the Manly Sea Eagles have a new football performance director, none other than All Blacks World Cup winning coach, Sir Steve Hansen.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
14: Playing Bollywood's biggest hits.
15: Project Gandhi.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
16: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 14.3 डिग्री और आज को वो नाइट 12 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है. आज इवनिंग में भी बारिश होने के चांसेस रहेंगे. सनसेट आज का 6:09 पर.
17: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
18: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
16: 4:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. ड्राइव शो आपके लिए शुरू चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी. रुज़बे बस आता ही होगा यहाँ पे. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा गया है, आपका हफ्ता कैसा गया है सो फार, ये भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. बाय द वे, रिसेंटली जो इतना बड़ा वो ग्लिच हुआ था जहाँ पे सोशल डेवलपमेंट मिनिस्टर, इनके ऊपर भी बोला गया था कि नो, इनको अपॉलोजी मांगनी चाहिए, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी एरर थी जिसकी वजह से काफ़ी फैमिलीज जो थे इनको बेनिफिट नहीं मिला था. मोर देन 30,000 बेनिफिट्स एंड अदर पेमेंट्स वर रॉन्गली सस्पेंडेड डिस्पाइट द कंसर्न्स रेज्ड फॉर 3 months. एंड नाउ जो लुइस अपस्टन है, जो कि ऑफकोर्स सोशल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, इन्होंने अपॉलोजी मांगी है. सो मोर देन 3 weeks जब ये डिस्कवर हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ पेंशनर्स एंड वेटनर्स जो हैं, इनको विंटर एनर्जी पेमेंट एंटाइटलमेंट नहीं मिले हैं, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंड बोला है सीरीज ऑफ मिस्टेक्स के बारे में. शी सेड कि एक्सेप्ट करती है कि ये जो एरर है ये हुई है एंड इसके ऊपर रिव्यू जो है ये हो रहा है कि क्या क्या रीजंस इसके रहे थे एंड ऑल्सो टेकिंग केयर कि आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए. पहले इलेक्शन ईयर है, वैसे नवंबर में इलेक्शन है, जब दिवाली हम मना रहे होंगे यहाँ पे इलेक्शन डे है उस समय पर. सो 7 नवंबर एक्चुअली में. सो उसके अराउंड में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हो रही है, पॉलिसीज़ को लेके बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हैं. मैनिफेस्टो अभी भी वैसे बाकी है काफ़ी पार्टीज़ का, तो इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चा होने वाली है. तो ऐसे मौके पर हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं आपके लिए कुछ स्पेशल सेगमेंट्स लेके आने के लिए एंड स्पेशल इंटरव्यूज़ लेके आने के लिए, ताकि आपके जहन के अंदर जो सवाल है ना वो आप डायरेक्टली पूछ सके, वो आपके जो क्वेश्चंस है वो आंसर हो सके. सो अगर हर एक पार्टी में से कोई ना कोई यहाँ पे आता है अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आपका क्या सवाल रहेगा उनके लिए, किस पार्टी से क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? ड्राइव लिख के यहाँ पर भेज सकते हैं 5599 पर. कोई भी सवाल हो सकता है वो आपका. आपको मे बी मन में लग रहा होगा कि यार ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन थोड़ा पूछना चाहिए, बड़ा ये तो आपने सुना है ना कि नो क्वेश्चन इज़ अ स्टूपिड क्वेश्चन. सो ड्राइव कीवर्ड के साथ यहाँ पे लिख के भेजिए कि अगर किसी भी पार्टी से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, उस पार्टी के लीडर से पूछना चाहते हैं, या पार्टी से बेसिकली आप सवाल पूछना चाहेंगे कि आप इस सेक्टर के बारे में सोचते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, इसके ऊपर क्या काम होना चाहिए, कोई भी सवाल है आपके माइंड में, लिख के भेजिए 5599 पर. वी आर ट्राइंग कि आपके वो जो सवाल होंगे वो हम राइट लोगों तक पहुंचाएं और उसके जो आंसर है ये एक्चुअली आप तक हम डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचाएं. गुड आफ्टरनून रुज़बे.
19: गुड आफ्टरनून सैंडी.
16: कैसे हो?
19: मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ यार.
16: मैं बता रही थी कि यू नो इट्स अ टाइम टू सेंड द क्वेश्चंस हमें यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ इलेक्शन ईयर एंड हम ट्राई कर रहे हैं कि हर एक पार्टी से किसी न किसी को हम यहाँ पे लेके आए.
19: जी, कोशिश हमारी यही रहेगी. और अगर आपके सवाल नहीं होंगे तो फिर उनको भी मज़ा नहीं आएगा ना, और हमको भी मज़ा नहीं आएगा. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सवाल यहाँ पे जरूर पूछिए.
16: या बिकॉज इट इज़ अ राइट टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन. बिकॉज अभी मैं पढ़ रही थी कि लुइस अपस्टन, इन्होंने माफ़ी मांगी है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है जो पेमेंट्स को लेके, बेनिफिट्स को लेके जो इतना बड़ा गुफ अप हुआ था उस चीज़ को लेके, शी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी हो रही है, बहुत सारी पार्टीज जो है सवाल भी उठा रही है, इमिग्रेशन के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है, आज लेबर ने भी उसके बारे में काफ़ी बातें की है, सो बहुत सारी चीज़ें. सो आपका क्या क्वेश्चन रहेगा, आप किस पार्टी से क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, इट कैन बी एनी थिंग. आपके माइंड में कोई सवाल आ रहा है, आप वो सवाल किसी से पूछना चाहेंगे कि यू नो इसके ऊपर क्यों नहीं बात होती है. एनीथिंग
19: पर्टेनिंग टू पॉलिसीज और एनीथिंग पर्टेनिंग टू व्हाट अफेक्ट्स यू जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, मतलब ऑब्वियसली हम ऐसे सवाल कोई जो सेंस नहीं बनाते वैसे जब सवाल नहीं पूछ सकते.
16: लेकिन हम पूछेंगे ना आगे,
19: इसलिए क्लियर करना जरूरी है.
16: क्या रुजबे यार.
19: yeah.
16: So 5599 is a number जहाँ पे ड्राइव कीवर्ड के साथ ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे भेज सकते हैं.

0: पहले ये सब गलतियां हो रही थी मैं मान सकता हूँ, बट अभी आफ्टर सीइंग सो मेनी ब्लंडर्स मैं अभी 3 बार चेक करता हूँ मेरा कैमरा. मैं जब अगर कॉल पे नहीं भी हूँ ना मैं, अगर मैं जा रहा हूँ मेरे मोबाइल पे तो मैं
1: रुज़बे इज़ टॉकिंग अबाउट द मीटिंग्स, जब मीटिंग्स अटेंड करते हैं हमारा कैमरा ऑन होता है.
0: तो ये हुआ है इस लॉयर के साथ जहाँ पे ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे एंड सडनली ये मीटिंग में फिर अपना लैपटॉप जो है उसको सामने रखते है ऐसा और फिर वो
1: नीचे रखता है वो फ्लोर पे एंड देन इज ऑन द टॉयलेट सीट.
0: वो टॉयलेट सीट पे बैठ रहा है और वो सब वो दिख गया है और जो मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं उनको सबको शो दिख रहा है
1: क्योंकि लैपटॉप नीचे रखा है ना.
0: और फिर और द वर्स्ट इज के बाकी सब शांत बैठ के सुन रहे भी है 5-10 सेकंड तक, फिर जब तक एक बोलता है कि भाई तेरा स्क्रीन ऑन है अभी भी.
1: या बाकी मेरे को लगता है शॉक में चले गए थे कि क्या हो रहा है ये
0: बोले कि ना बोले इसको अभी.
1: या आपकी मीटिंग्स में कभी कोई ऐसा ब्लंडर हुआ है? नॉट एट दिस लेवल ऑफ ब्लंडर बट स्टिल सम लेवल ऑफ ब्लंडर्स ऐसा हुआ है क्या?
0: अरे हमारे मतलब हमारे यहाँ पे ना अभी रिसेंटली ऐसा हुआ. तो वो बड़े मीटिंग्स होते हैं ना जहाँ पे 100-200 लोग होते हैं, आधे लोग इन पर्सन होते हैं आधे लोग ऑनलाइन होते हैं. तो वैसी मीटिंग चल रही थी बहुत बड़ी वाली और जो आधे लोग ऑनलाइन थे तो जब वो उनके कैमरा ऑफ होते तो सब छोटे छोटे दिखते हैं. जैसे ही एक का कैमरा ऑन हो जाता है तो वो बड़ा दिखता है वहाँ पे. तो एक ने ऐसा उसका कैमरा ऑन कर दिया बट लकीली उसका वो बैकग्राउंड स्क्रीन जो है ना वो बैकग्राउंड वो क्या बोलते हैं वो नहीं वो स्क्रीन उस पे वो था कोई एक बैकग्राउंड इमेज था कोई
1: ओके
0: क्या बोलते वर्चुअल बैकग्राउंड ऑन था उसका वर्चुअल बैकग्राउंड ऑन था और फिर उसको हमने उसको ऐसा मूव होते देखा बट लकीली उसका सिर्फ चेहरा ही दिख रहा था.
1: ओह माय गॉड.
0: तो मेरे को लग रहा है वो जस्ट बचा बिकॉज ऑफ द वर्चुअल बैकग्राउंड. अगर वो वर्चुअल बैकग्राउंड नहीं होता तो अभी हमारा भी न्यूज में होता वो और मैं ही आके न्यूज करता.
1: एंड क्या आप मल्टीपल काम करते हो? चलो गूफ अप हुआ नहीं हुआ, डू यू डू दिस मीटिंग्स अगर आप अटेंड करते हो और अगर आप घर से अटेंड कर रहे हो मीटिंग्स, डू यू जस्ट टेक योर लैपटॉप अराउंड द हाउस एंड डू अदर थिंग्स एज वेल?
0: या दैट इज अ गुड क्वेश्चन.
1: डू यू
0: मल्टीटास्क ड्यूरिंग योर मीटिंग्स?
1: Yeah, do you
0: except,
1: do that?
0: Except like not multitasking doesn't include checking Instagram and Facebook. वो क्योंकि सब करते हैं. But do you do you do something else apart from that?
1: You know, kitchen में आपने कुछ रखा है वो करना शुरू हो गए, ऐसे washroom में चले गए, कुछ भी anything anything.
0: बर्तन धोने के लग गए.
1: कुछ भी घर का काम.
0: हाँ ऐसा कुछ आपने अगर किया है तो 0800-004-866 या फिर 5599 पे आप मैसेज भी कर सकते हो.
1: नाम आप बताना जरूरी नहीं है, अगर नाम बताने के लिए आप कंफर्टेबल नहीं है जरूरी नहीं कि आप नाम बताइए यहाँ पर, ऐसे आप शेयर कर सकते हैं.
0: जी हेलो. हाँ जय भाई.
2: हेलो.
0: हाँ नाम नहीं बताना था सॉरी.
2: अच्छा
0: बताइए.
2: बीजी में सोशल क्लब चलता था.
0: क्या चलता?
1: क्या कौन सा क्लब?
2: सोशल क्लब जैसे.
0: हाँ सोशल क्लब. हाँ
2: वो सोशल क्लब ड्रिंक होता था वहाँ ना.
0: अच्छा.
2: मेंबर्स थे, मीटिंग करते हैं लगभग करीबन 30-35 मेंबर्स का. मिनट बनाने के लिए सेक्रेटरी ने टाइप रिकॉर्डर रखा था, टाइप करके बाद में मिनट लिखेंगे. तो उसने टाइप के मेन स्विच नहीं ऑन किए.
0: मेन स्विच ऑन नहीं किया
2: कट डाल.
0: तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ कुछ?
2: रिकॉर्डिंग काम होगा जब माइंड स्विच ऑफ है.
0: अरे बाप रे.
1: ओह माय गॉड. ऐसा होता है.
2: हो गया हुआ.
1: या ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है. एक बहुत ही एपिक इंटरव्यू थी. आपको जिन्होंने बिग बॉस 13 देखा है उनको आसिम रियाज के बारे में पता होगा. आसिम रियाज घर से बाहर आया था एंड देन उसके साथ इंटरव्यू थी. फुल इंटरव्यू लाइक क्या बातें की बंदे ने.
0: हाँ
1: क्या बातें की उसने, मतलब मजा आया पूरी इंटरव्यू में.
0: खुल्लम खुल्ला फुल एकदम अनफिल्टर होके बात की थी.
1: वीडियो इंटरव्यू. एंड ओनली थिंग वाज कि रिकॉर्ड प्रेस करना भूल गए
0: पूरे इंटरव्यू होने के बाद.
1: उसके साथ वीडियो चैट करके बंद कर दिया. Yeah, that was the
0: those were the days. Those were the days when Sandy.
1: मतलब imagine करो ना, उससे बातें कर रहे हैं, video chat करके अपने बंद कर दिया, बाद में realize यार save कहाँ हुआ होगा ये? Save तो तब होगा ना जब record किया होगा.
0: Yeah. Well, anyway, देखो things have changed ना as Ruzbe has come onto the show.
1: और वही से.
0: अभी ऐसे सब नहीं होता.
1: God.
0: अभी हम

0: रिकॉर्ड करते हैं लेकिन उसको पब्लिश नहीं कर पाते,
1: वो अलग बात है.
0: एनीवे, और भी बातें करेंगे आपके साथ अभी. बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
2: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
3: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
4: मैं लाऊं अपना ए गेम.
2: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This
4: record,
3: is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार सब चलता है आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
0: Hum. Accurate traffic.
5: Kitchen mania at the Auckland Home Show.
6: Cloudy overnight for Auckland with a low of 12. Town to Silverdale, 52 minutes at the moment. The northwestern heavy from Waterview to Rosebank. The southern to Manukau, 50 minutes. Drury, an hour 20. It's heavy southbound from Newmarket to Manukau. And coming north from Princes Street to Green Lane. Southwestern heavy in both directions around Mangere Bridge and from Puhinui Road to the southern.
5: Visit the Kitchen Mania displays at the Auckland Home Show this weekend.
7: How fresh is your produce? At Barro, our team are at the markets at 3 a.m, handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Barro store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. New season asparagus, luscious tomatoes, bright juicy berries. All at the market's best prices. It's fresher from Barro.
8: Get the family kitted out for less at Rebel Sport. Save 20% on all Nike clothing and 20% off all Nike adult running shoes. Plus, there's 15% off All Blacks Greatest Rivalry fan gear. Gear up for less, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
9: Fuel prices got you feeling? Score 6 cents per litre off every fill with Caltex Pumped. Plus more on Super Pump Days. Fill up, scan your Caltex app or credit card and save instantly. Discount applies up to 50 litres. Caltex Pump T's and C's apply. See caltex.co.nz.
10: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634 234. TCs and lending criteria apply.
11: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
12: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
1: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
13: सुपर से ऊपर आप सुन रहे हैं ये शो और 4:39 राइट नाउ ऑन द क्लॉक. आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. 6 बजे के बाद आपके लिए हम एक ऐसा शो लेकर आने वाले हैं जो मुझे ऐसे लगता है कि जो जिसके ऊपर बीत रही है ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शो है वो,
14: और जिसके ऊपर बीत चुकी है उसके लिए नॉस्टैल्जिया है.
13: उसके लिए नॉस्टैल्जिया है. यस एब्सोल्युटली. वेरी हैंडक्राफ्टेड शो आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 6 से 7 के बीच.
14: एक सीक्वेंस आपके लिए हम लेके आने वाले हैं. स्टेजेस है उसमें कि पहली स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में.
13: बोल देते हैं ना स्टेजेस ऑफ ब्रेकअप.
14: स्टेजेस ऑफ ब्रेकअप.
13: तो क्या मतलब like let's say when you are going through a breakup, when your relationship is ending, so what are the different stages that you go through?
14: Yeah.
13: तो वो हमने आपके लिए आज क्यूरेट किया है एंड डिफरेंट स्टेजेस विल बी पोर्ट्रेट थ्रू डिफरेंट सॉन्ग्स.
14: बॉलीवुड थीम ही ऑफ कोर्स इसकी रहने वाली है
13: जी.
14: गानों के जरिए ये जो स्टेजेस है ये आज हम यहाँ पे आपको सुनाने वाले हैं,
13: अनपैक करेंगे और फिर उसके ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे. एंड लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है पता है, एंड द रीजन वाई वी आर सीइंग इट राइट नाउ इज बिकॉज हम हर किसी के आसपास ऐसे हमारे दोस्त हैं, कुछ लोग हैं जिनको हम जानते हैं वो गोइंग थ्रू लाइक यू नो सम रिलेशनशिप प्रॉब्लम और दे आर गोइंग थ्रू दोस दैट लिम्बो स्टेज जहाँ पे साथ में रहना भी है लेकिन नहीं भी रह सकते. यू नो वो एक फेज होता है. तो अगर आप जानते हो किसी को वैसे तो उनको जरूर बोलिएगा अच्छे से साथ के बीच ट्यून इन कीजिएगा बिकॉज दे माइट एंजॉय इट.
14: सो आप भी जरूर सुनेगा 6-7 के बीच में. एंड आपको क्या लगता है कि इन स्टेजेस के सूट करते कौन से गाने यहाँ पे प्ले होने चाहिए? 5599 पर लिख के भेजिए या एंड कौन सी स्टेज के ऊपर वो गाना सूट करता है तो वो भी आप लिख के भेजिए 5599 पर एंड विल ट्राई टू इंक्लूड. बाय द वे ब्लैक कैप्स के जो ओपनर है फिन एलन रिपोर्टेडली बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन T20 क्रिकेट. इन्होंने 3-year कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद बिग बैश लीग टीम. सो या सो ही मूव्ड फ्रॉम पर्थ एंड साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद $740,000 न्यूजीलैंड.
13: कौन सी टीम के साथ?
14: मेलबर्न स्टार्स.
13: मेलबर्न स्टार्स में चले गए अभी.
14: या सो ही इज जॉइनिंग ग्लेन मैक्सवेल एंड मार्कस. सो वहाँ पे उनको ज्वाइन करने वाले हैं इस BBL चैम्पियनशिप के लिए. सो स्टार्स आर पावर हाउस टीम इन दिस कॉम्पिटिशन. सो लेट्स सी इट्स गोना बी अ गुड वन. वैसे यहाँ पे भी जो सीजन है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है. इंडिया की टीम यहाँ पे पहुँचने वाली है न्यूजीलैंड में. सो ब्लैक कैप
13: इट्स गोइंग टू बी सच एन इवेंटफुल सीजन फॉर क्रिकेट फॉर न्यूजीलैंड एटलीस्ट.
14: या
13: क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ब्लैक कैप्स के टूर हो रहे हैं. मतलब ब्लैक कैप्स इंडिया के साथ खेलने वाली है, बांग्लादेश, श्रीलंका.
14: या
13: तीनों टीम्स के साथ खेलने वाली एशियन
14: टीम्स के साथ यहाँ पे.
13: एंड इट्स गोइंग टू बी अ सीजन फुल ऑफ क्रिकेट दिस टाइम.
14: और मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है स्टेडियम में जाके मैचेस देखने की.
13: आई एम होपिंग दैट वेदर इज विद अस. इट्स अ नाइस वार्म वेदर.
14: आई मीन अक्टूबर है तो होपफुली इट्स गोइंग टू बी अ गुड वेदर. बट या इट्स ऑलवेज ट्रिकी.
13: अक्टूबर में तो यार थोड़ा जल्दी कर रहे मेरे हिसाब से.
14: नवंबर में होना चाहिए था.
13: जस्ट वॉश आउट ना हो जाए मैचेस. बट एनीवे वी आर होपिंग कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम एंड वी आर एबल टू एंजॉय लाइक क्रिकेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. क्योंकि यार काफी टाइम से मतलब मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ क्रिकेट को इतने क्लोजली बिकॉज ऑफ टाइमिंग्स.
14: टाइम जोन के कारण. लेकिन यहाँ पे टाइम सूट कर रहा है ना.
13: एग्जैक्टली. सो दैट इज व्हाट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. मेरे को बस अभी कैचअप करना है ऑन टीम्स कि अभी लेटेस्ट टीम क्या है. मेरे को मालूम ही नहीं टीम में क्या चल रहा है. नॉट ब्लैक कैप्स बट आल्सो इंडिया की. दोनों टीम्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अभी कि क्या चल रहा है.
14: अभी कैचअप कर लीजिएगा बिकॉज बहुत ही जल्दी यहाँ पे जो टूर्नामेंट है ये शुरू होने वाला है.
15: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local

बाई 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल आज, वैसे तो बहुत बारिश होने वाली है शाम को और तेज हवाएं भी होने वाली है, बट एंजॉय वाइल द सन शाइनिंग, मेक हे वाइल सन आउट दे। 6:09 पे आज होगा सनसेट। कल तो बहुत ही विंडी होने वाला है, कल बारिश भी होने वाली है, जाने दो, छोड़ो।
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
3: Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Show with Sandy and Rusby.
4: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे।
1: 5:02 हुए हैं। You're listening to the Drive Show with Sandy and Rusby. Hi Sandy, good evening.
5: Very very good evening Rusby. Yes, 5:02 हो चुके हैं। Power Drive at 5 आपके लिए शुरू हो चुका है यहाँ पे। And अगले हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल शो हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे। सो थर्सडेज को हम ट्राई कर रहे हैं, जैसे यू नो आपको पता है कि यहाँ पे ड्राइव थ्रू कन्फेशंस हम लेके आते हैं थर्सडेज को, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक
1: वी आर गोना हैव ड्राइव थ्रू कन्फेशंस विद द पॉलिटिशियंस।
5: यस, पॉलिटिशियंस यहाँ पे आके कन्फेशंस करने वाले हैं, नॉट जस्ट कन्फेशंस बट दे गोना एड्रेस योर क्वेश्चंस।
1: जी, सो या स्टे ट्यून्ड, बहुत ही जल्द हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि हु इज गोना बी आवर फर्स्ट गेस्ट ऑन द ड्राइव शो फॉर नेक्स्ट थर्सडे। And we would want your questions. अब हमने पहले सोचा था कि हम एक अलग सा शो करेंगे इसका, but then we thought that we want all of our drive show listeners to also be kinda involved in understanding कि भाई politics में हो रहा क्या है, elections का क्या हो रहा है update,
5: और ये हमारी community के लिए important क्यों है, why it is very important for us.
1: So we are trying to bring bite-sized information for you so that आपके लिए भी easy होगा consume करने के लिए, digest करने के लिए, and थोड़ा बहुत आपका भी we are hoping कि interest बढ़े, क्योंकि मुझे लग रहा है कि we all should be interested in politics, we all should be interested in elections, because at the end of the day हमारा right है वोट करना, हमारा right ही नहीं, हमारी duty है वोट करना, क्योंकि हम जब वोट करेंगे तभी हमारे हिसाब से चीज़ें होना शुरू होगा।
5: yeah.
1: और वो तब होगा जब आप पहले जाके वोट करोगे, आप सोचोगे कि यार मेरा कोई है ही नहीं तो वोट क्या करूँ, नहीं, आप वोट अगर करोगे तो वो क्या है, डेटा फिल हो जाता है, फिर उनको अगले टाइम में पता चल जाता है कि अहिला इतने सारे 25 से लेकर 45 ईयर ओल्ड पीपल विथ लेट्स से इंडियन एथनिसिटी या इंडियन बैकग्राउंड ने वोट किया या फीजी इंडियन बैकग्राउंड से वोट किया, तब जाके उनको वो हमको सीरियसली लेंगे फिर आगे चल के हमारे डिमांड्स को,
5: जो हमारी डिमांड्स है उनके ऊपर ज्यादा कहते ना कि फोकस करेंगे, गौर फरमाएंगे, फोकस करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, जो पॉलिसीज है उनका ब्रेक डाउन करना कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज है, कौन सी पार्टी की पॉलिसीज आपको सूट करती है, then you do the vote accordingly.
1: So we really would like to bring a very non-biased show for you in regards to elections as well. देखो हम कोई political experts नहीं है और हमारे सवाल भी वैसे ही होने वाले हैं. We, if you are looking for an expert show, then maybe there might be something else for you. But we are looking for a layman show. कि as layman हमारे क्या क्वेश्चंस होते हैं, हमारे क्या क्वेरीज होते हैं, हमारे क्या डाउट्स होते हैं,
5: जैसे एवरीडे हम बात करते हैं गाइस, जैसे आपसे हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ऐसे ही टोन में जो हमारे सवाल उनके साथ रहने वाले हैं, ऐसे कुछ सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल उनसे हम करेंगे जो आप भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं,
1: बेसिक बट इम्पोर्टेंट, जो काफी बार एड्रेस होते नहीं है क्योंकि बड़े बड़े जार्गन्स के बीच में ये बेसिक से सवाल ही मिस आउट हो जाते हैं,
5: वही एक्चुअली में खो जाते हैं,
1: एंड दैट इज वेयर आई थिंक वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस टू यू, बट वी विल ओनली बी सक्सेसफुल इफ यू आर इन इट विद अस, it can't be possible without your support, so we really want your support in this, so please yahan pe drive likhkar hume message kijiye aur hamara jo protsahan hai
5: ye badhaiye, and agar aapko koi sawal hai yahan pe aap submit kijiye drive keyword ke sath.
1: Abhi ke liye aaj Friday hai aur Friday ke din pe hum aapke liye ye lekar aate hain yahan pe
0: connect the dots.
1: आज कनेक्ट द डॉट्स में हमें दो पार्टिसिपेंट्स चाहिए, क्योंकि कनेक्ट द डॉट्स में आज मैंने एक अलग वर्जन गेम सोचा है सैंडी, एंड फॉर दैट वी नीड टू पार्टिसिपेंट्स। थोड़े गाने आपको मैं सुनाऊंगा, अभी एक गाना सुनाता हूँ, उतने में दो लोगों ने यहाँ पे हमें कॉल करना है 0800 0024866। अगर आपने इससे पहले कभी कॉल करके पार्टिसिपेट नहीं किया है कोई भी कॉम्पिटिशन में या कोई भी चीज़ में, मे बी टूडे इज योर चांस, गिव अस अ कॉल एंड पार्टिसिपेट। अभी के लिए इट इज जैस्मिन सैंडलास फॉर यू।

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Oye oye, ye gaana aap sun rahe the abhi. Aur abhi time aa gaya hai for you to participate in this Connect the Dots, jo hum aapke liye lekar aane wale. And I think we have a participant already. Let's see. Hi.
1: Hi.
0: Bataiye, kaisa hai aapka aaj ka din?
1: Bahut acha. Amazing day.
0: Amazing day. वेदर कैसा है? बाहर धूप खिली है कि बारिश हो रही है? अभी
1: अभी बारिश नहीं हो रही, थोड़ी सी धूप निकली है, ठंडी है,
0: थोड़ी सी धूप निकली है. अच्छा ठीक है, तो आज का जो गेम है ना सपना, आपको बताऊं मैं आज का गेम क्या है? आप पार्टिसिपेट करने वाले हो ना?
1: हम दोनों मिलके करेंगे.
0: चलो ठीक है,
2: ठीक है,
0: रोशनी और सपना मिलके करेंगे ना पार्टिसिपेट.
1: हाँ, मेगा भी है. हाँ.
0: मेगा भी है, चलो ठीक है,
2: चलो.
0: तो तीनों मल पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है. तो बेसिकली आज का गेम बहुत सिंपल है. मैं तीन वर्ड्स बोलूंगा आपको, ठीक है.
1: okay.
0: आपको रिप्लाई में एक ऐसा वर्ड बोलना है जो एक सफिक्स होगा, मतलब बेसिकली मैं आपको तीन वर्ड्स दूंगा.
2: एक एग्जांपल दो.
0: एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है. तो लेट्स से मैंने आपको वर्ड दिया हेयर शॉर्ट पेपर. अब आपको एक वर्ड देना है वहां से, सामने से, जो इन तीनों वर्ड्स को वैलिड रखेगा, मतलब
2: जैसे हेयर के साथ मिलता हुआ एक वर्ड होना चाहिए
0: जो एंड में आएगा उसके,
2: ठीक है. शॉर्ट के साथ आना चाहिए और पेपर के साथ आना
0: चाहिए, और वो तीनों एक ही वर्ड होने चाहिए. सो बेसिकली व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? अगर एग्जांपल हम खेल कट, वेरी गुड यार, वेरी नाइस, पकड़ लिया आपने. तो हेयर कट, शॉर्ट कट और पेपर कट, ये तीनों वैलिड है, ठीक है. तो ये गेम है, ठीक है.
2: एक ही वर्ड जो तीनों के साथ कनेक्ट करे,
0: जो एक ही वर्ड जो तीनों के साथ कनेक्ट करे, ठीक है. सैंडी आज तो आई एम ऑन फायर ना यार, मैं एक से गेम लेकर आया हूं आपके लिए. हाय, आज पूरा रील चाट लिया मैंने. एनीवे, सो आर यू रेडी सपना, रोशनी एंड मेगा?
2: लेट्स गो.
0: ऑलराइट, सो तुम्हारा पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, बटर फायर ड्रैगन. अच्छा, दूसरा है बेड सन डार्क. बेड सन
2: गुड वन,
0: क्या बात है यार, वेरी नाइस.
2: कौन पिक कर रहा है ये सपना? आप ही पिक कर रहे हो या कोई और?
0: सपना. अच्छा ओके, वन मोर. ओके, फुट बास्केट स्नो.
2: फुट बास्केट स्नो
1: फॉल. ये रोशनी थी.
2: गुड वन रोशनी. ओके
0: ओके,
1: थैंक यू.
2: नेक्स्ट वन रिजबे.
0: ओके, नेक्स्ट वन इज ओके सी.
1: अभी डिफिकल्ट रहेगा.
0: नहीं,
2: वो यही देख रहा है, बताओ.
0: नहीं, ये नहीं हो सकता है, सॉरी. मैं नेक्स्ट वाला आपको देता हूँ, एक मिनट मेरे को थोड़ा. हाँ ओके, नेक्स्ट वन इज, यार ये क्यों मेरे साथ गड़बड़ कर रहा है यार ये.
2: आपके जहन में कोई है क्या सपना? तो
0: मेरा हैंग हो गया यार.
1: नहीं, नहीं.
0: अच्छा ओके, एक और आ गया. कैंडल नाइट स्ट्रीट
1: लाइट.
0: वाओ यार,
2: इजी था ये यार,
0: बहुत इजी हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, बो ड्रॉप
1: बो. ओके,
0: कोट.
1: बो एज इन किंग.
0: बो
1: बो
0: ड्रॉप
1: कोट.
0: और
1: सूट.
0: और ये जो है ना, ये सफिक्स नहीं, ये प्रीफिक्स है.
2: ओ, प्रीफिक्स है.
0: प्रीफिक्स ढूंढना है
2: आपको. तो पहले वर्ड आएगा, वही मैं सोच रही थी.
0: पहले वर्ड आएगा और उसके बाद ये होगा बो ड्रॉप कोट. बोलो इसके पहले कौन सा वर्ड लगेगा जो कॉमन वर्ड है?
1: कोट, पैंट, ट्राउजर.
0: बो ड्रॉप कोट, लेकिन आपको इससे पहले वाला वर्ड ढूंढना है.
2: रिमेम्बर, एक ही वर्ड बनाना है वो.
0: जो एक्चुअली में न्यूजीलैंड में बहुत दिखता भी है.
1: Rain
0: is the right answer. Yeah, that's rainbow. Right. That's yes, right. Rainbow, raindrop, or raincoat.
2: Yeah.
1: Right.
0: But yeah, thank you so much, guys. Thank you.
2: Thank you, guys. Amazing.
0: Well done, yaar. Super stuff. तो गाइज ऐसे ही बहुत सिंपल होता है, हम लोग इतना बढ़िया सा ऐसा खेलते हैं, आप भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो
2: कनेक्ट द डॉट्स में. एंड जैसा अभी रुजबे सवाल लेके आया है, तो ऐसे ही सवाल आप भी यहाँ पे लेके आ सकते हो. यू कैन थ्रो द चैलेंज, यू कैन डू द ऊनो रिवर्स एज वेल.
0: ऊनो रिवर्स, या वी वांट एक्चुअली एक सेगमेंट करना चाहिए हमने, ऊनो रिवर्स.
2: या यू आस्क द क्वेश्चन.
3: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी.
4: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुजबे.
5: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं.
6: Accurate traffic.
7: Auckland Home Show on now.
8: Cloudy overnight for Auckland, a low of 12 degrees. Town to Silverdale, 52 minutes. It's heavy northbound Oniwa Road to Northcote Road. On the northwestern, slow from Waterview to Rosebank. On the southern, heavy traffic south from Newmarket to Manukau, and coming north from Princess Street to Green Lane. Town to Drury taking an hour 13. Southwestern's heavy Puhinui Road to Mangere Bridge, and south from Onehunga to the southern.
7: Ideas for every space. Auckland Home Show and Garden Showcase on now at Auckland Showgrounds.
9: Powerball is 10 million and must be won this Saturday. That's right, we're getting ready for the Powerball Game Change this weekend. So there's $10 million that must be won. Get your ticket in-store or online to begin to win big.
10: At Bunnings, lowest prices are just the beginning. And you can also earn Bunnings rewards in every aisle. Whether you're just popping in or stocking up for a project, a trip to Bunnings can make you feel more rewarded. Simply download the Bunnings app and join Bunnings Rewards today. T's and C's and exclusions apply.
11: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or Emergency Services.
12: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल. 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री. परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट. Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
13: Are you ready to go home?
14: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
15: Power Drive at 5.
16: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
0: Power Drive at 5, आप सुन रहे हैं. अभी 5:18 हुए हैं एंड एनी मोमेंट बच सकता है
2: बोर्डिंग कॉल
0: एंड ये फाइनल चांस है आपका पार्टिसिपेट करने का.
2: इट इज अ फाइनल चांस और विनर के अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीक में कभी होने वाले, तो आपको जरूर बताएंगे. बाय द वे, अगर आप फीजी कीर्तन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो फीजी कीर्तन संग्रह इसके रिकॉर्डिंग होने वाली है 25 सितंबर को वैदिक सेंटर पापाटोए में. अगर आप कीर्तन करते हैं, रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना है. रजिस्ट्रेशन 13 सितंबर को क्लोज हो रही है. फॉर्म फिल करने के लिए आपको मैसेज करना है KR1599. ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक मिल जाएगा. सिर्फ 20 आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग की जाएगी. सो रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि आपका स्पॉट कन्फर्म है, लेकिन आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा बाद में अगर इसके लिए आप कन्फर्म्ड हैं. ऑल्सो बता दें रुजबे अबाउट एशियन फैमिली.

0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Rusby, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
1: Sunset, beach club और थोड़ा सा सुकून भी
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
4: हेलो एवरीबॉडी
0: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
5: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे ओनली ऑन हम Accurate traffic.
6: Harvey Furnishings Home Show Specials.
7: Cloudy overnight for Auckland, a low of 12 on the northern to Silverdale, 44 minutes. Just a bit heavy heading north, Oniwa Road to Northcote Road. Town to Massey, 23 minutes to Manukau, 43. Drury, just over an hour. Heavy southbound from Green Lane to Manukau and north from Princes Street to Green Lane. Southwestern's heavy in both directions through Mangere Bridge and south from Puhinui Road to the southern.
6: Exclusive Auckland Home Show offers great savings and stylish inspiration this month at Harvey Furnishings.
8: Do you know why so many of your neighbours are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mould and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
9: Showerdome.co.nz.
10: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free, and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
11: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
12: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
13: The Auckland Home Showers are now at Auckland Showgrounds with inspiration from the front gate to the back fence. Discover hundreds of exhibitors, expert advice and the all-new garden showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Auckland Home Show, New Zealand's number one home show. We'll see you there.
14: Bunnings has great value nailed for your outdoor spring cleanup with 30 seconds 5 litre outdoor cleaner concentrate only $25.95 or Scott's large reusable garden waste bag just $12.98. Head in store or online for even more great value.
15: Bunnings Warehouse.
16: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right, get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry, limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
17: The beat of Bollywood.
18: World's best, hamari koi branch nahi hai.
19: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
20: ड्राइव शो आप सुन रहे हैं अभी 5:32 हुए हैं एंड आज है 11th September. आज का दिन एक्चुअली में काफ़ी डार्क है इन हिस्ट्री बिकॉज आज के दिन ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2008 या 9 कब हुआ था 2000 नहीं उससे One. पहले हुआ था 2001 में हुआ था ना
21: या या
20: माय गॉड तो कितने साल हो गए यार 9/11 को भी
21: या क्वाइट अ इयर्स रुस्बे 2001 इट वाज राइट
20: तू मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता यार, मेरे को वही इसलिए देखना है अभी, मैं अभी सोच रहा हूँ, मतलब मेरा ये सोच 25 साल हो गए सैंडी, इट्स बीन 25 years, माय गॉड, वाओ 25 साल,
15: 25 यार, 25 years ago, so दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री स्टेट पावरलेस हो गया था, इमेजिन.
20: डू यू हैव एनी मेमोरी ऑफ लाइक दिस इवेंट जो हुआ था?
15: नो,
20: आई
15: नॉट रियली.
20: I do have one very little memory. मतलब ये जब हुआ था तो it was like a big news, हर जगह आया था. But my memory is after that. क्योंकि
15: मेरी भी after की है, like news देखने की है ज़्यादा, but not in real कुछ ऐसी.
20: But एक photo थी मेरे study table के बाजू में लगी हुई, and that was basically of this person, this man, जो World Trade Center पे है और उसके background में वो plane है. And I still vividly remember that picture. It was just a computer printout, but it was there stuck on my thing. कि पीछे plane दिख रहा है और वो World Trade Center पे photo ले रहा है वहाँ पे खुद, मतलब उसकी photo click हुई है. And I just wonder.
15: I think that is one picture जहाँ पे I don't know who that person is. I think I know the picture you're talking about.
20: अच्छा, वो इतना popular हो गया था.
15: I think you know, building collapsed है और वहाँ पे एक बंदा खड़ा है उस सब.
20: नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ.
15: Okay.
20: मैं बोल रहा हूँ कि ये picture है just before the crash.
15: Oh, before the crash.
20: मैं वही तो बोल रहा हूँ ना.
15: Sorry, मैंने वो miss किया.
20: कि वो खड़ा है.
15: हाँ.
20: Balcony पे ऐसा, World Trade Center है वो के ऊपर खड़ा है वो, मतलब one of the floors पे. Background में पीछे plane आ रहा है.
15: Oh my God.
20: Towards the person. So it was, it was crazy. But anyway, if you have any memory of 9/11, 2001, say.
15: So you know, 9/11 mein sirf US security policy change nahi hui thi. It actually reshaped the global geopolitical system as well. Jisme New Zealand ki position bhi aati hai. New Zealand initially support kar raha tha US response to 9/11. Helen Clark ki Labour government thi us samay par. They expressed us samay par, you know, war on terror and sent troops to Afghanistan as well. New Zealand opposed 2003 Iraq invasion baad mein, but relations with Washington was improved. So under John Key, 2010 and 2012, Wellington-Washington declaration jo thi, ye thodi strengthen hui thi, jisme strategic relationship thi US ke saath. At the same time, NZ ne tab build kiya strong economic ties with China as well, जिसमें दे इंक्लूडिंग बिकम द फर्स्ट डेवलप्ड कंट्री टू साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना इन 2008. सो ये जो बैलेंसिंग एक्ट था, इट बिकेम हार्डर आफ्टर अबाउट 2016, बिकॉज चाइना का इन्फ्लुएंस एंड मिलिट्री जो थी इन इंडो पैसिफिक वो इंक्रीज हुई. राइट नाउ न्यूजीलैंड हैज इंक्रीजिंगली मूव्ड क्लोजर टू यूएस. अगर देखा जाए जो करंट नेशनल हेड गवर्नमेंट है, इन्होंने स्ट्रेंथन किए हैं मिलिट्री लिंक विद वॉशिंगटन एंड जॉइन सेवरल यूएस लेड स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग्स एज वेल. अ बिट ऑफ कनेक्शन बिटवीन. तुमने नहीं सुना ना?
20: नहीं, मैंने सुना.
15: नहीं सुना इस बंदे ने.
20: मैंने सुना, काफी सुना मैंने.
15: वाओ, सैफली खान का जो आया.
20: बट मैं उसके ऊपर क्या ही बोलूं अभी, मतलब यार डीप,
15: मतलब डीप नहीं, ये कि न्यूजीलैंड के साथ उसके बाद रिलेशन जो है,
20: जियोपॉलिटिक्स सब चेंज हो गया,
15: सब चेंज हुआ. सो इट्स नॉट जस्ट कि यूएस को अफेक्ट हुआ, अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारी चीजें रीशेप हुई है.
20: हमको कितना ज्यादा अफेक्ट हुआ उसके बाद, हमको सिक्योरिटी पे कितना ज्यादा रोकना पड़ा है 9/11 के बाद. काफी लोग बहुत अफेक्ट हुए. न्यूयॉर्क मूवी देखो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चीज के बारे में, तो न्यूयॉर्क में बहुत अच्छे से सब दिखाया था,
15: डिफरेंट एंगल दिखाया था उसमें.
20: एंड देन उसके बाद माय नेम इज खान आई थी. माय नेम इज खान भी बहुत बढ़िया मूवी थी, व्हिच वाज अगेन यूएस बेस्ड, बट इट शोड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो या, यू कैन आल्सो डेफिनेटली गो एंड चेक दीज मूवी. न्यूयॉर्क देखनी चाहिए आज के दिन. तो आपने आज फ्राइडे नाइट न्यूयॉर्क
15: फॉर यू.
21: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: सुखविंदर सिंह और जसविंदर नरूला की आवाज में सुन रहे थे आप ये बहुत ही एनर्जेटिक गाना. व्हाट अ सॉन्ग यार,
1: एपिक गाना है ये.
0: ऑलराइट, सो आज वैसे 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में आपके लिए एक बहुत ही सॉलिड आवर लेकर आने वाले हैं और ये आवर मुझे लग रहा है आपने सुनना ही चाहिए. सैंडी, मेरा रिक्वेस्ट है कि ये आवर को हमने ट्रेंड मेकर्स में भी लेकर आना चाहिए, बिकॉज दिस आवर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल आवर. मैं काफ़ी लोगों को मिलता हूँ जो स्ट्रगल करते हैं टू गेट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप.
1: And काफी लोग इसमें होते हैं.
0: And it feels very difficult also when long term या फिर even a short term relationship breaks. There's a lot of hurt. There's a lot of anger. There's so many different emotions that are connected to it. And
1: मेरे को लगता है कि वहाँ पे music does help.
0: 100% does help. Yeah,
1: music बहुत help करता है किसी को भी एक चीज के through निकलने के लिए. वो कोई भी चीज होती है जब life में.
0: And based on our experience. We have crafted a music list for you that will explain the different stages of breaking up.
1: So, you know, breakup होने के बाद क्या-क्या different stages होते हैं और end तक सुनिएगा ये. आपको end तक जरूर सुनना है, जैसे होता है ना reel में लिखा होता है
0: watch till end.
1: ये आपको listen till end जरूर करना है, guys.
0: And I personally feel that it's going to be a great playlist.
1: Yeah.
0: और मजा आएगा आपको. तो आप अपने दोस्तों को जो भी अभी करेंटली आर गोइंग थ्रू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मेक श्योर दैट यू फॉरवर्ड देम, लाइक सेंड देम अ मैसेज एंड टेल देम टू ट्यून इन रोवा ऐप के जरिए. फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन ट्यून इन. तो अगर इंडिया में भी
1: अगर
0: आपके
1: आप
0: दोस्त
1: उनको भाषण दे के थक चुके हैं, अब उनको बोले कि हो गया ना, बहुत हो गया मेरा बोलना, नाउ यू लिसन टू दिस.
0: हाँ, और हम ऐसे हम यहाँ पे मतलब हम मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा.
1: ज्ञान की बात नहीं है,
0: लेकिन मैं नहीं दूंगा.
1: अरे
0: या मेरे को एक्चुअली इस ज्ञान के नॉलेज टॉपिक को लेकर मेरे को बहुत ट्रोल कर रहे हैं यार. मेरी वाइफ ही ट्रोल कर रही है बहुत
1: इस टॉपिक को लेकर.
0: हाँ, बोल रही आज का क्या ज्ञान है. क्योंकि मैंने आज एक रील भेजी उसको, नंबर 3 मूलांक के लिए वो रील थी, जहाँ पे वो बोल रहे थे कि नंबर 3 मूलांक आप ज्ञान बहुत देते हो, योर लव लैंग्वेज इज ज्ञान. So, yeah, anyway, तो अभी हम आपको सुनाने वाले हैं कुछ मैसेजेस और फिर उसके बाद 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में आपके लिए लेकर आएंगे एक बहुत ही सॉलिड सा शो. वी लव यू टू कॉल ऑल्सो. अगर आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, इसके बारे में शेयर कर सकते हो.
1: क्या लगता है कि कौन से गाने उस आवर में प्ले होने चाहिए 6 बजे के बाद, कैसे गाने हैं?
0: व्हाट वाज योर ब्रेकअप सॉन्ग? ड्राइव लिखकर भेजिए यहाँ पे, क्योंकि ना हर किसी का एक गाना होता है ब्रेकअप के टाइम पे जो उनको वो सुनना मतलब होता है या जो भी होता है, लेकिन
1: हमारे गाने आप यहाँ पे सुन ही लेंगे 6 बजे के बाद.
0: यार सैंडी, अगर वैसा है तो फिर एक गाना तो मिसिंग है यार जो बजना चाहिए.
1: कौन सा?
0: प्लेलिस्ट में मिसिंग है.
1: आई थिंक या वी गोना ऐड अनदर सॉन्ग जो अभी अभी याद आया है.

0: When you see them on the road, you're suddenly not in as much of a rush to get home. Suddenly, texting her back can wait. You suddenly remember to put your seatbelt on. And you suddenly remember what your indicator's for. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.
1: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
2: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
1: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
3: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800-4-NZPMI
4: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुगाव में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुगाव हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
5: Hi New Zealand, Ashley America has cancelled their sofa orders and Big Save got them. So today you get half price sofas. Get 50% off selected sofas, yes, 50% off. We've got large corner suites only $2,999, 3 plus 2 seater suites only $2,499 and a reversible chaise only $1,499. These deals will not be repeated. Stock is very limited, don't miss out, only at Big Save.
6: Check. Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00010.
7: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
8: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Louise Upston will lead the government's response to the public inquiry into the disappearance of Tom Phillips' three children. The Prime Minister's office says Minister Upston is already working alongside other ministers to strengthen the systems responsible for protecting children from abuse, neglect and harm. Christchurch's mayor is delighted by news of the return of rugby's Super Round to the city. April's inaugural event saw millions of dollars injected into the economy at the opening of Te Kaha Stadium. Phil Major says it's a sign of the city's rejuvenation.
9: It's just another cog in the wheel that brings more stuff here. And we've had the Warriors down here. We're going to have the Kiwis rugby league team playing France.
8: The researcher who quit his job at technology giant Anthropic, saying AI could destroy humanity, has been doing the media rounds. Jacob Coxon reiterated to CBS News that the situation is dire.
10: If we keep racing, it'll be a lot harder to have completely watertight safety cases, dangerous for humanity, and literally kill us all. All I'm saying is the current race route probably doesn't end well.
8: State Highway 6 between Makarora and Hawea in central Otago will fully reopen during daytime hours this weekend. The road has been shut on weekdays apart from escorted convoys due to slips. NZTA says more work is needed to address the risk of more debris and rockfall coming down. To sport, the Manly Sea Eagles have a new football performance director. It's All Blacks World Cup winning coach Sir Steve Hansen. The NRL playoffs kick off tonight at 10-10 with the Rabbitohs Knights elimination match. The Warriors Dolphins tomorrow evening from 6:05. Rugby League with Machinery House in a league of their own. And week 7 of rugby's 10-round NPC continues in just over an hour. Fourth place Otago hosting fifth place Tasman.
11: Sports News.
7: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
12: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस
13: सूचित किया जाता है रीता कुमार और रानी रेखा की मां रॉबिन हसन और नरेश कुमार की सासू मां वतुआलेवु नांदी फीजी के भूतपूर्व निवासी मनोरेवा के चंद्रवती कृष्ण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार सैटरडे 12 सितंबर को दोपहर 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप रॉबिन को 0216193599 पर कॉल कर सकते हैं रीता कुमार और रानी रेखा की मां रॉबिन हसन और नरेश कुमार की सासू मां वतुआलेवु नांदी फीजी के भूतपूर्व निवासी मनोरेवा के चंद्रवती कृष्ण की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार सैटरडे 12 सितंबर को दोपहर 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप रॉबिन को 0216193599 पर कॉल कर सकते हैं।
12: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. Drive Show with Sandy and Rusby.
2: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा फाड़ देंगे.
3: एब्सोल्युटली आज तो फाड़ ही देंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज ट्रेंड मेकर्स में फ्राई स्पेशल. I am super excited. Hi Sandy, good evening.
4: Good evening Rusbe. और आज का जो हम special segment आपके लिए लेके आए हैं Trend Makers में, specially craft किया है हमने ये segment. And क्या गाने हैं, मुझे लगता है कि Rusbe आज हमें अपना talk set उसी according रखना पड़ेगा ताकि हम कोई गाना miss out ना करें.
3: अरे यार ये बहुत मुश्किल हो गया.
4: We have to do this.
3: मुझे हर गाने के पहले कुछ ना कुछ बोलना है Sandy यार. हर नहीं तो at least हर दूसरे गाने के पहले कुछ ना कुछ तो बोलना ही है. But right now I want to open up the phone lines. 0800-004-866 number है. If you have overcome a breakup, and what have you done? 0800-004-866 call कीजिए यहाँ पे और बताइए what did you do to get over a breakup. Yeah, yeah. आपका कौन सा मोस्ट हर्ड गाना था ड्यूरिंग योर ब्रेकअप? कुड बी एनी सॉन्ग ना.
4: मैं और उसमें तो गाने क्या बताएंगे, हम तो सुनाएंगे.
3: हम सुनाएंगे आपको.
4: हम तो आपको सुनाने वाले हैं यहाँ पे गाने. बट यू टेल अस अपने गाने यहाँ पे, एंड आपने क्या किया, मतलब कि यू नो एक प्रोसेस होता है, हीलिंग वाला प्रोसेस होता है, उस समय पर आपने क्या किया, कैसे आप उस जर्नी के थ्रू निकले. एंड मुझे लगता है कि जिंदगी में ना हर कोई इस चीज के थ्रू, 90% लोग तो इस चीज के थ्रू जाते ही जाते हैं.
3: 90% बोल रहे हो आप?
4: हाँ 90%, 10% फिर भी होंगे जिनका कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं होगा.
3: That's right.
4: मतलब दिल नहीं टूटा होगा.
3: दिल नहीं टूटा है
4: बेसिकली, उस नॉट ब्रेकअप, दिल नहीं टूटा होगा, इस वजह से लेते हैं.
3: चलो ठीक है, तो आप अगर कॉल नहीं करना चाह रहे कोई बात नहीं, हम आपको गाने सुनाएंगे.
4: एनीवे तुम्हारा कोई ऐसा book read करना, activity join करना, there can be so many things now.
3: For me, there have been multiple things. मतलब क्योंकि multiple हुए ना मेरे.
4: Yeah, yeah.
3: तो पहले मैं गाने सुनता था. उस जमाने में podcast नहीं थे तो. फिर मैं podcast सुनने लग गया. And then फिर मैं गाने सुनाने लग गया. So I have because मैं फिर radio announcer भी बना था.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: So yeah, I've had multiple scenarios what I've done to deal with it. I used to listen to कैसे मुझे तुम मिल गई. अरे ब्रेकअप के बाद भी ये गाना सुन रहे हो आप, कैसे मुझे तुम मिल गई.
4: उसके बाद उन्होंने अपना वर्जन बनाया होगा ना कि खो भी गई.
3: नहीं नहीं नहीं, कैसे मुझे तुम मिल गई, मेरी किस्मत की वाट लग गई.
4: Okay. Yeah, but आप भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे. एंड हमारे पास कुछ गाने आए भी हैं. इनफैक्ट एक दो जो गाने हमारे पास आए हैं वो हमारी लिस्ट में भी है. एक्चुअली वी गोना स्टार्ट विद दिस बिकॉज ब्रेकअप जब होता है तो पहली स्टेज क्या होती है, डिनाइल होता है,
3: पहला
4: नेगोशिएशन होती है, बार्गेनिंग होती है.
3: हो ही नहीं सकता यार, हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं यार, ऐसे कैसे तुम मेरे बिना जी पाओगे.
4: तो वहीं पे ये गाना आता है. या दिस इज अ सॉन्ग मेड फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन.
3: सो या वी आर जस्ट एंटरिंग दैट फेज राइट नाउ जहां पे वी आर इनटू द डिनाइल स्टेज कि नहीं यार ये हो ही नहीं सकता यार, हम एक दूसरे के लिए बने हैं,
4: मान जाएंगे,
3: तुम मेरी है यार.
4: इसकी पिक्चराइजेशन भी वैसी थी गाने की, वैसे

0: ट्रेंड मेकर्स आज आपके लिए जारी है एंड ब्रेकअप स्पेशल आज आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और गेटिंग ओवर ब्रेकअप स्पेशल. सो पहला गाना जो आपने सुना अरिजीत सिंह अलका याग्निक की आवाज में, ये था
1: बहुत ब्यूटीफुल. इट वाज अ डिनायल वन जहां पे बार्गेनिंग है वो सब चीजें, बट देन रियलिटी हिट्स.
0: हाँ, एंड दिस इज व्हेन नाउ स्लोली स्लोली यू आर गेटिंग यूज्ड टू द आइडिया कि हाँ ठीक है ब्रेकअप हो रहा है, लेकिन अभी आप वो फेज में हो जहाँ पे आप चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो कि मेरा ब्रेकअप हो गया है.
1: या
0: बट मन में हुआ नहीं है,
1: मन में नहीं हुआ
0: मन
1: है,
0: मन में एक आस अभी भी जगी है.
1: या डीप डाउन यू स्टिल थिंक कि मे बी सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तो वहीं पे ये गाने की एंट्री होती है.
0: तो ये गाना सुनिए मोहित चान और शिखर रव जयानी की आवाज में. वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी अंजना.
1: व्हिच एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि या आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट यू,
0: आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट यू बट आई But deep down, I still am somewhere.
1: मतलब गाने के वर्डिंग्स यही है कि तुम्हें भूल भूल हम मैं रही हूँ या रहा हूँ, लेकिन उसका मतलब कुछ और है. हाँ.
0: तो सुनिएगा ये एंड बताइए आपको आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं इससे.

0: हमारे आप तशरीफ ले गए, मुलाकात हो गई आपसे।
1: हम प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी, कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: क्लब डिस्काउंट डेज वापस आ गए हैं माइटन मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन में। इस थर्सडे और फ्राइडे माइटन क्लब मेंबर्स को पूरे स्टोर में मिलेगा 15% ऑफ, जो भी चाहिए स्टॉक करो और सेव करो। TCs एंड एक्सक्लूजन्स अप्लाई। माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
5: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes, so eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
6: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
7: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
6: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
7: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
6: iVillage at

0: at Betzaras Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
1: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits, and aaj Trendmakers mein ek alag hi theme lekar aaya aapke liye. If you're going through something, then this one's for you. एंड हमारी कोशिश ये है कि हम इससे आपको थोड़ा मोटिवेट करें कि यार देखो यू नॉट द ओनली वन हु इज़ गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक. वी ऑल हैव बीन थ्रू और सम ऑफ अस हैव बीन थ्रू हार्ट ब्रेक्स एंड देर इज़ लाइट आउटसाइड द टनल. अभी टनल में आप डार्क फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार कहाँ पर सब अंधेरा है, बट आप थोड़ा चलोगे आपको दिखेगा देर इज़ लाइट आउट देर, और वही लाइट हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको आज.
2: तो इस पाथ में आप अकेले नहीं होते हो, देयर आर मेनी पीपल हु आर ऑन द सेम पाथ, जस्ट कि आपको आगे बढ़ते जाना है. सो नेक्स्ट गाना हमारी लिस्ट में जो है
1: या वो है बी प्राग, जो ब्रेकअप स्पेशलिस्ट है उनका.
2: उन्होंने तो बहुत लोगों को रुलाया है, मेरे को लगता है ब्रेकअप टाइप पे काफी लोगों ने बी प्राग के गाने सुने हैं.
1: मैंने बहुत सुने बी प्राग के गाने, मेरे को मेरा मैं बैक टू बैक रिपीट पे मन भरिया सुनता था. दैट यूज्ड टू बी माय क्लासिक सॉन्ग. आज हम वो नहीं सुना रहे आपको
2: या आज वो नहीं, अभी याद आया वो गाने.
1: अरे यार सैंडी, यू नो दिस इज सो मेनी मेमोरीज ऑन दीस सॉन्ग्स, बट वी कांट प्ले ऑल ऑफ देम, सो वी हैव टू डू अ पार्ट टू ऑफ इट.
2: 100% पार्ट टू. सो अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे हैं जहाँ पे यू आर लाइक कि ठीक है तुमने तो ये कर लिया लेकिन अब ना तुम ही पछताओगे.
1: नाउ यू आर इन दैट एंगर मोड.
2: एंगर मोड में
1: भाई अभी तूने मेरे को छोड़ा, अब देख तेरे साथ क्या होता है.
2: यस,
1: सो दिस इज लाइक दैट एंगर मोड.
2: अभी एंगर मोड वाला गाना हम यहाँ पे सुनने वाले हैं.
1: डुबाऊंगा या मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, यू नो इसको आप दो वे में ले सकते हो ये. या तो आप बहुत नेगेटिव जा सकते हो या तो आप इसको बहुत पॉजिटिव कर सकते हो. मेरा यूजुअली लोगों को कहना ये होता है कि इसको आप एकदम पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि
2: एनर्जाइज करके उसको.
1: यू डोंट ट्राई टू पुट समवन एल्स डाउन, यू ट्राई टू ब्रिंग योरसेल्फ अप.
2: या
1: बिकॉज दोनों वेज में आपका आउटकम तो अचीव होगा ना.
2: सो वो जितनी भी एनर्जी है उसको अगर आप सही वे से चैनलाइज करते हैं तो इट्स गुड फॉर यू.
1: एंजॉय कीजिए गाना.

0: Well, ऐसा गाना जो मैंने बहुत ज्यादा सुनाया है, वन ऑफ माय सॉन्ग्स, क्योंकि ये गाना उस फेज का, उस फेज को डिपिक्ट करता है जहां पे नाउ यू हैव गॉन ओवर पास द एंगर फेज.
1: यस,
0: अब मोर एक्सेप्टेंस फेज पे आ गए हो, एंड एक्सेप्टेंस फेज विथ अ लॉट ऑफ लाइक pride is not the right word, but with a lot of self-confidence.
1: 100%. जहाँ पे आपको पता है कि भाई चलो हो गया, अभी टाटा बाय बाय करो.
0: हाँ, तो
1: मतलब this is टाटा बाय बाय song जो अभी आप next सुनने वाले.
0: हाँ, जो next वाला है वो टाटा बाय बाय. इससे पहले वाला अभी भी मतलब जो तेरा घाटा गाना आपने सुना अभी, it was more like कि मैंने peace ले लिया है, बट मैं अब तेको बोल रहा हूँ कि तेरा घाटा हुआ है, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं अब अपने रास्ते पे आ गया हूँ.
1: या
0: एंड देन आफ्टर दिस जो अभी हम आपको प्ले करने वाले, दिस इज लाइक क्लासिक बाय बाय सॉन्ग.
1: या तो इसमें तो मतलब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है. हाँ. ऐसा ये गाना है. वेल, जिस पिक्चर में ये हुआ वहां पे ऐसा नहीं हुआ.
0: हाँ, वहां पे ऐसा नहीं हुआ.
1: वहां पे हीरो ने पीछे मुड़ के दोबारा देखा, बट एग्जैक्टली तब देखा जब वो हीरोइन वापस आती है उसकी लाइफ में. बट या इन रियल it's like tata bye bye
0: tata
1: song
0: bye bye. And sometimes it is very important to have that tata bye bye.
1: Yeah.
0: And ek aur cheez main yahan pe kehna chahta hu, you know, for those jo bolte na ki mujhe closure nahi mila, mujhe closure chahiye, mujhe closure chahiye, mere ko bas ek hi cheez us cheez ke liye mera manna ye hai ki closure can't be reliant on the other party. Closure will always happen आपसे ही, खुद से ही.
1: I 100% agree
0: to this. Your closure.
1: मुझे तो क्लोजर वर्ड ही बहुत ओवररेटेड लगता है. देयर इज नथिंग लाइक क्लोजर फॉर एनीथिंग इन लाइफ. या रिलेशंस को लेके भी क्लोजर नहीं होता है. मतलब ऐसा क्या अगला बंदा बोलेगा या करेगा कि तुम्हें क्लोजर मिलेगा? ऐसा नहीं होता है. तो इट्स अपॉन यू कि आपको वो चैप्टर कब क्लोज करना है. इट्स टोटली योर टेक, योर फीलिंग्स.
0: क्लोजर टर्म क्लोजर है, बट एक्चुअली में अगर आप क्लोजर करने जाते हो तो वो काम ओपनर का करता है.
1: एग्जैक्टली. सो यू डोंट रिलाय,
0: नई आस लेकर आता है तुम्हारी जिंदगी में.
1: या ये वर्ड जो बहुत ट्रेंड किया उस समय पर, आई थिंक इट्स ओवररेटेड वर्ड.
0: 100%. सो अरिजीत सिंह एंड दिस क्लासिक हिट चन्ना मेरेया आपके लिए, सुनिए.

0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Hum, accurate traffic.
1: ThePropertyDirectory.com.
2: Cloudy overnight for Auckland with a low of 12 on the northern town to Silverdale, taking 30 minutes to Sfo Oniwa Road to the Harbour Bridge. To Massey 16 on the southern to Manukau 26 minutes. Drury 37. It's heavy heading north from Mount Wellington to Green Lane, south from Market Road to Sylvia Park. Southwestern is slow northbound through Mangere Bridge and south from Cavendish Drive to the southern.
1: Thinking about property? Everyone you need in one place. ThePropertyDirectory.com.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
6: Whites separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland.
7: Fresh deals on favourites this week at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And red, green or yellow capsicum, $2.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
8: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोगांव में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स GWM मेलोगांव हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
9: The Auckland Home Showers are now at Auckland Showgrounds with inspiration from the front gate to the back fence. Discover hundreds of exhibitors, expert advice and the all-new garden showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Auckland Home Show, New Zealand's number one home show. We'll see you there.
10: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
11: Let's go! 3, 2, 1.
12: Trend Makers.
13: ट्रेंड मेकर्स में आज बहुत ही धुएंदार सेशन चल रहा है वी आर लुकिंग एट स्टेजेस ऑफ ब्रेकअप एंड व्हाट सॉन्ग्स कैन हेल्प यू गेट ओवर ब्रेकअप्स आज वैसे गाने हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं
14: सीक्वेंस यहां पे लेके आ रहे हैं
13: सो या अंटिल नाउ व्हाट वी हैव गॉन थ्रू इज वी हैव गॉन थ्रू द डिनायल फेज द
14: नेगोशिएशन
13: एंग्री फेज देन उसके बाद थोड़ा यू नो एक्सेप्टेंस फेज
14: एंड टाटा बाय बाय
13: सो नाउ नेक्स्ट फेज इज
14: हीलिंग
13: फेज
14: नाउ द हीलिंग स्टार्ट्स इस हीलिंग में दिस सॉन्ग इज माय सॉन्ग हीलिंग में क्या होता है आई डिड द सोलो ट्रेवल्स
13: हीलिंग या बिल्डिंग योरसेल्फ अप
14: एग्जैक्टली मतलब आप फोकस करते हो अपनी प्रोग्रेसिव चीजों के ऊपर लाइक यू डू समथिंग फॉर योर करियर अपने खुद की लाइफ के लिए अपनी हेल्थ के लिए या एनीथिंग यू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ वहां पे हीलिंग शुरू होती है बिकॉज एक्सेप्टेंस के बाद यू स्टार्ट वर्किंग positive things ke upar
13: that's right so no other song than this one and I understand yahan pe bahut sare messages aa rahe hain with a lot of song recommendations kafi calls aa rahe hain sorry hum call nahi utha pa rahe aaj because if we get on calls with you right now hum fir sare gaane nahi play kar payenge
14: yeah so we are very tight with our timeline today but yaar usme ye jo healing gana hai ये अभी यू नो इट्स अ एपिक गाना जो किसी को भी मोटिवेट करता है.
13: तो एंजॉय कीजिएगा ये, एंड वी विल ब्रिंग अ पार्ट टू विद ऑल योर फेवरेट सॉन्ग्स एज वेल, बट फॉर नाउ दिस ब्यूटीफुल ट्रैक.

0: अमित त्रिवेदी जसलीन कौर रॉयल की आवाज में आप सुन रहे थे ये बहुत ही ब्यूटीफुल गाना लव यू जिंदगी. आई थिंक दिस होल मूवी आल्सो इज बीन जस्ट वन क्लास मूवी. शाहरुख खान ने क्या रोल प्ले किया था इसमें, डियर जिंदगी
1: बहुत ही अच्छी. और इस मूवी की थीम ही ये थी, ब्रेकअप से बाहर निकलना, ये सब चीजें.
0: सो एनीवे नाउ वी आर इन दैट फेज जहां पे वी हैव स्टार्टेड लविंग आवर जिंदगी अगेन एंड एवरीथिंग फील्स ब्यूटीफुल, द सन्स शाइनिंग ब्राइटर
1: एंड यू वांट टू पार्टी अगेन
0: एंड नाउ यू आर बैक इन द मार्केट एंड यू आर लाइक के चलो भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है. सो या दिस वाज व्हाट वी ब्रॉट टू यू आज.
1: सो हम ट्राई करेंगे ये जो सेगमेंट आपके लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं इसको हम अपने नॉट ओनली द सोशल मीडिया बट रोवा पे भी लेके आए.
0: रोवा ऐप पे आप जाके ट्रेंड मेकर्स चेकआउट कर सकते हो जहाँ पे आपको ऐसी प्लेलिस्ट और भी मिलेगी. और अगर आप हमें अभी ट्रेंड मेकर्स रोवा पे सुन रहे हो तो और भी हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट आप चेकआउट कीजिए. वी हैव गॉट रोड ट्रिप प्लेलिस्ट, वी हैव गॉट different artists dedicated playlist as well.
1: Yeah.
0: But jate Sandy, what is your last one tip?
1: To anyone who's going through this
0: right now.
1: I will say ki don't be harsh on yourself. Take it easy. अगर आपको लग रहा है कि भाई आप इसे over क्यों नहीं हो पा रहे हो, क्या हो गया, what's wrong with you? It is okay. Give yourself a bit of time. आप अपने ऊपर ज़्यादा वो pressure मत दो. Don't be into the peer pressure कि वो आपको इससे बाहर निकलना है. हर किसी को अपना अपना टाइम लगता है. बट अनदर थिंग इज कि उस डार्क फेस में ज़्यादा टाइम के लिए बैठे मत रहो. अगर कोई आपको अपना हाथ दे रहा है वहाँ से बाहर निकलने के लिए तो उस हाथ को पकड़ के, वो फ्रेंड का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, कोलीग का हो सकता है, सो उसको हेल्प करो और बाहर निकलने की कोशिश करो.
0: दैट इज सो कूल यार, दैट्स रियली गुड एडवाइस. बिकॉज काफ़ी बार क्या हो जाता है पता है, और ये मैं भी इसके इसमें फंस गया था कि काफी बार होता है कि यार ये फेज अपने को इतना एंजॉयमेंट आने लग जाता है ना एक टाइम के बाद.
1: You start liking the sad songs and all that.
0: कि तुम ऐसे लगता है कि यार बस अभी यही, मतलब मेरा लिटरली एक टाइम पे मेरे दोस्त का ऐसा डायलॉग होता था, उसको पूछता था ना कि यार कैसा है, तो बोलता था बस वही गंदे ग्लास में चाय, वही पान बीड़ी, मतलब उसका वो डायलॉग होता था, वो मूवी का डायलॉग है वो. बट दैट यूज्ड टू बी हिज पर्सोना आल्सो आफ्टर अ पॉइंट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अटके मत रहिए वो चीज में. माय वन टिप वुड बी स्टार्ट जर्नलिंग. And by journaling, what I mean is it could be either writing, it could be typing, it could be audio journaling, video journaling, whatever it is. But I would say start journaling, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके मन के जो emotions है वो बाहर आ जाते हैं.
1: You are right. अगर आप किसी से share भी नहीं कर पा रहे हो, at least you are writing it down.
0: और share मत करो किसी के साथ, क्योंकि जब कोई किसी का share करोगे ना, लोगों का problem है वो आपको उल्टा ज्ञान बहुत देंगे. आपको ये स्टेज में ज्ञान नहीं चाहिए.
1: लेकिन इफ देयर इज समवन हु कैन बी अ साउंडिंग बोर्ड फॉर यू, देन यू कैन डू इट.
0: एब्सोल्युटली. सो या एनीवे जस्ट लेटिंग यू नो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसी बात पे अब वीकेंड भी शुरू हो रहा है. तो हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय योरसेल्फ. हम आपको मिलेंगे मंडे को.
1: बाय
0: बाय.

भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: Professional Financials है साथ आपके. Loan और insurance एक छत के नीचे. No broker charge, बस trusted advice. हर डील बनाए perfect right.
3: Refinance के लिए compare करे different banks. Loan process was simple and frank.
2: Business finance या income protection हो, हर step पर guidance perfect हो. सब कुछ मिलेगा यहीं. अपना future secure बनाए.
3: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
4: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
5: Club discount days वापस आ गए हैं Myteton Mega Westgate और Henderson में. इस Thursday और Friday, Myteton Club members को पूरे store में मिलेगा 15% off. जो भी चाहिए stock करो और save करो. T's, C's and exclusions apply. Myteton Mega Westgate and Henderson. Slime.

0: weekdays 6 to 10 a.m. आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279939 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
4: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलुकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविस हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलुकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है।
5: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया। नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
7: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
8: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
9: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
8: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weekend starts here.
10: Friday night rave.
8: How?

0: Supermarket New Lin, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, TradeWorks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIE Science. Jankariyon ke liye hum sunte rahein.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
5: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
6: अब हमारा क्या होगा?
7: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
5: तो क्या करें?
8: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
9: So, you've been thinking about adding a modular home to your property.
10: Yes, and Zillow sounds great, but I'd really like to see one in person.
9: Now you can. Come and walk through two fully finished Zillow homes at the Auckland Home Show 10 to 13 September. Explore the layouts, see the premium inclusions for yourself, and talk to the team about what could work on your property.
10: Now that I like the sound of.
9: Discover Zillow by Ashcroft Homes at Tiny Living Lane or visit zillow.co.nz.

0: मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं?
1: तू क्यों अच्छा लगेगा?
0: तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी?
1: मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कौरा बौरा हो रहा था ना।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
7: मुझे भी।
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
8: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, मैं

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर.
1: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलुकाओ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट. नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलुकाओ. हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
2: हर हैवान इंसान नहीं होता पर हर इंसान हैवान बन सकता है.
3: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना.
2: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी.
4: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
3: ये आखिरी
2: हैवान नाउ शोइंग इन सिनेमास. डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.

0: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
1: Spend $30 at Trade Depot and get fast, free delivery. 12-panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
3: हाँ। अच्छा
2: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
3: मिसेस सिंह
4: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
5: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.in
6: The beat of Bollywood.
7: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम Playing Bollywoods.

0: Flight on Hum.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन। Playing Bollywood's biggest hit.

0: Night Flight on Hum.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: Sona Sansar Papa Toto ke gehno ke saath aap bhi chamak jayenge.
7: Churi, kangan, payal, bali, jhumke aur chokar. ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
6: सोना संसार पापा टोयोटा, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोयोटा.
8: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोयोटा. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.

0: my channel.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best. हमारी कोई branch नहीं है.

0: रावण में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हाँ, क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। कशिश नेचुरल योगर्ट।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुगाव में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुगाव। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: हर हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
8: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
7: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
9: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
8: ये आखिरी है।
7: हैवान नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC।
10: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
11: Playing Bollywood's biggest hits.
12: Budget gaane.

0: Flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki duniya mein already bahut sare perfect polished Instagram friendly stories hain aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw, emotions hote hain real aur conversations hote hain bina mask ke.
3: Raja, mantri, chor, sipahi sab yahan aate hain.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Professional financials hai saath aapke. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
6: Get your flooring project started now with Flooring Extra at the Auckland Home Show. So come see us for Auckland Home Show exclusive savings on Bremworth carpets, quickstep laminate, timber and more. Can't make it to the show? Visit one of our 10 Auckland showrooms to discover the deals. But be quick, savings are only available from Thursday 10th to Sunday 13th of September.
7: Flooring Extra. Adore your floor.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces, first come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
9: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम. और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
10: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok, one epic trip. 5-star all-inclusive stays, breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
2: ये गलत बोल दिया यार।
1: और पहनता भी नहीं है उसको।
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो।
2: अभी ब्रांड हो गया ना।
1: रुस्बे के बाल लगे उससे।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Playing Bollywood's biggest hits. Night Flight.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी supermarket से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
3: हाँ, अच्छा
2: बताओ तुम्हारा फोकस. फोकस साडा कुछ नहीं.
3: मिसेस सिंह,
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
5: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
6: Playing Bollywood's biggest hit.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुगाव में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविस हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुगाव। हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
3: कभी भी कहीं भी मस्त मलंग सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
4: आ गया आ गया आ गया।
3: यू आर लिसनिंग टू अविनीत।
5: क्योरा बुला सलाम नमस्ते सत श्री अकाल केमचो नमस्कार वेरी गुड मॉर्निंग। जबकि आज है 12 तारीख सितंबर तो हमेशा की तरह आपके साथ में हो गए हैं। लेकर आए हैं सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो आपके फेवरेट डाल हम पर जिसे आप सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर। और हमारा और आपका साथ अभी से लेकर 12 तक रहेगा। ऐसे में साथ देते रहिएगा। और रास्ते पर जबकि मैं सफ़र कर रहा था तो थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो ऐसे मौसम को ध्यान में रखते हुए आप भी सफ़र कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा ख्याल रखिएगा रास्ते पर भी। एंड आप हेड आउट कर रहे हैं अपने काम की ओर अपने नौकरी पर तो हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग। और ऐसे में इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग को आपके साथ में स्पेंड करने के लिए मैं हूं अभी आपके साथ में लेकर आया हूं आपके लिए ढेर सारे बेस्ट विशेस। और ये सभी कुछ आपके साथ में बांटता रहूंगा अभी से लेकर 12 तक। ढेर सारी बातें भी आपके साथ में होती रहेंगी। ओवरनाइट समाचारों में कुछ अगर जो हुआ है ऑकलैंड या फिर न्यूजीलैंड में इसके बारे में भी शेयर करेंगे। और मौसम पर भी एक झलक देखेंगे। ये सभी कुछ आपके साथ में रहेगा। एंड कुछ अपनी भी कहेंगे कुछ आपकी भी सुनेंगे। 5599 इज द नंबर साथ में 0800004866 पर आप हमें कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं। तो बस यही सभी कुछ आपके साथ में रहेगा। आपकी भी दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारी तरह। हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग। और इसी तरह से साथ मिलकर इस सफर को तय करेंगे।

हम पर यह है सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो। मैं हूं आपका साथी अवि, और मैं आपको बताऊं, सुबह सुबह दो चीज़ों का जवाब नहीं है। पहला तो जो एक सुबह की पहली चाय होती है उसका कोई जवाब नहीं होता, और जो दूसरी चीज़ है ये आपके मैसेजेस, इनके कोई जवाब नहीं होते। क्योंकि जब मैं यहाँ 6 से होता हूँ तो अक्सर चार दीवारों के बीच में मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आता हूँ। एंड दी ओनली कनेक्टिविटी इज़ योर टेक्स्ट मैसेजेस, जहाँ गुड मॉर्निंग आप हमारे पास में भेजते रहते हैं। तो इसी तरह से आज भी नो डिफरेंट, 5599 पर आप अपने गुड मॉर्निंग का जो मैसेज है हमारे पास में सुबह सुबह भेज सकते हैं, या फिर कोई सेलिब्रेशन है, किसी का जन्मदिन है जिसके बारे में आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो नंबर इज 5599। और बस थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आएंगे वेदर अपडेट कि आज का दिन मौसम कैसा बर्ताव करेगा आपके साथ में, इस पर भी बातें बस थोड़ी देर में आपके साथ में रहेंगी।

0: हम पर मैं हूँ आपका साथी अवि, और एक नजर मौसम की ओर देख लेते हैं। जबकि आज है 12 तारीख सितंबर, तो ऐसे में आज दिन भर कहीं ना कहीं आपको एक विंडी डे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके साथ में जो सनराइज है, बस 7 मिनटों के बाद में एट अराउंड 6:25 आप सनराइज भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो दिन भर रहेगा आपके लिए, खासकर ओकलैंड में फोरकास्ट किया गया है, फ्यू शावर्स हियर एंड देयर क्लियरिंग टू अ फाइन आफ्टरनून, यानी कि शाम होते होते वेदर क्लियर हो सकते हैं, फिर बाद में इवनिंग में कुछ और बादल जो है गिर सकते हैं। इसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो सनराइज एट 6:25 AM। अगर जो नेशनली देखें तो ऐसा वेदर फोरकास्ट किया गया है मेट सर्विस द्वारा, जितने भी टाउन्स एंड सेंटर्स है अगर जो मैं देख रहा हूँ तो सभी जगह पर मिक्स्ड कंडीशन लग रहे हैं। नॉर्थ आइलैंड में खासकर कि आपको धूप और जो बादल है बराबर की दिख रहेगी। इसके साथ में साउथ आइलैंड में क्राइस्टचर्च हुआ, साथ में ब्लेनहम, यहाँ पर धूप है आपको नजर आएगी, और इसके साथ में डनीडन और इनवरकागिल में मिक्स्ड वेदर कंडीशंस आपके लिए रहेंगी।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स Breakfast Show with VJ and Pooja.
3: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
5: That is very that is a very acceleration.
4: That's a very acceleration. Yeah.
5: Amazing acceleration.
4: This is my fancy English. That's a very.
5: अरे होता है यार, सब चलता है। आधी नींद में हूँ मैं।
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: कॉफी और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
1: That's right. Saturday breakfast show लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ. अभी आपके साथ में हूँ जबकि 6:20 हो चुके हैं. ऐसे में जो पहला मैसेज है आ गया है क्वीन की तरफ से. गुड मॉर्निंग अभी आपने लिखा है, आपको भी गुड मॉर्निंग और हैव अ वंडरफुल सैटरडे. तो आप भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं 104.2 FM पर या फिर रोवा पर. और अभी तक आपने अपने जो गुड मॉर्निंग के मैसेज है नहीं भेजे तो भेज दीजिए हमारे पास में, ताकि हमें भी पता चले भाई आप भी जागे हुए हमारे साथ में. एंड यू आर कीपिंग मी कंपनी ऑन हम.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: हम पर अभी का साथ है और जबकि आज सुबह का जो पहला समाचार आपके लिए 8:08 रहेगा, लेकिन इधर समाचारों की सुर्खियां मैं आपको बता दूं, जबकि इसी वीक एक ट्रेन एक्सीडेंट में एक स्टूडेंट की मौत हुई थी यहां ओकलैंड में, तो जो माउंट एल्बर्ट ग्रेमा स्कूल के जो स्टूडेंट है उनका अब नाम बयां कर दिया गया है कि ही वॉज विंटोनिया

0: केके की आवाज़ में आप सुन रहे थे आशाएं, और ये सच ही तो है कि अगर जो दुनिया किसी पर टिकी है तो ये आशाएं या फिर उम्मीद है। और आशाओं को लेकर ये भी कहा गया है कि इवन इन द डार्केस्ट मोमेंट्स, जहां पर आपके लाइफ में आपको लगता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं है, जो एक नई सुबह है, ये आपके लिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है। और इसी को लेकर हमने भी अपने हम फेसबुक पेज पर आपके लिए एक जो पोस्ट है ये अपलोड किया है। आई एम प्रीटी श्योर ये आपको भी पसंद आएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल बातें जो हम सभी को मोटिवेट कर सकती है, बस इसी को लेकर एक छोटा सा वीडियो हमने अपलोड किया है। इफ़ यू हैव द चांस तो जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। 20 मिनट बाकी है 7 बजने में, और बस थोड़ी देर में कमिंग अप नेक्स्ट आपके साथ में शेयर करेंगे कि आपके आसपास खासकर ओकलैंड में क्या कुछ होने को है आज, और कहां पर आप जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं हूं अवि, और आशाओं की बात करते हुए अभी भी पूरा आशा है, आशाएं हमारे साथ में हैं कि मैसेजेस आपके 5599 पर बस आने ही वाले होंगे।
1: स्टार्ट योर सैटरडे फ्रेश विद द परफेक्ट मिक्स
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब।
1: कीप काम बिकॉज पंजाबी स्वैग इज ऑन।
3: ना दिल मंगिए तेरा।

0: कॉफी और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में और ये है सैटरडे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट शो. और आगे बढ़ते हुए मैं आपको पहले ये बता दूं कि एक बहुत ही प्यारा बर्थ डे मैसेज हमारे पास में आया है भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, जहां पर इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है कि शशि खतर जी एवनडेल की है, आज वो अपना बर्थ डे सेलिब्रेट कर रही हैं. तो ऐसे में आपको याद करते हैं शशि जी और आपको ढेर सारा प्यार देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थ डे हमारी ओर से और हम की पूरी टीम की ओर से. तो जबकि आज 12 तारीख सितंबर है, मे यू बी स्पॉइल्ड टुडे शशि जी, और आपको ढेर सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस मिलते रहें, ढेर सारे उपहार और प्यार आपको मिलते रहे. आपका भी जन्मदिन है तो आप हमारे पास में 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली में किसी का जन्मदिन आज सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इसका जो मैसेज है 5599 पर ज़रूर भेजें, या फिर आपकी शादी की सालगिरह है तो ये भी आप खुशियां हमारे साथ में ऑन दी एयरवेव्स ऑफ हम बांट सकते हैं बाय टेक्स्टिंग मी ऑन 5599. कुछ 17 मिनट बाकी रह गए हैं 7 बजने में सुबह के, अभी भी आप जागे हैं. वेलकम टू द शो, इट्स द वीकेंड, मैं हूँ अभी आपके साथ में और लेकर आया हूँ सैटरडे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट शो आपके साथ में.

हम पर इट्स 10 अवे फ्रॉम 7, मैं हूं आपका साथी अवि और साथ देता रहूंगा आपका। एक प्यारा सा मैसेज आया हमारे प्लेटफॉर्म में, हेलो अवि एंड हम टीम, गुड मॉर्निंग, आई लाइक्ड योर मोटिवेशनल ट्वीट दिस मॉर्निंग एंड एंजॉयड द सॉन्ग आशाए संग बाय केके, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू सो मच आपके प्यारे से मैसेज के लिए। 8462, आपने नाम तो नहीं लिखा लेकिन आपको भी विश करते हैं हैव अ वंडरफुल सैटरडे। और ये जो इंस्पिरेशनल कोट्स है आपके लिए लेकर आते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ड्रेडफुल बिजी और थके थके वीक के बाद में, वीकेंड में क्या जरूरी है, ये जरूरी है कि आप अपने अंतर मन को भी मरम्मत करें, यानी कि योर सोल नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ फिक्सिंग टू। इसके लिए आपके लिए ढेर सारे अच्छे अच्छे गाने बजाते रहेंगे और ढेर सारी बातें भी करते रहेंगे। और जबकि बात होती है सोल फिक्सिंग की, तो अभिजीत की सूदिंग आवाज़ से और कुछ बेहतर क्या हो सकता है हम पर।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
2: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call. Dash!
3: At Bunnings, lowest prices are just the beginning. And you can also earn Bunnings rewards in every aisle. Whether you're just popping in or stocking up for a project, a trip to Bunnings can make you feel more rewarded. Simply download the Bunnings app and join Bunnings Rewards today. T's and C's and exclusions apply.
4: How fresh is your produce? At Faro, our team are at the markets at 3 a.m, handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Faro store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. New season asparagus, luscious tomatoes, bright juicy berries. All at the market's best prices. It's fresher from Faro.
5: Har haiwan insaan nahi hota, par har insaan haiwan ban sakta hai.
6: Andha hone se bura pata hai kya hota hai? Bewakoof hona.
5: Haiwan. Starring Akshay Kumar, Saif Ali Khan and Boman Irani.
7: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
6: ये आखिरी
5: है। Hewan, now showing in cinemas. Distribution partner, Forum Films. Rating TBC.
8: You know Elite Bathroomware? Family owned since 2002. 48 hard-working Kiwis. One obsession? Bathrooms. With the ultimate showroom and the biggest range, curating the best brands and bathroom fittings so you don't have to compromise. You asked? Elite delivered. The spring bathroom sale is on for September only. It's your chance to have that high-end bathroom with incredible savings. Elite Bathroomware, Kiwi owned and operated, 59 Allens Road, East Tāmaki. See you there.
9: Playing Bollywood's biggest hits.
10: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
9: Saturday breakfast on Hum.
11: Yo,
10: you're listening to Avineet.
12: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में और सुबह के साथ बज रहे हैं। A very good morning to you, अभी भी आपने tune in किया है। Welcome to the show, यह है Saturday morning breakfast show, लेकर आ रहा हूँ आपके लिए on your favorite dial, हम पर, जिसे आप सुन रहे हैं 104.2 FM, साथ में रोवा पर, इसी तरह से साथ देते रहिएगा, 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा, कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। आपको भी कुछ सुनना है, इसकी जो रिक्वेस्ट है आप हमारे पास में 5599 पर भेज सकते हैं, या फिर आपका कुछ ऐसा कुछ लैंडमार्क डे है जिसको आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर घर पर कोई फंक्शन होने को है जिसके बारे में आप खुशियां हमारे साथ में बांटने चाहते हैं, तो 5599 इज द नंबर जहां पर आप अपने मैसेजेस हमारे पास में भेज सकते हैं। इसके अलावा बस थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे कि क्या कुछ आज आपके आसपास हो रहा है। इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो ये सभी कुछ अपडेट्स बस कमिंग अप नेक्स्ट। इन द मीनवाइल इस आवर की शुरुआत करते हैं जुबिन नौटियाल के साथ में। मैं हूँ अवि और साथ दे रहा हूँ आपका हम पर

अच्छा, ये तो डेफिनेटली जुबिन नौटियाल की आवाज नहीं थी। इसको गाने वाले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये है रेखा भारद्वाज और साथ में है राहत फतेह अली खान। ये ऐसा कभी कुछ होता है कि मिसलेबल हो जाते हैं गाने, लेकिन नंदलेस इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर फॉर अ ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग। ऐसे में आप भी हमारा साथ दे रहे हैं तो साथ देते रहिएगा। और हाँ, इंडिकेशन हमको कैसे मिलता है कि आप साथ दे रहे हैं, बस एक ही तरह से कनेक्टिविटी होती है 5599 पर जब आपके मैसेजेस आते हैं, या फिर 0800-004-866 पर आपके कॉल आते हैं। तो सुबह सुबह अगर जो आपसे सुनना हुआ तो अच्छा लगता है कि हमें भी पता लगता है कि हम आते हैं आपके लिए और आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। और बस थोड़ी ही देर में आपके साथ में शेयर करेंगे कि आपके आसपास, खासकर ओकलैंड सीबीडी में क्या कुछ आज होने को है। बस कमिंग अप नेक्स्ट।

0: हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
1: That's right, ये है सरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम. मैं हूँ आपका साथी अभी. आप भी सुबह सुबह चाय की चुस्की का मजा ले रहे हैं. यू हैविंग योर फर्स्ट कप ऑफ टी, आपको याद करते हैं. और ऐसे में जबकि एक और एक मैसेज आया है हमारे पास में. गुड मॉर्निंग अभी भाई, आप विश करना चाहते हैं अपने नेफ्यू शोन को हैप्पी 10th बर्थडे, और आप हैं इनके फूफा फुआ और साथ में ब्रो रायन की तरफ से ढेर सारा प्यार मिला है शोन को. और शोन जबकि अपनी 10वीं सालगिरह मना रहे हैं, ऐसे में हमारी हम की टीम के ओर से, हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. हैव अ वंडरफुल डे अहेड शोन. मुझे लगता है कि समय को ध्यान में रखते हुए शोन शायद अभी सो रहे होंगे, लेकिन फुफा और फुआ, अगर जो आप बाद में शोन को एक बार फिर हमारे साथ में विश करना चाहते हो, स्पेशली जब शोन खुद सुन रहे हो, तो आप हमारे पास में जरूर दोबारा मैसेज करें. एक बार फिर से शोन को शुभकामनाएं देंगे फॉर हिज 10th बर्थडे. तो ये सभी कुछ आपके साथ में चलता रहेगा सिलसिला कारवा, लेकिन अभी के लिए विनोद राठौड़ है और साथ में अलका याग्निक. और ये भी एक बहुत ही मज़ेदार गीत है फॉर ब्राइट सैटरडे मॉर्निंग.

हम पर रवि का साथ है और जबकि 7:21 हो चुके हैं, तो आपको बता दूं कि जो मैंने वादा किया था कि आज क्या कुछ आपके आसपास ओकलैंड सीबीडी में हो रहा है खासकर, तो ये जो चाइनीज ब्रश पेंटिंग वर्कशॉप है, अगर जो आप कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि आपको कुछ आर्ट की तरफ मोड़ लेना है या फिर आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं, तो ये खास आपके लिए जहाँ पर एक वर्कशॉप किया जा रहा है आज सीबीडी में टू सेलिब्रेट द मिड ऑटम फेस्टिवल, और यहाँ पर हैंड्स ऑन क्रिएटिव एक्सपीरियंस आपके लिए रहेगा जहाँ पर एक एक्सपर्ट आपको सिखाएंगे कि कैसे आप ब्रश पेंटिंग कर सकते हैं। ये जो वर्कशॉप है खास करके डिज़ाइन किया गया है फॉर अडल्ट एंड किड्स ओवर द एज ऑफ 8 ईयर्स, तो कहीं ना कहीं अगर जो आपने सोचा था कि हाँ आपको एक नया स्किल सीखना है, एक नया आर्ट आपको सीखना है, तो ये मौका आपके पास में है। जबकि पानिल लाइब्रेरी में आज 10:30 AM से लेकर 12:30 PM तक ये जो वर्कशॉप है चलेगा। तो पानिल लाइब्रेरी, यह है जुबली बिल्डिंग 545 पानिल रोड, पानिल ओकलैंड सीबीडी में। यहाँ पर आप सुबह 10:30 से लेकर 12:30 तक जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, वर्कशॉप है और इसमें आप जाकर भाग ले सकते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक अप अ न्यू स्किल, पेंटिंग आप लेना चाहते हैं फॉर योर फ्री टाइम एज अ हॉबी या फिर आपकी पसंद थी और आपने कई दिनों से सोचा था कि हाँ एक नया स्किल आर्ट सीखेंगे, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल मुफ्त है आपके लिए। और आपको सिर्फ जाना होगा पानिल लाइब्रेरी एट 545 पानिल रोड, और यहाँ पर सुबह 10:30 से लेकर 12:30 तक आपके लिए ये वर्कशॉप कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ हो रहा है, बस थोड़ी देर में और एक अपडेट है हमारे पास में आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग आपको विश कर रहे हैं सुबह 6 से, और आप भी अभी तक आपने जो मैसेज है नहीं भेजे हैं तो थोड़ा सा अपने उंगलियों को तकलीफ दीजिए, 5599 पर अपना जो प्यारा सा मैसेज है आप हमारे पास में भेज सकते हैं।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Get the family kitted out for less at Rebel Sport. Save 20% on all Nike clothing and 20% off all Nike adult running shoes. Plus, there's 15% off All Blacks Greatest Rivalry fan gear. Gear up for less, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
7: The Auckland Home Showers are now at Auckland Showgrounds, with inspiration from the front gate to the back fence. Discover hundreds of exhibitors, expert advice in the all-new garden showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Auckland Home Show, New Zealand's number one home show. We'll see you there.
8: MediaWorks complaints. How can I help?
9: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
8: Nice.
9: And you talked me into creating this funny character.
8: Great.
9: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
8: Are you?
9: Yes.
8: Are you Bobby the Baker?
9: Yes.
8: What's that thing you do again?
9: Stop it.
8: You bring the mouth.
9: Stop it.
8: I'll bring the pie.
9: Stop it, please.
8: Okay.
9: Yeah, sure, I might have three stores now, but Bobby's more famous than me.
8: So what's the problem?
9: My name's Bruce.
10: Advertise with MediaWorks.
8: New Zealand listens to us.
11: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
12: हाँ। अच्छा,
11: बताओ तुम्हारा फोकस साडा कुछ नहीं।
12: मिसेस सिंह,
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
14: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
15: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture, with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner, they've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
16: Non-stop Bollywood.
17: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
16: हम playing Bollywood's biggest hits. Saturday breakfast on Hum.
18: That's right, ये है Saturday breakfast show अभी के साथ में, और जबकि एक डांस फॉर्म के बारे में हमने आपसे बातें कर ली है, जहां पर पेंटिंग वर्कशॉप के बारे में बताया, अब एक और एक आर्ट फॉर्म है जैसे कहते हैं डांस, या डांस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट, और ऐसे में लाइन डांस अगर जो आपको सीखनी है, लाइन डांस इज मोर लाइक वेस्टर्न कंट्री जो डांस है, इसको लेकर इसको ऐसा किया जाता है मेरे ख्याल से, यू हैव टू स्टैंड इन अ लाइन, एज द नेम सजेस्ट, लाइन डांस है, और बस एक लाइन में खड़े होकर आपको स्टेप सिखाए जाएंगे एंड यू कैन डांस अवे। तो ये जो वर्कशॉप है हाउ टू लाइन डांस, ये अगर जो आपको सीखना है तो फंगा परोवा लाइब्रेरी, 9 मेन स्ट्रीट, स्टेनमोर बे, ऑकलैंड में ये रहेगा, और आज आप वहाँ जा सकते हैं दिन में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, आपको सिखाया जाएगा कि लाइन डांस कैसे किया जाता है। इसके अलावा हमारे कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है इस पर भी जो अपडेट्स है बस थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे, जबकि काफ़ी जगहों पर गणेश उत्सव मनाया जाएगा नेक्स्ट वीक से, तो इस पर भी लेटेस्ट अपडेट्स बस थोड़ी देर में हमारे साथ में हम पर रहेगा।

हाँ, पर मैं हूँ अभी आपके साथ में। और जबकि कम्युनिटी न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो श्री राम मंदिर जो कि है 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में, यहाँ पर गणेश उत्सव रहेगा। इसे मनाया जाएगा ट्यूसडे 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक, और यहाँ पर हर रात्रि को 7:20 PM से लेकर 9 PM तक कथा रहेगी। साथ में फाइनल डे का जो पूजा रहेगा 20 सितंबर को, ये सुबह 9 बजे से शुरू होगी, और फिर गणेश विसर्जन भी रहेगी 12 बजे से। अगर जो आपको और जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो आप राम मंदिर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और कई जगह पर जो सेलिब्रेशंस है ये रहेंगी, जिस पर जानकारी आप तक हम बारी बारी से पहुँचाते रहेंगे। इट्स 25 Away From 8। मैं हूँ अभी आपके साथ में, लेकर आया हूँ ढेर सारा प्यार ऑन द 12th of September, शनिवार की सुबह आपका साथ दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग।

0: हम पर यह है सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो, मैं हूं आपका साथी अवि। और कम्युनिटी न्यूज में आपको यह भी बता दूं, अगर जो आपको एक भक्ति रस कथा में भाग लेना है तो आपके पास में मौका है, जबकि ब्रज रास रसिक डॉक्टर श्री कृष्ण किंकर जी, जो कि श्रीधाम वृंदावन से है और एक नाम संकीर्तन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है, ये लेकर आ रहे हैं 7 डे श्रीमद भागवत कथा, जो कि रहेगा 14th of September से लेकर 20th September 7:30 PM हर रात्रि को ये शुरू होगी कथा पाठ, और साथ में 9:30 PM पर समाप्त होगी। आपको सिर्फ जाना होगा भारतीय मंदिर, जहां पर ये जो सेलिब्रेशन है ये रहेगा। इसके अलावा नोट शो भारतीय संगम आपको इन्वाइट कर रहा है गणेश चतुर्थी के लिए, जो कि रहेगा 19th of September को ये सेलिब्रेट करने वाले हैं। दिन में 11 बजे से रहेगा, यहाँ पर 11 पर गणेश पूजा, साथ में सत्यनारायण की पूजा होगी, उसके बाद में प्रोग्राम होती रहेगी। तो आपको इनवाइट किया जा रहा है ताकापुना वो मेमोरियल हॉल पर, जो है 7 The Strand ताकापुना ओकलैंड में, यहाँ पर फ्री पार्किंग भी आपके लिए अवेलेबल है। तो नोट शो भारतीय संगम आपको इनवाइट कर रही है फॉर दी गणेश चतुर्थी 19th September को।
1: स्टार्ट योर सैटरडे फ्रेश विद द परफेक्ट मिक्स सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब।
2: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rusby, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real, और conversations होते हैं बिना mask के।
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
1: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
4: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
5: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
6: अब हमारा क्या होगा?
7: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
8: तो क्या करें?
9: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
10: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. Count the holes in a ceiling tile, or just count the edges and then multiply it. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products. Watch a round of darts. Take a small nap.
11: These are some of the things you can achieve in one blood or plasma donation at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
12: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
13: हाँ। अच्छा
12: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
13: मिसेस सिंह,
14: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
15: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
16: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
17: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Toast, coffee aur hum ka energy. Saturday breakfast on hum.
0: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में और ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो। आप भी रास्ते पर हो, सफर कर रहे हो, अपने काम की ओर बढ़ रहे हो, हैव अ वंडरफुल डे, हमारा साथ देते रहें। और इसी तरह से आप हमें 104.2 FM साथ में रोवा पर सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और एक जरिया है हम फेसबुक पेज, जहां पर हम डेली कुछ ना कुछ आपके लिए पोस्ट अपलोड करते रहते हैं। आज सुबह सुबह हमने लाइफ और लाइफ में लाइफ से भरी हुई चैलेंजेस को लेकर एक वीडियो वहां पर डाला है, जिसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। Maybe you will find it quite interesting. आप भी वहाँ पर जाकर comment कर सकते हैं, क्या आपको जो सुना है, जो देखा है, आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो ज़रूर इसके बारे में आप नीचे वीडियो में comment कर सकते हैं।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: यो मैं हूँ सुता सा छोरा
0: यू आर लिसनिंग टू अविनीत.
3: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में. 8:02 हो रहे हैं. मैं हूँ अभी, जैसा कि मैंने कहा है, और यह है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो आपके साथ में 104.2 FM साथ में रोवा पर. बस इसी तरह से आप साथ देते रहें और 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. अगले आवर पर आपके साथ में रहेगा मस्ती मीठा, जहाँ पर एक थके भरे और जो वीक है ना, उभे हुए वीक के बाद में एक ऐसा दिन होना चाहिए, एक ऐसा सेगमेंट होना चाहिए कि कुछ मस्ती भरी बातें भी आपके साथ में हो सके. तो ऑल ऑफ दिस एट 9. लेकिन अभी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है, एक सवाल है आपके लिए. सुबह सुबह की ये जो ब्रेन टीजा है आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा और आपको सुनने के बाद में यही बताना है कि व्हाट एम आई. और ध्यान से सुनिएगा. यू पुश मी डाउन, आई गेट रेड विद एंगर एंड फ्राउन, आई टर्न थिंग्स इनटू अ शेड ऑफ ब्राउन, एज सून एज आई पॉप अवे यू हॉप, व्हाट एम आई. अगर जो आपको पता लगता है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो 5599 पर अपने नाम के साथ में जवाब जरूर भेजें. एक बार फिर से, यू पुश मी डाउन, आई गेट रेड विद एंगर एंड फ्राउन, आई टर्न थिंग्स इनटू अ शेड ऑफ ब्राउन, एज सून एज आई पॉप अवे यू होप, व्हाट एम आई. देखेंगे कितने लोगों को पता है, या फिर आप सही तरीके से आप जाग गए हो या नहीं. लेकिन इस घंटे की शुरुआत करते हैं, इस आवर की शुरुआत करते हैं इस अगले गीत के साथ में. एंड हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा ऑन 5599.

आप इंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं सरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो का हम पर। और जो सवाल हमने आपसे किया था, लगता है लोगों को मुश्किल हो रही है, लेकिन इट्स अ फन क्विज, तो ऐसे में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। एक बार फिर इसको रिपीट करता हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। यू पुश मी डाउन, आई गेट रेड विद एंगर एंड फ्राउन, आई टर्न थिंग्स इनटू अ शेड ऑफ ब्राउन, एज सून एज़ आई पॉप अवे यू होप, व्हाट एम आई। बस यही आपको अंदाज़ा लगाना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप नीचे पुश करते हो और पुश करने पर वो रेड हो जाती है, एंड उसके बाद में ये चीज़ों को जो भी आप इनको देते हैं, इसको टेन करती है इनटू अ शेड ऑफ ब्राउन, और जैसे ही ये पॉप करती है आप दूर चले जाते हो। यू पुश मी डाउन, आई गेट रेड विद एंगर एंड फ्राउन, आई टेन थिंग्स इनटू अ शेड ऑफ ब्राउन, एज सून एज़ आई पॉप अवे यू होप, व्हाट एम आई। अपने नाम के साथ में 5599 पर अपना जवाब जरूर भेजें हमारे पास में।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और जो सवाल हमने किया था उस सवाल का जवाब अभी तक सिर्फ धर्मेंद्र ने ही दिया है, धर्मेंद्र आचारी ने। और धर्मेंद्र, आपकी सोच तो बिल्कुल अलग दिशा में गई, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक सही हो सकती है। एक बार फिर आपके लिए दोहरा दूँ, यू पुश मी डाउन, आई गेट रेड विद एंगर एंड फ्राउन, आई टर्न थिंग्स इनटू अ शेड ऑफ ब्राउन, एज सून एज आई पॉप अवे यू हॉप, व्हाट एम आई। तो ये जो चीज़ है ना, इसको लेकर एक पूरी की पूरी फिल्म शायद आपने नेटफ्लिक्स पर देखी होगी। 5599 पर आपके जवाब का इंतज़ार है। इफ़ यू नो, डू हिट मी अप विद अ टेक्स्ट, और देखते हैं कितने लोगों को मालूम है या फिर आप फुली अवेक हो इस ब्रेन टीजा के बाद में।
2: 1, 2, 3.

0: अंबर, मैं हूं आपका साथी। और आपको बता दूं, जबकि फिजी कीर्तन रिकॉर्डिंग एक मौका है, अगर जो आप भी एक कलाकार हो, एक आर्टिस्ट हो और आप फिजी कीर्तन को गाना पसंद करते हो, इसमें आपकी रुचि है, तो आपके पास में एक मौका है। जबकि आपको पता होगा हमारे रोवा ऐप में हम फिजी कीर्तन संग्रह का एक ऑप्शन है, जहाँ पर जो कीर्तन है फिजी कीर्तन संग्रह, इसको लेकर एक नया रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। और साथ में ये जो रिकॉर्डिंग है फ्राइडे 25th of September को रहेगी एट वैदिक सेंटर पापटोए में। तो अगर जो आप भी चाहते हैं कि आपकी आवाज़ में भी एक कीर्तन रिकॉर्ड किया जाए, या तो फिर आप किसी को जानते हो जिनकी कला में रुचि है, कीर्तन में रुचि है, और ये शायद अच्छा ही गाते होंगे और आप इनको रिकमेंड करना चाहते हैं, तो उनको कहें कि KR लिखकर 5599 पर ये टेक्स्ट करें। और टेक्स्ट करने के बाद में आपको जवाब में एक लिंक मिलेगा जहाँ पर आप रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, रजिस्ट्रेशन डज नॉट कन्फर्म अ स्पॉट। यहाँ पर क्योंकि ढेर सारी एंट्रीज आएंगी, तो फिर फाइनली एक लिस्ट तैयार किया जाएगा जहां पर आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा अगर जो आप सक्सेसफुल रहे। और इसके लिए टीज एंड सीज डू अप्लाई। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कल क्लोज हो रहे हैं 13 September को, तो आज भी आपके पास में समय है। अगर जो आप ऐसे ग्रुप को जानते हैं जहाँ पर एक से एक बढ़कर कीर्तन गायक हैं और उनमें कोई आर्टिस्ट है जिनको आप चाहते हैं कि इनकी आवाज़ में ये कीर्तन रिकॉर्ड हो, तो आप उनको कहें कि KR लिखकर 5599 पर हमारे पास में भेजें।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
2: कभी भी कहीं भी।
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी,
4: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना।
3: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

That's right, ये है गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट शो आपके साथ में ऑन हम. और आपको बता दूं, जबकि आप जानते हैं जो इलेक्शंस है न्यूजीलैंड में 7 नवंबर को होने को है, ऐसे में अभी से आप जो अपना मन है बना सकते हैं बाय रीडिंग जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं और या फिर जो पार्टी पॉलिसीज है ये सामने आती है, इसको लेकर आप अपना मन बना सकते हैं ताकि आपको भी पता रहे कि कौन सी पार्टी क्या कुछ प्रॉमिस कर रही है. अभी जैसे कि एक बयान आया था न्यूजीलैंड फेस्ट की ओर से, और जहाँ पर पार्टी लीडर विंस्टन पीटर्स ने कहा है कि कहीं ना कहीं उनको एक मेस नंबर ऑफ इमिग्रेशन माइग्रेशन नहीं बल्कि एक स्मार्ट माइग्रेशन पॉलिसी की ज़रूरत है. जबकि उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं जो जितने भी कीवीज है इनको पहली प्रायोरिटीज़ मिलनी चाहिए, एक ऐसा स्मार्ट इमिग्रेशन सिस्टम इनको चाहिए जो जितने भी एम्प्लॉयज़ है इंडस्ट्री के और साथ में कीवी वर्कर्स है इनको ज़्यादा फोकस ये देना चाहते हैं. एक स्मार्ट और या फिर यूँ कहें एक स्मार्ट इमिग्रेशन पॉलिसी ये चाहते हैं इन्फोर्स करना अगर जो इनको ये मौका लगा. और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि एक सरप्राइज़ नहीं है, जबकि ओवर 30% जो जितने भी न्यूजीलैंड रेसिडेंट्स है ये न्यूजीलैंड बोर्न नहीं है. तो ऐसे कुछ बातों को लेकर इन्होंने बयान निकाला है, अपने पार्टी पॉलिसी को निकाला है. तो आप अपडेटेड रहें हमारे साथ में, जितने भी न्यूज़ रहते हैं उनको सुनते रहें और साथ में न्यूज़ को पढ़ते भी रहें ताकि जब 7 नवंबर को आपका मत आपके लिए काम करेगा तो ऐसे में आपकी वोट बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहे, आप जिसे चाहें उसे वोट दे सकते हैं लेकिन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. और यहाँ से जो सवाल हमने किया था इसको एक बार फिर 9 बजे के बाद में छेड़ेंगे क्योंकि अभी तक जो जवाब है सिर्फ धर्मेंद्र का ही आया है. एक बार फिर आफ्टर 9 मस्ती मीठा में इस क्वेश्चन को वापस आपके लिए ओनिया लेकर आएंगे.

0: हम पर 20 मिनट बाकी है 9 बजने में, जबकि वीकेंड है, तो ऐसे में कई जगह पर जो गेम्स है, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ है, ये भी जारी हैं, और कई सोका मम्स जो हैं अपने बच्चों को आज फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए लेकर जा भी रहे होंगे, डेट्स भी जा रहे होंगे, तो ऐसे में एंजॉय योर डे। लेकिन आपका ध्यान खींचते हैं बा शहर फिजी में, जहाँ पर बैटल ऑफ द जाइंट्स, यहाँ पर सेमीफाइनल्स आज होने को है। आज दोपहर सुबह टेक्स ऑन बा, और उसके साथ में 4:30 पर रेवा टेक्स ऑन नसीनू। तो अगर जो आप इन सेमीफाइनल्स की ओर देखें, और आपको पता लगेगा कि सदन की 3 टीम्स है, सुबह रेवा, साथ में नसीनू, और एक अकेला वेस्ट की टीम बा मौजूद है इनके बीच में। तो फाइनल कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सदन टीम्स के बीच में रहे, या फिर एक वेस्टर्न टीम और एक सदन टीम के बीच में रहे। हाउ डू यू फील इसके बारे में, 5599 पर ज़रूर हमारे पास में अपने जो प्रेडिक्शन से आप भेज सकते हैं। अगर जो आप फिजी से हैं एंड यू फॉलो फुटबॉल, आज सेमीफाइनल्स के बाद में आपको क्या लगता है फाइनल कौन दो टीमों के बीच में हो सकती है?
1: और हम का एनर्जी
2: सुबह हो गई मामू,
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
3: 80s के रेट्रो गाने।

हम पर मैं हूँ अभी 8 मिनट बाकी है 9 बजने में और जो बैटल ऑफ द जाइंट्स है इसकी एक्साइटमेंट बिल्डअप हो रही है और एक मैसेज आया है राज की ओर से। राज मनीरवा में प्रोग्राम को सुन रहे हैं, शुक्रिया दो सुनने के लिए। आपने लिखा है हाय अभी बा विल विन, कौन रोकी, बा तो बा है, घायल हुआ तो क्या हुआ, शेर शेर है। राज आपके मैसेज के लिए शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक आपके टीम को। और जो कि बैटल ऑफ द जाइंट्स की बातें हो रही है और 3 सदर्न टीम्स इनमें नज़र आएंगी सेमीफाइनल स्टेजेस में, जिनमें शामिल है सुवा, नसीनू और रेवा। और जबकि टेक्स्ट मैसेजेस की ओर देखते हैं, मैसेजेस बा की टीम की ओर से एक है और एक क्वीन ने भेजा है, प्रिडिक्ट किया है, सपोर्ट किया है सदर्न टीम्स को। तो अगर जो आपको भी अपना सपोर्ट दिखाना है 5599 पर आप अपना प्रिडिक्शन भेज सकते हैं। फाइनल में कौन सी दो टीम है जो नज़र आएंगी,

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन
2: वेलकम टू कबाब्स किचन आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा
3: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स
2: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन
3: Wow, these kebabs are amazing. Spices eat them right and meat is so juicy.
2: Yeah, Amma's Kebabs promise delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
3: 100% authentic and pure as mother's love.
4: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop. So you can fuel up without slowing your day down. And still earn smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
5: We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver, or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
6: A lot of injuries happen on the weekend. So if you're out and about or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
7: Har haiwan insaan nahi hota. पर हर इंसान हैवान बन सकता है
8: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है बेवकूफ होना
7: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी
9: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम
8: ये आखिरी
7: हैवान नाउ शोइंग इन सिनेमास डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग TBC
10: Already got a quote for your bathroomware? But what about a second opinion? Email your cart or your list to Elite Bathroomware. Right now, take advantage of their massive spring sale and experienced staff. Quality reassurance, trending coloured tapware ranges, natural timber vanities, concrete freestanding baths, and everything else bathroomware. September only, spring bathroom sale in-store only. Or apply for VIP access online. Elite Bathroomware, market leaders in designer bathrooms. 59 Allens Road, East Tāmaki. See you there.

0: Saturday breakfast on Hum. Masti meter on Hum.
1: Yo,
0: you're listening to Avineet.
2: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में. सुबह के 9 बज रहे हैं. We are halfway through the show. अब यहाँ से शुरू होता है मस्ती मीठा. और मस्ती मीठा में अक्सर कुछ ऐसी बातें या फिर फन क्विज़ेस लेकर आते हैं आपके लिए, जो आपके साथ में खेलना हमें पसंद है. तो अभी से लेकर 10 तक ये जो कारवा है चलता रहेगा. बैटल ऑफ द जाइंट्स पर बातें हो रही थी, उसके बाद में एक प्यारा सा टेक्स्ट मैसेज आया है 9110 आपका. थैंक यू सो मच आपके रिस्पॉन्स के लिए. और जी हाँ, जबकि वीकेंड है और मैंने पहले भी कहा था कि ढेर सारे स्पोर्टिंग एक्टिविटी इस वीकेंड होने को है, जिस पर हम बारी बारी से बातें करेंगे. तो कैसे भूल सकते हैं, जबकि आज 6:05 PM पर वॉरियर्स और डॉल्फिन्स के बीच में जो मैच है ये रहेगा. ऐसे में प्लेऑफ्स के लिए बढ़ने के लिए वॉरियर्स के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि वो आज का मैच बिल्कुल जीते. और जो वॉरियर्स का लास्ट गेम था, मैंने इसे देखा भी था जाकर, और आज का जो मैच है पूरा सपोर्ट करूँगा. और यही चाहूँगा कि आप भी जो NRL फॉलो करते हैं आज का गेम ज़रूर देखें, क्योंकि वॉरियर्स के पास में पूरा का पूरा चांस है इस टेबल को वो लीड कर रही हैं और प्लेऑफ्स तक वो पहुंच सकें. और इसके साथ में जो इस आवा की जो पहली क्विज है आपके साथ में खेलने की कोशिश करूंगा एक बार फिर, जबकि 8 पर 8 के बाद में हमने पूछा था तो रिस्पॉन्स कुछ कम आए थे. वीकेंड है तो मुझे मालूम है कि लोग शायद देर से जागते होंगे, तो एक बार फिर कोशिश करते हैं. इसे ध्यान से सुनिएगा. You push me down, I get red with anger and frown. I turn things into a shade of brown. As soon as I pop, away you hop. What am I? इसको आपने कहीं ना कहीं ज़रूर आज सुबह इस्तेमाल किया होगा. और इस पर, इस चीज़ को लेकर एक पूरी की पूरी फिल्म की टाइटल है आपके नेटफ्लिक्स पर, जिसे आपने ज़रूर चेकआउट किया होगा. यू पुश मी डाउन, आई गेट रेड विद एंगर एंड फ्राउन. आई टर्न थिंग्स इनटू अ शेड ऑफ ब्राउन. एज सून एज आई पॉप, अवे यू हॉप. व्हाट एम आई? 5599 पर आपके टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार रहेगा.

हम पर रवि का साथ है और जो सवाल हमने किया था आपसे जवाब आने लगे हैं। पाल आपने भी भेजा है सही पहचाना, इसके साथ में आयरीन आपका भी जवाब आया, इसके साथ में धर्मेंद्र ने सुबह 8 के करीब भेजा था अपना जवाब, इन्होंने लिखा था कार लाइटा, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो चीज़ है आपके घर में आपके किचन में ही है, अगर जो आपको कॉल करके जवाब देना है 0800 004 866 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। यू पुश मी डाउन आई गेट रेड विद एंगर एंड फ्राउन आई टर्न थिंग्स इनटू अ शेड ऑफ ब्राउन एज सून एज आई पॉप अवे यू होप व्हाट एम आई। इसके बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं, इंटरेक्टिव सेगमेंट है ये बिल्कुल आपके साथ में ओनली ऑन द एयरवेव्स ऑफ हम, जिसे आप सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर।

0: आप भी अपने ब्रेकफास्ट का मजा ले रहे हैं, मैं हूं अभी आपके साथ में सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो लेकर आया हूं। 12 तक साथ देता रहूंगा और इसी तरह से आपको एंटरटेन करता रहूंगा। अच्छे अच्छे गाने भी हैं लाइनअप में और इसके साथ साथ में कुछ इंटरेक्टिव बातें भी हैं आपके साथ में। जबकि सवाल किया था तो जवाब था टोस्टा। जी हाँ, टोस्टा के बारे में ही बातें हो रही थी व्हाट एम आई में। और जबकि टोस्टा ने, आपने टोस्टा को इस्तेमाल किया होगा आज सुबह सुबह और ये कहीं ना कहीं आपके किचन पर भी होगा, काउंटर पर। इसके अलावा नेटफ्लिक्स में भी इसको लेकर एक फिल्म रिलीज़ की गई थी, अगर जो आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया, जिसका नाम है टोस्टा। तो एक टोस्टा को लेकर पूरी की पूरी कहानी नेटफ्लिक्स पर फिल्म में दिखाई गई है और राजकुमार राव ने इसमें अभिनय किया है। तो इफ़ यू हैवन चेक इट आउट, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बस इसी तरह से साथ देते रहिए और अब कमिंग अप नेक्स्ट आपके लिए कुछ और भी फन कॉन्टेक्स्ट में लेकर आएंगे। ऑल ऑफ दिस हैपनिंग ऑन योर फेवरेट डायल, हम अभी के साथ में।
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, बजट गाने, हम
2: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
5: That is very that is a very acceleration.
4: That's a very acceleration. Yeah.
5: Amazing acceleration.
4: This is my fancy English. That's a very.
5: अरे होता है यार, सब चलता है, आधी नींद में हूँ मैं।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manuko. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manuko.
2: Weekdays 6 to 10 a.m.
7: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
8: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods multi-grain dosa batter banaye. Har meal healthy aur delicious, high protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods multi-grain dosa batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
9: Go deal hunting this weekend at Briscoe's and bring home the savings with price-winning deals and incredible savings store-wide on the best brands for every room of the house. Briscoe's is the place. Saving is the promise till Sunday. See online for T's and C's.
10: Naya hybrid dhoond rahe ho? To Havel Hilo. Right now, Andrew Sims Merugao mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance low. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Merugao. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
11: The Auckland Home Show is on now at Auckland Showgrounds with inspiration from the front gate to the back fence. Discover hundreds of exhibitors, expert advice in the all-new garden showcase featuring landscape gardens and outdoor living ideas. Auckland Home Show, New Zealand's number one home show. We'll see you there.
12: Create the outdoor space you love with Mitre 10. Get 20% off selected Guardian fence panels and accessories. And get your seeds really growing with Yates 5-litre Black Magic Seed Raising Mix, now only $5.99. Mitre 10, your home for outdoor living.
13: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
14: हाँ। अच्छा
13: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
14: मिसेस सिंह,
15: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
16: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन.co.nz.

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है ये और आपको बता दूं जबकि हमारे साथ में ये हुआ है और आपके साथ में भी हुआ होगा जब हम छोटे थे तो घर पर एक अलग ट्रीटमेंट होता था जब मेहमान आ जाते थे तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा माहौल बदल जाता था द बेस्ट यूज टू बी सेव्ड आउट टू द विजिटर्स इसके अलावा काफ़ी अच्छे अच्छे यूटेंसिल्स को यूज़ किया जाता था उसी समय जब घर पर मेहमान आते थे तो इसी को एक फन स्पिन दिया है इस कलाकार ने जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और आप इसे सुनिए और सुनने के बाद में यही पता लगाइए कि कौन आर्टिस्ट है जो न्यूजीलैंड भी आ गए हैं और यहाँ पर भी आकर परफॉर्म करके गए हैं तो इस आर्टिस्ट का नाम आपको हमारे पास में भेजना होगा लेकिन ही हैज़ गिवन इट अ कंप्लीट फन स्पिन और हंसी मजाक में ही इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी बातों को कहा है जहाँ पर ये काफ़ी हद तक सच है
2: अपने बच्चों को कभी नहीं मिली हमारे घर में गेस्ट आता था हमारा घर तिहाड़ जेल से ताज पैलेस होटल बना देते थे गेस्ट आ रहा है प्रॉपर बोन चाइना का डिनर सेट निकल रहा है प्रॉपर लाओ पाला का बोन चाइना का डिनर सेट हमको कैसे खाना मिल रहा है वो स्टील की प्लेट जिसके पीछे दादाजी का नाम गुदावा होता था मैं पहली बार बोन चाइना का डिनर सेट अपने दोस्त के घर देखा मुझे लगा उसके दादाजी का नाम लाओ पाला है
1: हाँ तो अगर जो आपने भी इसे इन्जॉय किया कि कैसे कुछ बेस्ट डिशेस या यूटेंसिल्स निकलते थे जब घर पर मेहमान आते थे और अगर जो आपको इस आर्टिस्ट का नाम पता है तो 5599 पर ज़रूर भेजें हमारे पास में अपने नाम के साथ में एंड जबकि आप टेक्स्ट भेज रहे हो तो ये भी करिए कि कुछ अगर जो आप सुनना चाहते हैं अलग कोई आपकी रिक्वेस्ट है डेडिकेशन है जो आप भेजना चाहते हैं तो उसी जवाब के साथ में यू कैन सेंड दैट थ्रू एज़ वेल

हाँ, ये थे सोनू निगम अपने अंदाज में और पर्दे पर गोविंदा के लिए। और मैं जब तक आप ये गाना सुन रहे थे, मैं बाहर गया स्टूडियो से और चक्कर लगाया। बाहर यहाँ ओकलैंड सीबीडी में धूप भी ठीक ठाक खिली है, इसके साथ साथ आज का जो टेम्परेचर है वो भी ठीक ही है, ठीक ठाक ही है। लेकिन हमारे मैसेज प्लेटफॉर्म पर क्यों ना जाने आज ठंड पड़ी है, यानी कि मैसेज भी गिने चुने आ रहे हैं, जवाब भी गिने चुने आ रहे हैं। और आपके लिए हम लेकर आते हैं इंटरेक्टिव सेशन 9 से 10 के बीच में, ताकि आप भी इंजॉय कर सकें हमारे साथ में। और तो एक बार फिर कोशिश करता हूं, आपके लिए प्ले करता हूं, जबकि अभी तक करिश्मा ने ही सुनकर जवाब भेजा है। थैंक यू सो मच करिश्मा, इसी तरह से साथ देते रहिए। आपके साथ में भी ये शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी इससे रिलेट करते हैं कि घर पर जब मेहमान आते हैं तो कहीं ना कहीं जो अंदाज है ना, ये पूरा का पूरा बदल ही जाता है। तो आप भी इसका मजा लीजिए, सुनिए और बताइए हमें कि किस कलाकार की ये आवाज है। स्टैंड अप कॉमेडियन है ये, न्यूजीलैंड भी आकर परफॉर्म कर चुके हैं।

कहीं पर शादी होती थी और बर्तनों की खास ज़रूरत होती थी तो लोग क्या करते थे कि इधर उधर से मांग कर यूज़ करना पड़ता था। तो जितने भी प्लास्टिक बेसिन थे और साथ में स्पून्स चम्मच थे ना, तो उस पर अपना जो नाम का इनिशियल्स है लिखकर आप देते थे। कहीं ना कहीं नेल पेंट से इसको लिखा जाता था, तो आपने भी इसे एक्सपीरियंस किया होगा। और अगर जो आप इस आर्टिस्ट का नाम बताना चाहते हैं हमें, तो 5599 पर ज़रूर मैसेज करें। इसके अलावा 0800004866 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। एक और एक प्यारा सा मैसेज हमारे पास में आया है, और रोशनी ये 15 साल की है एंड इन्होंने मैसेज किया है, गुड मॉर्निंग अंकल, आई एम लिसनिंग टू यू। रोशनी 15 ईयर्स ऑफ एज, वी कैन रिलेट टू दिस एज वी हैव गेस्ट ओवर टू नाइट। हाँ बिल्कुल, तो जब गेस्ट आएंगे ना, मेहमान आएंगे, तो आपके पेरेंट्स जो है बिल्कुल बेस्ट बिहेवियर पर होंगे। तो ऐसे में आपको भी शायद आज कुछ ना कुछ काम मिलेगा करने को। एंड रोशनी थैंक यू सो मच, आपने ये भेजा है, इसके लिए थैंक यू, आप भी सुन रही हैं। इसके अलावा एक और एक मैसेज आया है, सपना आपने भी अनुमान लगाया है कि क्या ये अमित टंडन की आवाज़ है, तो देखेंगे थोड़ी देर में क्या ये अमित टंडन की आवाज़ है जो न्यूजीलैंड आकर परफॉर्म कर गए हैं। और इन द मीन टाइम आपको सुनवाते हैं के को।

0: Saturday breakfast on Hum.
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में अभी के साथ है और जवाब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. श्रुति ने भेजा है राजीव ठाकुर. थोड़ा सा फिसल गई हैं, एक बार फिर आपको सुनवाएंगे ताकि आप दोबारा ट्राई कर सकती हो. और इसके अलावा सपना, आपका जो आंसर था ये सही है. और इसके साथ में करिश्मा, आपने भी जवाब दिया था ये बिल्कुल सही है. तो बिल्कुल फॉर द फाइनल टाइम एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं और इसके बाद में एक और एक गाना और फिर आपके साथ में इनका नाम शेयर करेंगे और साथ में इनके बारे में कुछ पर्सनल डिटेल्स भी लगे हाथ आपको बताते रहेंगे. लेकिन अभी के लिए आप इसे सुनिए गौर से और फिर 5599 पर अपना जो जवाब है आप हमारे पास में भेज सकते हैं कि कैसे घर पर विजिटर्स आने के बाद में माहौल पूरा का पूरा बदल जाता है.
2: इसको मिली है ना, अपने बच्चों को कभी नहीं मिली. हमारे घर में गेस्ट आता था, हमारा घर तिहाड़ जेल से ताज पैलेस होटल बना देते थे. गेस्ट आ रहा है, प्रॉपर बोन चाइना का डिनर सेट निकल रहा है, प्रॉपर लाओ पाला का बोन चाइना का डिनर सेट. हमको कैसे खाना मिल रहा है, वो स्टील की प्लेट जिसके पीछे दादाजी का नाम गुदावा होता था. मैं पहली बार बोन चाइना का डिनर सेट अपने दोस्त के घर देखा, मुझे लगा उसके दादाजी का नाम लाओ पाला है.
1: इनका प्रेजेंटेशन स्टाइल बिल्कुल अलग है. अगर जो आप बच्चों के लिए कुछ साफ सुथरा देखना चाहते हैं कॉमेडी को लेकर, तो मैं इनको रेकमेंड करूंगा क्योंकि एक फैमिली ओरिएंटेड शो या फिर कई इनके जो किस्से होते हैं, जोक्स होते हैं, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली फ्रेंडली होते हैं. तो 5599 पर आप अपने जवाब भेज सकते हैं. ये न्यूजीलैंड आकर परफॉर्म भी कर गए हैं और जो एक शो लेकर आए थे मेरे ख्याल से इसका नाम था हलवा. अगर जो समझ में आता है 5599 पर ज़रूर अपना जवाब भेजें.

0: हम पर्रवी का साथ है और आपको बता दूं कि जिस कलाकार की आवाज़ आप सुन रहे थे ये अमित टंडन ही थे और श्रुति आपने आखिरकार सही जवाब भेजी दिया है, थैंक यू सो मच फॉर देट। इसके अलावा सपना आपने भी कोशिश की थी और आपका भी अटेम्प्ट बिल्कुल सक्सेसफुल था। इसके साथ में करिश्मा आपने भी मैसेज किया था, थैंक यू सो मच, आप कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ में इंटरेक्टिव सेगमेंट में आप भाग भी ले रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमित टंडन जो है ये 1975 दिसंबर में इनकी जन्म हुई थी पटियाला पंजाब में और साथ ही साथ में एजुकेशन में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है एंड MBA डिग्री की थी फ्रॉम IIT दिल्ली और इसके साथ में इनकी जो पत्नी है सोनल गेरा टंडन, इसके अलावा इन्होंने काफ़ी काम कॉर्पोरेट दुनिया में किया है जहाँ पर इन्होंने कुछ 10 साल से ज़्यादा बिजनेस डेवलपमेंट साथ में स्टार्टअप्स को लेकर कंसल्टेंसी भी की है, उसके बाद में कहीं जाकर ये फुल टाइम कॉमेडी की दुनिया में उतरे हैं। इसके साथ में काफ़ी जो काम है ये अपने कॉलेज के दिनों से ये कॉमेडी की दुनिया में करते रहे, फिर इनको एक मौका लगा कि आफ्टर लॉन्ग ऑफिस आवर्स ये फिर कुछ कहीं ना कहीं ओपन माइक नाइट्स में भी पार्ट लेने लगे थे और अभी तक इन्होंने कुछ 30 कंट्रीज़ में 2000 से ज़्यादा शोज़ भी किए हैं। तो ये थे अमित टंडन जो न्यूजीलैंड भी आकर परफॉर्म करके गए हैं। इनकी जो शोज़ है आप यूट्यूब पर अगर जो आप चाहते हैं फॉर अ फन फील्ड इवनिंग तो ये चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ में नेटफ्लिक्स में भी इनका एक शो था, ये भी आप जाकर ढूंढ सकते हैं।
1: लाइफ में थोड़ी मस्ती जरूरी है, मस्ती मीटर के साथ। Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Streaming on Rover.
1: Get the family kitted out for less at Rebel Sport. Save 20% on all Nike clothing and 20% off all Nike adult running shoes. Plus, there's 15% off All Blacks Greatest Rivalry fan gear. Gear up for less, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
2: Thinking of updating your bathroom? Refresh your home with Myco. With 80 years experience, our expert team are here to help. Discover premium brands, style and quality all in one place. Make your dream bathroom a reality with Myco.
3: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634 234. TCs and lending criteria apply.
4: Bollywood ka asli blockbuster.
5: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
4: Playing Bollywood's biggest hits. Hum. Ye hai Masti Meter.
6: मस्ती मीटर में आपको बता दूं रग्बी यूनियन का जो मैच है जहां पर स्प्रिंगबॉक्स और साथ में ऑल ब्लैक्स कल सुबह 9 पर एक दूसरे का सामना करेगी और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहेगा क्योंकि अभी तक इस सीरीज़ को स्प्रिंगबॉक्स 2-1 से लीड कर रही है और जबकि कल का एक फाइनल एनकाउंटर है अगर जो ऑल ब्लैक्स की जीत इस गेम में होती है तो सीरीज़ जो है ये बराबर ठहर जाएगी लेकिन कल का जो मैच है क्यों दोनों टीमों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए जो कि नेक्स्ट ईयर होने को है इसमें जाने तक ये काफ़ी एक अच्छा बूस्ट देगी किसी भी एक टीम को अगर जो स्प्रिंगबॉक्स आउटराइट विनर ठहरती है तो देट विल गिव देम अ गुड मेंटल स्पेस जहां पर एक बूस्ट मिलेगा कि इन्होंने ऑल ब्लैक्स को सीरीज में हराया था एंड इट विल बी अ गुड प्रेप गोइंग इनटू वर्ल्ड कप वहीं पर अगर जो न्यूजीलैंड इस सीरीज को बराबर कर लेती है तो इनके लिए भी एक अच्छा एक यू कहें बूस्ट रहेगा क्योंकि इनको भी पता रहेगा कि दे हैव कम आउट फ्रॉम क्वाइट क्लोज एनकाउंटर्स और साथ में अगर जो सीरीज को ये बराबर कर लेते हैं तो एट पा हो जाएंगे स्प्रिंगबॉक्स के साथ में तो ये जो मैच है कल सुबह होने को है यूएसए में बोल्टिमोर में ये मैच रहेगा एंड आप इसे 9 AM चेकआउट कर सकते हैं

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: Saturday Breakfast में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर.
2: Yo, मैं हूँ सूटा सा छोरा.
1: You're listening to Avineet.
3: That's right. This is me, Avi, keeping you company on Hum 104.2 FM. साथ में रोवा पर आप देश में हैं सुन रहे हैं या फिर विदेश में हैं आप रोवा के द्वारा कनेक्टेड है. वेलकम टू द शो. जबकि यह है जुगाड़ जंक्शन और ऐसे में 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. इस आवा की शुरुआत करते हैं. जबकि आज सुबह सुबह हमारे पास में कुछ बर्थडे मैसेजेस आए थे. हमने उस समय तो विश कर दिया था लेकिन शायद जो बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय था शायद उस समय ये सो रहे होंगे, तो इसीलिए एक बार फिर हमने सोचा कि हम पर आपको दोबारा वापस विश कर दें. तो शशि खट्टर जी है एवेंडेल से, ये अपना आज बर्थडे मना रही हैं और ऐसे में तमाम खुशियां भेजी है भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट ने. आपको ढेर सारे ब्लेसिंग्स और विशेस दिए हैं और साथ में ये भी कहा है कि आपका दिन बिल्कुल आपके लिए आज प्यारा रहे, आपको अपनों की खुशियाँ मिलती रहें और साथ में ढेर सारे प्यार और उपहार मिलते रहे. इसके साथ में शोन आज अपना बर्थडे जन्मदिन जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका भी मैसेज हमारे पास सुबह सुबह आया था. और शोन का जो मैसेज है इसे मैं वापस एक बार फिर ढूंढ लेता हूँ, कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म पर गुम हो चुका है. तो ही सेलिब्रेटिंग हिज 10th बर्थडे और ऐसे में इनको बेस्ट विशेस दिया है फुफा और फुआ है इनके जो सुबह सुबह इनको याद किया था. तो शोन हमारी ओर से भी आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आज का दिन आपके लिए बिल्कुल शुभ रहे एंड इन्जॉय योर स्पेशल डे.

हम पर अभी का साथ है और हमने लास्ट वीक आपके साथ में शेयर किया था जुगाड़ जंक्शन में कि कैसे आप बड़े इजीली सुपरमार्केट में जो सामान है इसके प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते थे कि वेबसाइट पर जाते थे पर्टिकुलर सुपरमार्केट की और वहां जाकर कंपेयर करते थे कि किस सुपरमार्केट में कौन से प्रोडक्ट का प्राइस सबसे सस्ता है। तो एक ऐप के बारे में हमने आपको बताया था ग्रोसा न्यूजीलैंड, ग्रोसा GROCER, ग्रोसा न्यूजीलैंड। अगर जो ये ऐप आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना होगा, अगर जो आप कंपेयर करना चाहते हैं प्राइसेस को, तो किसी भी एक प्रोडक्ट को आप उठाएं, अगर जितने भी लीडिंग सुपरमार्केट्स हैं इस ऐप पर मौजूद हैं, और उस प्रोडक्ट को उठाने के बाद में उनके बारकोड को आप स्कैन कर लें तो बाकी जितने लीडिंग सुपरमार्केट्स में इस प्रोडक्ट का कितना प्राइस है यह आपको ईजिली पता लग जाएगा। तो आप सोच सकते हैं या फिर आप खुद डिसीजन बना सकते हैं कि आपको इस सुपरमार्केट से लेना है या फिर जहां पर सस्ते में चीज़ या सामान अवेलेबल है आपको वहां से लेना है। अभी थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करूंगा कैसे आप घर बैठे वेरी ईजिली अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के जो सप्लाइज़ है इसके बीच में आप अपने खुद के लिए एक बेहतर डील वर्कआउट कर सकते हो By just sitting at home, क्योंकि your money suits best in your own pocket. तो इसके बारे में थोड़ी देर में आपको जानकारी देंगे।

हाँ, पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और ये है जुगाड़ जंक्शन, जबकि इट्स 21 मिनट्स आफ्टर 10। ऐसे में आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज ढेर सारे होते हैं न्यूजीलैंड में और वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, लेकिन अक्सर हम काफ़ी कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं एक ही सप्लायर के साथ में और कहीं ना कहीं हम ढूंढते नहीं हैं कि कहाँ और कुछ हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो सप्लायर्स हैं ये अपनी तरीके से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देते हैं। कुछ है जो आपको फ्री पावर देते हैं यूज़ करने के लिए और इसके अलावा कुछ है जो आफ्टर 9 PM आपको फ्री सर्विस देते हैं, ताकि आप जितने भी वॉशिंग हैं अगर जो आफ्टर 9 करते हैं तो इसके लिए आपको चार्जेस नहीं भरने पड़ते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ओवरनाइट इज़ फ्री। लेकिन आपके कंजम्पशन को लेकर भी कहीं ना कहीं आपके लिए जो मोस्ट सूटेबल सप्लायर है ये ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमको अपने लिए खुद के लिए खासकर इस जुगाड़ जंक्शन में पैसे बचाने हैं। तो ये सभी कुछ करने के लिए एक वेबसाइट है जहां पर आप जाकर अपने बिल्स को कंपेयर कर सकते हैं अगेंस्ट ऑल अदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स। बिली, अगर जो आप गूगल पर सर्च करें बिली BILLY, तो ये एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर आप अगर जो अपने बिल्स को अपलोड करोगे तो उसके बाद में ईजली यही वेबसाइट पर आपके बिल्स को जितने भी अन्य डिफरेंट टाइप के सप्लायर्स हैं इनके पास से कंपेयर किया जाएगा एंड दे विल अपडेट यू, एडवाइज यू कि आपके लिए मोस्ट सूटेबल आपके कंजम्पशन पर कौन सा सप्लायर हो सकता है। तो अगर जो आप कंपेयर करना चाहते हैं घर बैठे बैठे तो इट्स वेरी इजी। अक्सर हमें तकलीफ होती है कि कैसे हमको बेस्ट एडवाइस मिल सके, तो बिली पर अगर जो आप जाएंगे तो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को आप अपलोड करके काफ़ी इजीली कंपेयर और कंट्रास्ट कर पाओगे कि किस इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर के पास में आपके साथ में आपको जुड़ना चाहिए। इट्स सिंपल एज दैट।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
7: Hey, still house hunting next weekend?
8: No, hopefully not. Going to an auction tomorrow.
7: Whoa, how did you sort things so quickly?
8: My BNZ home loan partner, Jane, met her last Saturday, got her home loan sorted, and she's even calling tonight, so we're ready for the auction.
7: All that from one person.
9: Go direct to a BNZ home loan partner and deal with the decision maker from search to settlement. Bank of New Zealand. Let's find a way. All home loans are subject to BNZ lending criteria, minimum equity requirements and terms and conditions. Up to a $150 establishment fee and other fees may apply.
10: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
11: The masalas are ground fresh, in-house every single day.
10: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
11: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
10: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
12: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
13: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
14: Saturday breakfast mein hum aaye hain Jugaad Junction par.
15: That's right, ये है जुगाड़ जंक्शन अभी के साथ में। और आपको बता दूं लगे हाथ, अगर जो आप ब्रेकफास्ट शो मिस कर देते हैं और कैचअप करना चाहते हैं तो BF लिखकर 5599 पर ज़रूर टेक्स्ट करें, क्योंकि यहां से आपको लिंक मिलेगा ताकि आप इस शो को भी देख सुन सकें। जहां पर पूछा और विजय अक्सर आपके लिए इंपॉर्टेंट मैटर्स को लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी को लेकर हमको इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में सिंडी और रुजबे ने बातें की हैं अब की बार तानिया पिंटो से। तानिया जो है सीनियर ट्रस्टी एट पब्लिक ट्रस्ट, जिन्होंने बताया है विल्स और इस्टेट्स के बारे में और कैसे और क्यों हमारे लिए विल इम्पोर्टेंट है और कैसे ये वो करेगी हमारी गैर हाजिरी में और कैसे आपको इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो आप ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजें। और इसके अलावा अगर जो ट्रेंड मेकर्स आप रोड ट्रिप लेने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा प्लेलिस्ट सुने, तो इसके लिए TM लिखकर 5599 पर भेजें, जहां पर सिंडी और रुजबे ने जो ट्रेंड मेकर्स में जो रोड ट्रिप का जो लिस्ट है ये तैयार किया है। ऑल ऑफ दिस ऑन हम, और ये बिल्कुल आसान है आपके लिए। जैसे ही आप टेक्स्ट करोगे आपको यहाँ से एक लिंक मिल जाएगा जिसको फॉलो करते हुए आप उस पॉडकास्ट तक पहुँच पाओगे।

हम पर रवि का साथ है। और अगर जो आपको भी ये प्रॉब्लम है कि आपके घर में आपको वार्डरोब में जगह नहीं है और साथ में आपके लिविंग रूम में स्पेस नहीं है कोट्स को टांगने के लिए, एंड ऑल योर जैकेट्स कोट्स आर लाइंग ऑल अराउंड द हाउस, तो ऐसे में ये आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहेगा कि एक सिंपल सा जो कोट्स रैक है ये काफ़ी रिटेलर्स के पास में अवेलेबल है। आप इसे सस्ते दामों में लेकर आ सकते हैं और घर पर ही असेंबल कर सकते हैं, एंड यू कैन हैंग ऑल योर jackets and hoodies in one place. तो ऐसा क्या होता है कि अगर जो आप लिविंग रूम में इसको रखते हैं तो कहीं ना कहीं ऑन योर वे आउट आप इसे ईजली आपके विद इन रीच रहेगा, इसके साथ में जब आप वापस घर में आते हो तो आप इसे ईजली हैंग कर देते हो। अक्सर क्या होता है कि जो जैकेट्स होते हैं ये बारिश के मौसम में भीग भी जाते हैं, तो आप इसे जब रखते हो तो कहीं ना कहीं इट अलाउज इट टू ड्राई अप एज वेल। और अगर जो आप सोच रहे थे कि आपको कहाँ से मिल सके, तो आप सिर्फ लीडिंग जो रिटेलर्स है इनके वेबसाइट पर आप सर्च कीजिए, एंड आई एम क्वाइट श्योर ये आपको 25 से लेके $35 के रेंज तक आपको मिल जाएंगी, एंड इट विल गिव अ वेरी क्लीन आउटलुक टू योर हाउस। जबकि जैकेट्स कहीं ना कहीं आपके पड़े होते हैं, बिखरे होते हैं, तो आपको एक मेसी मेसी लुक मिलता है आपके घर का।

0: मुझे सब याद है। और अभी जब तक ये गाना आप सुन रहे थे, अंतरप्रीत ने कॉल किया था और ये प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं, कुछ पेपर वर्क में भी बिजी है, लेकिन ही इज हमिंग। और इसी तरह से आप साथ देते रहिएगा। अगला जो टिप है बताने से पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप जब आप इस सवाल का जवाब दोगे तो मुझे पता लगेगा कि आपकी इंटरेस्ट इस फील्ड में कितनी है, इस एक्टिविटी में कितनी है। डेड हेडिंग, क्या आपने इस टर्म को कभी सुना है? डेड हेडिंग, अगर जो आपको पता है कि डेड हेडिंग क्या है, 5599 पर ज़रूर हमारे पास में को मैसेज करें, या फिर 0800004866 पर आप कॉल भी करके बता सकते हैं कि आखिर में डेड हेडिंग है क्या।
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hum.
3: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई

0: anywhere you get your podcast.
1: There's a new sound at Bunnings. That's the sound of Bunnings rewards being earned. You can earn them across the store, from gardens to gumboots, hose reels to heated towel rails. Simply download the Bunnings app, scan your Bunnings card and see your points stack. Join Bunnings Rewards today.
2: Fresh deals on favourites this week at New World North Island. Get skinless chicken thigh fillets, $17.99 per kilo. And red, green or yellow capsicum, $2.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
3: Trade Depot.
4: Spend $30 at Trade Depot and get fast, free delivery. 12-panel hybrid solar system, fully installed for just $9,999. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
3: TradeDepot.co.nz.
0: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Saturday breakfast me. Hum aaye hain Jugaad Junction par.
5: अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है गार्डनिंग करने की, और अब ऐसा मौसम भी आने लगा है कि आप वापस शायद गार्डनिंग में आप अपनी जो रुचि है बढ़ा दोगे। तो ऐसे में जो डेड हेडिंग एक टर्म है गार्डन्स को लेकर इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर जो पेरेनियल्स होते हैं जो दो साल से ज़्यादा लास्ट करते हैं आपके फ्लावर गार्डन में, अगर जो आप इनको हेल्थी रखना चाहते हैं तो डेड हेडिंग का मतलब ये है कि आप डेड फ्लावर्स को उन पेरेनियल से रिमूव कर देते हो। तो ऐसा करने से आपको जो सेकंड फ्लश ऑफ फ्लावर्स है ये हेल्थी फ्लावर्स मिलेगा, और इसके साथ ही साथ में आपके जो प्लांट है ये हेल्थी रहेंगे। और ये जो टेक्निक है, कुछ ऐसे फ्लावर्स या प्लांट्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फॉक्स ग्लव हुआ, होली हॉक हुआ, आयरिस और साथ में एस्ट्रा और डालिया हुई, या फिर पॉपी। ये सभी जगह पर आप जो डेड हेडिंग है इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और ऐसे बातें आपके साथ में करते रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्लावर्स पसंद करते हैं, गार्डनिंग भी पसंद करते हैं, लेकिन हमें ये डिटेल्स पता नहीं होती है। तो इसीलिए आपके लिए लेकर आते हैं जुगाड़ जंक्शन, जहाँ पर कुछ ऐसे टिप्स है, लाइफ हैक्स है जो आपके साथ में शेयर करते रहते हैं।

0: Today Breakfast on Hum. Bollywood ka asli blockbuster.
1: Pure sheher pe kabza hoga, raj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits. Hum.
2: आज के लिए जुगाड़ जंक्शन में बस इतना ही, जबकि 8 मिनट बाकी है 11 बजने में, और 11 पर आपके लिए लेकर आएंगे देसी बिज शाउट आउट, जहां पर आपके पास में मौका रहेगा अपने बिजनेस को एक शाउट आउट देने के लिए ऑन द वेव्स ऑफ हम, जहां पर काफ़ी लिसनर्स सुनते हैं और सुनने के बाद में आपके सर्विसेज से ये भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपका कोई होम बेस्ड बिजनेस वेंचर है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं, तो इनके जो डिटेल्स है 5599 पर ज़रूर भेजें। और इसके साथ में अगर जो आप घर से डेकोरेशन का काम करते हैं या फिर हीना लगाते हैं घर पर, घर से हाथों पर, तो ये सभी कुछ जो आपका बिजनेस है, प्यारा सा जो बिजनेस मॉडल है, इसके बारे में 5599 पर ज़रूर डिटेल भेजें और किन किन एरियाज में आप अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ताकि औरों को भी पता लगे और कहीं ना कहीं ये जो नेटवर्किंग है आपके लिए हम पर कर पाए। सो ऑल ऑफ दिस हैपनिंग जस्ट आफ्टर 11। इन द मीन टाइम इस आवर को क्लोज करते हैं विद फरहान अख्तर।

0: You're listening to Avineet.
1: मैं हूं अभी आपके साथ में और हमारे स्टूडियोज में 11 बज रहे हैं, जबकि दिस इज द फाइनल आवर ऑफ द शो. 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा और ये मोड़ है आपके लिए देसी बिज शाउट आउट का. अगर जो आप एक बिजनेसमैन हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो या फिर घर से कोई भी बिजनेस आप छोटे वेंचर है जिसे आप चला रहे हो, तो ऐसे में आपकी मदद के लिए, आपको सहायता देने के लिए ये जो गोल्डन आवर है आपके लिए है, ताकि और लोग भी आपके बिजनेस के बारे में जान सके एंड दे कैन कम टू यू. तो ये सभी कुछ को बता रहे हैं, जबकि पहला मैसेज जो आया है हाउस मूविंग के लिए, धर्मेन्द्र आचारी ने हमारे पास में मैसेज किया है. अगर जो आप सोच रहे हैं आपको घर पूरा का पूरा मूव करना है, यानी कि जितने भी कंटेंट्स मूव करने हैं, इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल सर्विस की ज़रूरत है. इसके लिए आप सिर्फ धर्मेन्द्र को कॉल करें ऑन 0211-379-831. याद रहे 0211-379-831 पर आप धर्मेन्द्र को कॉल करके कोट ले सकते हैं, जबकि रिलायबल और एफिशिएंट सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं. जिस दिन आपको मूव होना होगा, समय से आपके पास में पहुंच जाएंगे और आपके सामान को घर के ये आपके साथ में लिफ्ट कराकर उठवाकर और नए लोकेशन पर पहुंचा भी देंगे सेफली. तो ऑल ऑफ दिस विद धर्मेन्द्र आचारी ऑन 0211-379-831 पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं. आपके पास में भी कोई बिजनेस है जिसके बारे में आप ओनिया प्रमोट करना चाहते हैं, एक शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे साथ में, तो नंबर बड़ा सिंपल है 5599 और आप यहां पर मैसेज करें ताकि और लोगों तक हम आपके बारे में पहुंचा सकें. एक प्यारा सा मैसेज आया है ती रकाउ ड्राइव से, तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो ये मैसेज किया है, मैं तो आपके आसपास हूं और मैं भी आकर ट्राई करूंगा, लेकिन ये बिजनेस कौन सा है बस थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे. 5599 इज़ द नंबर. अगर जो आप भी हमारे साथ में इस गोल्डन आवर पर मौके पर चौका मारना चाहते हैं, तो अपने बिजनेस का जो डिटेल है 5599 पर अभी टेक्स्ट करो.

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में। और देसी बीच शाउट आउट में जो मैसेज हमारे पास में आया है, लोकल गाइस टेस्ट एंड टैग, यानी कि आप बिल्डिंग ओनर है, मालिक है कमर्शियल बिल्डिंग की, और आपको अपने प्रेमिसेस पर फायर सेफ्टी चेक करवाने हैं, तो नमिश ये करते हैं लोकल गाइस टेस्ट एंड टैग से, और ये आकर आपकी जो फायर एक्सटिंग्विशर है इनकी सर्विसिंग कर जाएंगे, साथ में हाउस रील टेस्टिंग ये सभी कुछ करेंगे। इसके साथ साथ फायर ब्लैंकेट इंस्पेक्शंस भी करेंगे और ये आप तक आएंगे। आपको कम से कम परेशानी हो इसके लिए आपके वर्क प्लेस पर आकर जो सेफ्टी चेक है ये कर जाएंगे। एक फ्री कोड भी देने को बिल्कुल तैयार है, अगर जो आपका जो बिल्डिंग का वारंट है ये पास में है और आपको ये सभी चेक्स करवाने हैं, तो नमिश को 021-0277-1 मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूं आपके लिए, 021-0277-0160 पर आप नमिश को कॉल करें, या फिर आप उनको ईमेल कर सकते हैं namish.chand@thelocalguys.co.nz। तो आपके जो फायर सेफ्टी चेक्स के लिए, अगर जो आपके बिल्डिंग के वारंट पास आने वाली है, तो इसके लिए आपको अपने कमर्शियल बिल्डिंग के लिए जो फायर टेस्टिंग है ये करवाना ज़रूरी है, ताकि यू आर कंप्लायंट, आपको बिल्कुल ये महसूस हो कि आप सेफ हो, सिक्योर हो अपने बिजनेस प्रेमिसेस में। तो नमिश को कॉल करें ऑन 021-0277-0160। आपके पास में भी कोई बिजनेस डिटेल है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं, 5599 पर ज़रूर टेक्स्ट करें हमारे पास में। और जो टेक अवेज के बारे में हम बात कर रहे थे, जो टी रकाउ ड्राइव में है, इसके बारे में बस थोड़ी देर में और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। आपके पास में भी कोई बिजनेस वेंचर है जिसके बारे में आप हमसे बातें करना चाहते हैं, तो 0800-004-866 पर आप कॉल करके उन्हें बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा 5599 पर मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई रियल एस्टेट एजेंट हो, आपको भी पुश आउट कराना है, यूँ कहें शॉर्ट आउट करवाना है, तो 5599 पर ज़रूर मैसेज करें। साथ में अगर जो घर से आप वेजिटेबल्स या फ्लावर्स बेच रहे हो, या फिर किसी तरह का और बिजनेस है जो आप बड़े प्यार से करते हो, तो इसके बारे में आप हमारे साथ में ऑन दी एयरवेव्स ऑफ हम यहाँ पर आपको एक शॉर्ट आउट देने को बिल्कुल तैयार हैं।

0: That's right, ये है देसी बीज शाउट आउट और सरडे ब्रेकफास्ट शो में अभी का साथ है और मैं आपको बता दूं अगर जो आप ईस्ट ओकलैंड में हैं तो यू कैन नॉट मिस दिस क्योंकि एक जो प्यारा सा टेक अवे शॉप है ये चल रहा है तीरकाउ ड्राइव पाकुरंगा में. आपको सिर्फ जाना होगा 113 तीरकाउ ड्राइव पाकुरंगा जहाँ पर विजय और मोनिका बड़े प्यार से अपना ये छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं और मुझे पता चला है कि काफ़ी डिलीशियस मेन्यू है इनका और इनकी सर्विस और साथ में हाइजीन को काफ़ी ध्यान में रखकर ये जो अपना मील्स है प्रिपेयर करते हैं. तो हफ्ता भर आप खाना बना बना कर जब थक जाते हो तो वीकेंड में यू नीड डे ऑफ, तो विजय और मोनिका के पास में जाइए जो एज वाटर टेक अवेज है फॉर योर डिलीशियस ऑर्डर्स 113 तीरकाउ ड्राइव पाकुरंगा में और ये बड़े हैप्पली आपके लिए जो इनका जो एक्सटेंसिव मेन्यू है तैयार है जहाँ पर आप जाकर चूज कर सकते हैं and you can get your orders done. 113 Tirakau Drive Pakuranga mein Vijay aur Monica ke paas mein at Edgewater Takeaways. Aur iske saath mein kuch aur messages aaye hain hamare paas mein jahan par Eastern Rentals 36 Love Grove Crescent Otara mein ye hai aur Asad bhai ne message kiya hai ki aapke liye jitne bhi transportation hai agar jo aap rental dhoond rahe hain for moving house or going on a trip to ye aapko discount dene ke liye bilkul taiyar hai. Aapko sirf use karna hoga Ali 15 और यहाँ पर आप जाकर जो ईस्टर्न रेंटल्स का बेस है एट 36 लव ग्रोव क्रेसेंट ओटारा आप ये कोड यूज़ करेंगे ALI15 और ये आपको डिस्काउंट देने के लिए बिल्कुल तैयार है. आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं या फिर अली को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एट ईस्टर्न रेंटल्स. तो आपके पास में भी कोई बिजनेस वेंचर है जिसके बारे में आप शाउट आउट देना चाहते हैं फील फ्री टू डू सो 5599 पर. आपके पास में अभी मौका है जबकि 12 तक ये जो कारवा है आपके साथ में चलता रहेगा.
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम. वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी.
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: यह है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो अभी के साथ में, और जबकि देसी बीज शाउट आउट चल रहा है, तो ऐसे में अगर जो आपको लग रहा था लास्ट ईयर कि आपको अपनी जो क्रिसमस ट्री है ये रिप्लेस करनी है, या फिर अभी जब दिवाली आने वाली है तो ऐसे में आपको ढेर सारे डेकोरेटिव लाइट्स की ज़रूरत है, तो आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, फ्लेक्सी लाइट। और फ्लेक्सी लाइट के पास में ढेर सारे ऑप्शंस हैं जहां पर ये क्रिसमस ट्रीज बेचते हैं। इसके साथ में एलईडी साइंस बेचते हैं, आपको बिजनेस के लिए कोई साइनेज चाहिए तो ये सभी कुछ ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कमर्शियल ग्रेड की फेरी लाइट्स है और रोप लाइट्स है, लेजर लाइट्स भी अवेलेबल है। ये सभी कुछ आपको मिल सकता है अगर जो आप flexilight.co.nz गूगल करें, या फिर अगर जो आप इनको ईमेल करना चाहते हैं तो sales@flexilight.co.nz, one more time, sales@flexilight.co.nz, या फिर flexilight.co.nz पर आप जाकर इन्हें ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इनके पास में ढेर सारा सिलेक्शन है फॉर क्रिसमस ट्रीज, और साथ में आपकी दिवाली लाइट्स के लिए जो डेकोरेटिव लाइट्स है ये इनके पास में अवेलेबल है। आपके पास में भी कोई बिजनेस वेंचर है, या फिर आपकी कोई फ्लैट खाली है जिसके लिए आप टेनेंट ढूंढ रहे हैं, ये सभी कुछ हमारे पास में 5599 पर आप मैसेज कर सकते हो।

देसी बीज शाउट आउट है, ये अभी का साथ है। और अगर जो आपकी वीजा अटकी पड़ी है, फंसी हुई है, तो आपके पास में एक और एक ऑप्शन है, क्योंकि आप जा सकते हैं जिम वीजस। जी हाँ, जिम वीजस, इनके पास में कुछ मोर देन 10 ईयर्स ऑफ इमिग्रेशन एक्सपीरियंस है, जो आपके लिए आपके वीज़ा को वीज़ा दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, आपको एडवाइस दे सकते हैं। ये ओकलैंड में बेस्ड है और आप बातें कर सकते हैं विनीत और निशि के साथ में। विनीत और निशि, ये अपना जो कंसल्टेशन सर्विस है, ये इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी हद तक आपकी मदद कर सकते हैं। तो याद रहे, ईमेल इनका जो है info@zymvisas.co.nz पर आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप इनके वेबसाइट पर जा सकते हैं www.zymvisas.co.nz पर जाकर आप इनसे बातें कर सकते हैं। अच्छी बात यह है इनकी कि इनके जो इनिशियल कंसल्टेशन है 30 मिनट्स का, बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है आपके लिए। और यहां से आप इनसे कॉन्टेक्ट करके अपने जो रुकी हुई वीज़ा है या जो फंसी हुई वीज़ा है आपकी, इस पर आप और एडवाइस ले सकते हो। तो याद रहे नाम ZYMM जिम वीजस, यहाँ पर आप विनीत और निशि से बातें कर सकते हो। और भी कोई बिजनेस है जिसे आप ऑपरेट कर रहे हो और इसके लिए आपको शॉर्ट आउट चाहिए ऑन न्यूजीलैंड्स नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन, तो 5599 पर अपना जो डिटेल है जल्दी से हमारे पास में भेज दीजिए। जबकि कुछ आधा घंटा का और समय है, ऐसे में आपके बिजनेस को शॉर्ट आउट देंगे बिल्कुल मुफ्त ऑन हम

0: Wow.
1: देसी बीस में आपको बता दूं, अगर जो आप मेनेकाओ में हैं, फिर या ईस्ट ओकलैंड में हैं और पापाटोए में हैं और ओटाहू जैसे एरियाज में हैं, और अगर जो आपको अपने गाड़ी की सर्विसिंग करवानी है तो नाम याद रहे आपको, राज ऑटोमोटिव एंड टायर सेंटर लिमिटेड। ये सिचुएटेड है 11 रायन प्लेस मेनेकाओ ओकलैंड में, जहाँ पर अनिल कुमार की पूरी टीम है। एक फैमिली ओन्ड मैनेज्ड ऑपरेटेड बिजनेस है और आपको अपने कस्टमर्स को भी ये फैमिली की तरह ही ट्रीट करती है। ये प्रोवाइड करते हैं आपके लिए व्हील अलाइनमेंट सर्विसेज, साथ में जनरल मैकेनिकल रिपेयर्स। आपको सर्विसिंग करवानी है गाड़ी की या फिर कोई और प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इसको भी ये डायग्नोस कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत है तो आपको सिर्फ जाना होगा अनिल कुमार के पास में, जो है राज ऑटोमोटिव एंड टायर सेंटर लिमिटेड के, 11 के रायन प्लेस इन मेनेकाओ। तो आपके पास में भी कोई बिजनेस है जिसके बारे में आप शार्ट आउट देना चाहते हैं, तो अब समय कम है, इट्स टाइम इज टिकिंग अवे। लेकिन अगर जो अभी आप भेज देते हैं अपना बिजनेस डिटेल, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी आपके बिजनेस डिटेल को, एक आपके बिजनेस को एक शार्ट आउट देने के लिए ऑन हम। और आप भेज सकते हैं 5599 पर।
2: देसी बिज शाउट आउट ऑन सैटरडे ब्रेकफास्ट। 80s के रेट्रो गाने।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: ज्यादा प्रोजेक्ट टाइम चाहिए? यस प्लीज माइटी 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के 1 आवर क्लिक एंड कलेक्ट के साथ ऑनलाइन ऑर्डर करो और सिर्फ 1 घंटे में कलेक्ट करो. टीज एंड सीज अप्लाई. स्किप द क्यूज एट माइटी 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन.
2: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
3: चूज कीजिए कैसे आप सेव करते हैं विंगर मोटर्स में. 3.9% फाइनेंस या $2,000 कैशबैक सिलेक्टेड न्यू ओमुडा या जेको मॉडल्स पर. सुपर

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और अगर जो आपको टेक्स्ट को लेकर कुछ उलझन है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है टेक्स्ट को लेकर, तो आपको सोफिया को कॉल करना चाहिए, क्योंकि ये NZ टेक्स्ट एक्सपर्ट है।

और सोफिया को 0210755276, एक बार फिर से नंबर 0210755276 पर आप सोफिया को कॉल करें अगर जो आपको बिजनेस में टैक्स को लेकर कोई प्रॉब्लम है, उलझन है, जिससे आपको छुटकारा चाहिए, क्योंकि एज दे से डेथ इन टैक्स पे आर नो वन. तो ऐसे में सोफिया को आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0210755276 ताकि ये आपकी हेल्प कर सके और आपको भी बदले में एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिल सके टैक्सेशन लॉस को लेकर. तो सोफिया 0210755276. इसके अलावा घर पर कोई आपके फंक्शन है तो आपको इसके लिए कोई होस्ट करने के लिए चाहिए, वैसे तो मैं भी करता हूँ, लेकिन होस्ट करने के लिए अगर जो आपको ज़रूरत है तो आपको लुक नो फर्दर देन राग एंड रिदम्स, क्योंकि ये आपके जितने भी इवेंट्स हैं प्लान कर सकते हैं आपके लिए. साथ में घर पर कोई फंक्शन है इसके लिए ये आपको लाइट्स साथ में साउंड ये दोनों दे सकते हैं. इसके अलावा अब ये कीर्तन प्रोडक्शन भी करते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है, तो आपको सिर्फ लुकअप करना होगा राग एंड रिदम्स ऑन फेसबुक. और इसके साथ में दो चार और नोटिसज़ है या फिर मैसेजेस है जिसके बारे में बस आप ही को थोड़ी देर में बताएंगे.

हम पर आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को और मैं हूँ अभी आपके साथ में बस 15 मिनट तक और हमारा और आपका साथ रहेगा। ऐसे में आपको बता दूं, अगर जो आप घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इट कैन बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, काफ़ी लॉजमंस होती है करने के लिए, और अगर जो खासकर आप सिस्टम से वाकिफ नहीं हो हाउ द सिस्टम रन्स तो इसको लेकर आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन वरी नॉट, क्योंकि प्लेन जोन लिमिटेड, ये नाम आप याद रख लीजिए, प्लेन जोन लिमिटेड यहाँ पर फरीदा है, 02111026 18 पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। फरीदा को 02111026 18 पर आप इन्हें कॉल करें। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स जहां पर आपके कंसेंट को लेकर आपको कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, आपके आरसी और बीसी को लेकर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप प्लेन जोन लिमिटेड के फरीदा को कॉल कर सकते हैं 02111026 18। इसके अलावा अगर जो आप ढूंढ रहे थे कोई ऐसे पेशेंट को जो आपके लिए रिलायबल रहे, आपके जो हाउस बिल्डिंग जो जेनी है इसको बिल्कुल एक यूँ कहें फ्लूइड एक्सपीरियंस आपको दे सके, साथ में एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस आपको दे सके, तो प्लेन जोन लिमिटेड की फरीदा 02111026 18 पर आप इन्हें कॉल कर सकती हो, कर सकते हो, ताकि ये जो अपना मदद है सर्विसेज है आपको प्रोवाइड कर सके। इसके साथ में अनिल डोंगरे जी हैं, फाउंडर एंड CEO एट थिंक एंड फोम लिमिटेड, जो प्रोवाइड कर रहे हैं AI स्टूडियो कंपनी इन ओकलैंड, जो जितने भी स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस हैं एंटरप्राइजेस, इनके लिए जो मैनुअल वर्कफ्लोज है इनको ये ऑटोमेट कर रहे हैं। तो आपको भी अगर जो ज़रूरत है अपने बिजनेस के लिए, आप अभी तक मैनुअली काफ़ी काम कर रहे होंगे, तो ऐसे में अगर जो आपको भी ऑटोमेटेड सिस्टम की तलाश है तो आप अनिल को कॉल कर सकते हैं ऑन 02885111276। नंबर वंस अगेन 02885111276, यहाँ पर आप अनिल से बातें कर सकते हो अगर जो आप चाहते हैं आपके मैनुअल जो सिस्टम है इसको ऑटोमेट किया जाए। ऑल ऑफ दिस ऑन हम, जहाँ पर एवरी सैटरडे आपके लिए देसी बिज शाउट आउट लेकर आते हैं, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमारी यही है कि जितने भी हमारे देसी बिजनेसेस हैं इनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि ये एक शाउट आउट कर सके। इसके साथ साथ में लोग जो रेडियो सुनते हैं जैसे आप, आपको अगर जो सर्विसेज की ज़रूरत हो तो आपको एक नंबर मिल सके, एक कंपनी मिल सके जो बहुत ही रिलायबल सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: आज के लिए हमारे साथ में बस इतना ही और जबकि 10 मिनट बाकी है 12 बजने में एंड इट्स टाइम कि आपको हम एक बार फिर कल मिलेंगे लेकर आएंगे जस्ट चिल एट 12 इसका भी इंतज़ार रहेगा लेकिन अभी के लिए आपको छोड़े जा रहे हैं के साथ में पलक की आवाज़ों में एक बेहतरीन नगमा के साथ में एंड इसके बाद में रहेगा रेडियो पब जो कि जिकाश लेकर आएंगे और हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर कल होगी इन द मीन टाइम डू एन्जॉय योर सैटरडे हंसते रहे मुस्कुराते रहे डू टेक केयर बाय

0: हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन
3: Get the family kitted out for less at Rebel Sport. Save 20% on all Nike clothing and 20% off all Nike adult running shoes. Plus, there's 15% off All Blacks Greatest Rivalry fan gear. Gear up for less, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
4: Some savey pack and save news coming in 3, 2, 1. It's 3, 2, 1 dollar week on now at Pack and Save. The end of the savey pack and save message coming in 3, 2, 1.
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
5: पूरे शहर पे कब्जा होगा राज होगा
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स हम टाइम चेक
6: ब्रॉट टू यू बाय मान टायर्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टायर्स एंड मैकेनिकल सर्विसेज ओपन 7 डेज कॉल मान टायर्स ऑन 0800 00010
7: गुड आफ्टरनून